आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 90971602।
3: घर पर बैठे बेरोजगार युवाओं के लिए अब इंतजार नहीं, एक सुनहरा मौका आपका इंतजार कर रहा है।
4: छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोपालगंज लाया है आपके लिए शानदार करियर बनाने का अवसर।
3: अगर आप 10+2 डिप्लोमा या ग्रेजुएट पास है तो बनिए एक प्रोफेशनल सेफ्टी ऑफिसर और पाए अपने भविष्य को एक नई दिशा।
4: यहां उपलब्ध है 1 साल का सेफ्टी डिप्लोमा ADIS, NEBOSH और IOSH, PG डिप्लोमा इन एनवायरमेंट जैसे प्रोफेशनल कोर्स
3: और सबसे खास बात 100% जॉब गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: मोबाइल नंबर 8511168095 और बात करें अमरेंद्र सर से।
3: पता छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बंजारी रोड HP पेट्रोल पंप के सामने गोपालगंज।

श्री राम लक्ष्मण के पराक्रम की कथा सुनाते हुए राजा जनक के दूत कहते हैं, श्री राम ने बिना प्रयास शिवजी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडियां तोड़ देता है। परशुराम ने जो क्रोध के साक्षात अवतार हैं बहुत आंखें दिखाई, किंतु श्री राम का प्रताप देख अंत में वे भी नतमस्तक हो गए और जाते हुए अपना धनुष भी दे गए। दोनों भाइयों के तेज तथा प्रताप की गाथा सुन अयोध्या की राजसभा में हर्षोल्लास की लहर दौड़ गई। सभासदों ने राजा जनक के दूतों को भांति भांति के पुरस्कार दिए। राजा दशरथ ने कुलगुरु वशिष्ठ के यहां जाकर पत्रिका उन्हें दी और दूतों को वहां बुलाकर सारी कथा कह सुनवाई। हर्ष प्रकट करते हुए वशिष्ठ जी ने आशीर्वचन कहे और महाराज को बारात सजाने को कहा। ये शुभ समाचार जब रनिवास में पहुंचा तो वहां भी आनंद का वातावरण छा गया।

मथुरापुर से श्री राम विवाह के समाचार की पत्रिका पाकर अयोध्या के राजमहलों में आनंद की लहर दौड़ गई। राजमहलों में उत्साह और उमंग छलक रहा है। रानियां ब्राह्मणों तथा भिक्षुकों को बुलवाकर दान और निछावरे दे रही हैं। शुभ समाचार पाकर अयोध्या के नागरिक प्रेम मग्न हो रास्ते, भवन और गलियां सजाने लगे हैं। ध्वज पताकाओं, पर्दों और सुंदर चंवरों से बाजार की शोभा अनूठी हो गई है। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरों, हल्दी, दूध, दही, अक्षत और मालाओं से सजाकर लोगों ने अपने अपने भवन मंगलमय बना लिए हैं। चंदन, केशर, कस्तूरी और कपूर के चतुरसम से गली चौराहों पर चौक पुराए जा रहे हैं। सुंदर सुहागिने 16 श्रृंगार किए मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं। राजा दशरथ के राजमहलों की शोभा का वर्णन शब्दों से परे है। उस स्थान का वर्णन कौन कवि कर सकता है जहां समस्त देवताओं के शिरोमणि श्री राम ने अवतार लिया है। राजा दशरथ ने कुमार भरत और शत्रुघ्न को बुलवाकर बारात सजाने का आदेश दिया। कुमारों ने साहनी अर्थात घुड़साल के अध्यक्ष को बुलाकर घोड़े हाथी सजाने की आज्ञा दी।

का स्वयंवर में श्री राम द्वारा शिवजी के धनुष भंग का संदेश सुनकर अयोध्या में हर्ष और आनंद की लहर दौड़ गई। राजा दशरथ पुत्रों के विवाह के लिए बारात सजाने की तैयारियों में लगे हैं। राम लक्ष्मण तो जनकपुर में हैं, अतः भरत को हाथी घोड़े तथा रथ सजाने का आदेश हुआ। शौर्य का बाना धारण कर रणधीर वीर नगर के बाहर एकत्रित हुए। सभी चुने हुए छैल छबीले वीर चतुर नवयुवक हैं। भेरी और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर इनकी प्रसन्नता का पारावार नहीं। सारथियों ने ध्वज पताकाओं तथा रत्नाभूषणों से रथ सजाए हैं। अगणित श्यामवर्णी घोड़े ऐसे हैं जो जल पर भी स्थल जैसी द्रुत गति से दौड़ते हैं, ऐसे वेग से कि उनकी टापें पानी में नहीं डूबती। रथों पर चढ़ी बारात नगर के बाहर आ जुटी है। घंटों से सुसज्जित मतवाले हाथी इस प्रकार झूमते चले जैसे सावन के श्यामवर्णी बादलों के झुंड गरजते हुए चलते हैं।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता: शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 84710309 या 9765665750। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
3: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
3: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
3: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
4: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
3: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
2: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
6: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
7: मैं बनूंगा।
8: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
6: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-29-94-921 पे,
8: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
6: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 AMZ पर।
9: ठक ठक।
10: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
11: अच्छा मिला ही नहीं।
10: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
8: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
10: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
8: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
12: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
3: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
4: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
5: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
6: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
4: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
3: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
4: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज। प्रोपराइटर विजय कुमार केडिया।
6: कॉल करे 87-894-18-744।
7: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
4: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग,
6: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
4: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
6: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें, विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
6: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
8: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल कहे सुनो दिल से।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
3: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
4: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
3: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
3: संपर्क 99 3 93 65 9 30।

0: हूँ अपनी दोस्त की शादी में।
1: क्यों, क्या हुआ है?
0: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
1: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
0: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
2: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
5: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
5: आज ही एडमिशन के लिए आए चैनपट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
5: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
6: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपने भाषा की पहचान, रेडियो रिद्म 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
5: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
6: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
5: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
5: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
6: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
5: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
6: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
7: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोसमोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
8: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
9: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
10: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434003।
11: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
12: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
11: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
13: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
14: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल, पुलिस अधीक्षक ने कई थानाध्यक्षों का किया तबादला, जनजाति गरिमा उत्सव की हुई शुरुआत, मारपीट में घायल एक बुजुर्ग की गोरखपुर में इलाज के दौरान हो गई मौत, बैकुंठपुर में भीषण सड़क हादसा, एक युवक की घटना स्थल पर ही हो गई मौत, और पारिवारिक कलह से एक युवक ने उठाया आत्मघाती कदम। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने जिले में प्रशासनिक दृष्टिकोण से कई पुलिस पदाधिकारियों का तत्काल प्रभाव से तबादला किया है। सभी संबंधित अधिकारियों को 24 घंटों के भीतर अपने नए पदस्थापन स्थल पर योगदान देने का सख्त निर्देश भी दिया गया है। इसको लेकर आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय से दी गई जानकारी के अनुसार, नीरव कुमार पाल जो प्रोबेशनर DSP हैं और पुलिस कार्यालय गोपालगंज में तैनात थे, इनको अब मीरगंज का नया थानाध्यक्ष बनाया गया है। क्योंकि मीरगंज के थानाध्यक्ष को पुलिस अधीक्षक ने निलंबित कर दिया है, ऐसे में अब यहाँ DSP प्रोबेशनर नीरव कुमार पाल को नया थानाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं चंदन कुमार चौबे को भोरे का थानाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये पहले मोहम्मदपुर थाने में तैनात थे। इसी तरह टिंकू कुमार जो मोहम्मदपुर के थानाध्यक्ष थे उनको अब उचका गांव थाने में अनुसंधानकर्ता के रूप में उनकी तैनाती की गई है। इन सभी पदाधिकारियों को 24 घंटों के भीतर जल्द से जल्द अपने नव पदस्थापित स्थल पर योगदान देने का निर्देश जारी किया गया है। जनजाति कार्य मंत्रालय भारत सरकार के नेतृत्व में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा 18/5/2026 से 25/5/2026 तक जनजाति कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक एवं संतृप्त करने हेतु जनजाति गरिमा उत्सव मनाया जा रहा है। इसके तहत राष्ट्रव्यापी अभियान जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले का आयोजन किया जा रहा है। इसका शुभारंभ समाहरणालय के सभागार में जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसमें सभी 22 विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। जन भागीद सबसे दूर सबसे पहले कार्यक्रम के लिए भारत सरकार द्वारा जिले के उचका गाँव प्रखंड का चयन किया गया है। इस दौरान उचका गांव प्रखंड के 11 पंचायत के कुल 19 गांवों को जोड़ा गया है। प्रत्येक शिविर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा चिकित्सा कैंप लगाया जाएगा। प्रत्येक कैंप में सभी विभागों का स्टॉल लगेगा। जनजाति के लोगों को सरकारी योजनाओं से आच्छादित किया जाएगा। सरकार द्वारा चलाए जा रहे सभी 22 योजनाओं के लिए जन सुनवाई की जाएगी। इसमें सभी विभाग के प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी और कर्मी भी उपस्थित रहकर प्राप्त आवेदनों का निष्पादन करेंगे। कटिया थाना क्षेत्र के सहजनवा कला गांव में पिछले 4 अप्रैल को हुई मारपीट की घटना में घायल बुजुर्ग की गोरखपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिवार में मातम पसर गया। बताया जा रहा है कि मृतक किसान ब्रह्मा यादव की मौत के बाद आज उनके शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद पुलिस ने परिजनों को सौंप दिया। रास्ते के विवाद को लेकर पिछले 4 अप्रैल को मारपीट की घटना हुई थी। मृतक खेत से घर लौट रहे थे, इसी दौरान आरोपियों ने उनकी जमकर पिटाई कर दी थी। लाठी डंडे से हुई उनकी पिटाई से वे गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे और उनका इलाज स्थानीय अस्पताल में करने के बाद डॉक्टरों ने गोरखपुर रेफर कर दिया था और गोरखपुर में वे जीवन और मौत से जूझ रहे थे। बताया जा रहा है कि कल रात इलाज के दौरान उनकी मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने अब इस मामले में हत्याकांड की प्राथमिकी दर्ज कर ली है और आगे इस मामले में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के जादवपुर गांव में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि एक मोटरसाइकिल ने पैदल चल रहे एक व्यक्ति को जोरदार ठोकर मारा, जिससे युवक सड़क पर उछलकर अचानक गिर गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के बखरी गांव निवासी दिलीप राम के 45 वर्षीय पुत्र राजनाथ राम के रूप में हुई है। राजनाथ राम अपने घर से लक्ष्मीपुर बाजार में सामान खरीदने के लिए पैदल जा रहे थे। इसी बीच जादवपुर गांव के पास विपरीत दिशा से आ रही एक तेज रफ्तार अनियंत्रित मोटरसाइकिल ने जोरदार टक्कर मार दिया। बाइक की टक्कर इतनी तेज थी कि युवक संभल नहीं पाया और हवा में उछलकर सड़क पर जा गिरा। उसके सिर में गंभीर चोटें आई, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। आरोपी बाइक चालक की तलाश में अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। हादसे के तुरंत बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंपा है। अब घटना के बाद से राजनाथ राम के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। इधर बैकुंठपुर के थाना अध्यक्ष ने बताया है कि मामले की छानबीन जारी है। पुलिस फरार आरोपी मोटरसाइकिल चालक की तलाश भी कर रही है, जो घटना के बाद बाइक समेत मौके से फरार हो गया। पीड़ित परिवार अब मृतक के शव का अंतिम संस्कार करने में लग गए हैं। इधर पारिवारिक कलह से तंग आकर एक युवक ने आत्मघाती कदम उठा लिया। बताया जा रहा है कि संदिग्ध परिस्थिति में युवक को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर जहरीला पदार्थ पीने की आशंका जताते हुए इलाज में जुट गए हैं। बताया जा रहा है कि वहीं प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने नाजुक स्थिति देखते हुए गोरखपुर रेफर भी कर दिया है। इस मामले में सदर SDPO 2 राजेश कुमार ने बताया कि पारिवारिक विवाद में फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की बात भी सामने आ रही है। हालांकि पुलिस एक एक बिंदुओं पर अनुसंधान कर रही है। FSL की टीम भी मामले में तफ्तीश कर रही है। बताया जा रहा है कि यह मामला माझागढ़ थाना क्षेत्र के सेखटोली गांव निवासी रोहित चौधरी के पुत्र धर्मेंद्र चौधरी हैं, जिनको संदिग्ध स्थिति में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने इन्हें गोरखपुर रेफर कर दिया है। फिलहाल घटना के बाद से परिवार में चिंता और परेशानी का माहौल भी देखा जा रहा है। पिछले 3 वर्षों से AIM की फ्री पाठशाला चल रही है, जिसमें 50 से 60 बच्चे नियमित रूप से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। बच्चों के बीच शैक्षणिक सामग्री का वितरण किया गया, जिसको लेकर MIM के जिला अध्यक्ष और प्रदेश सचिव अनस सलाम ने बच्चों के बीच शैक्षणिक सामग्री का वितरण किया। उन्होंने कहा कि लगातार बच्चों की शिक्षा उनके द्वारा आयोजित की जा रही है और इस दौरान शिक्षकों के बीच भी आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया गया। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने आज अपने कार्यालय में जनता दरबार के माध्यम से लोगों के समस्याओं को सुना और उसको निष्पादित करने के लिए पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान बताया जा रहा है कि जन सुनवाई के दौरान उपस्थित आवेदकों द्वारा अपनी समस्याएं प्रस्तुत की गयी, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने गंभीरता पूर्वक सुनवाई करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। आवेदनों के त्वरित, निष्पक्ष एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधीक्षक लगातार सुबह 10 बजे से 2 बजे तक अपने कार्यालय में जन सुनवाई कर रहे हैं। इधर माझा थाना की पुलिस ने एक मामले में फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त रूपेश शाह को आज गिरफ्तार कर लिया। यह छितौली के रामायण शाह का पुत्र बताया जा रहा है। पूछताछ के बाद आरोपी को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इधर जदयू पार्टी ने संगठन को मजबूत करने के लिए बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक शुरू की है। जदयू पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद पटेल ने बताया कि संगठन और कार्यकर्ता बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने और धारदार बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज बरौली विधानसभा क्षेत्र के दानापुर में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष इब्रार खां के साथ बैठक कर कार्यकर्ताओं से जिला अध्यक्ष ने बिहार में जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में NDA सरकार के द्वारा लगातार किए जा रहे विकास कार्यों के संदर्भ में जानकारी दी और उन्होंने कहा कि बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव में पार्टी समर्पित, ईमानदार, जुझारू एवं पुराने कार्यकर्ताओं को प्रत्याशी बनाएगी। अगर दलीय आधार पर चुनाव होता है तो निश्चित रूप से पार्टी अपने सिंबल पर भी अपने कार्यकर्ताओं को पंचायत चुनाव में मजबूती से लड़ाने के लिए काम करेगी। इधर फुलवरिया थाना की पुलिस ने लूट कांड के मामले में एक अप्राथमिकी अभियुक्त अंशु कुमार को गिरफ्तार किया है, जो सिरीपुर थाना क्षेत्र के अहिरौली गांव के हरिकेश यादव का पुत्र है। पुलिस ने इसको गोपालगंज के मोनिया चौक से विधिवत गिरफ्तार किया और अब इस पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। इधर नगर थाना की पुलिस ने भी हत्या के प्रयास में फरार चल रहे 2 आरोपियों को आज गिरफ्तार किया। इसमें प्राथमिकी अभियुक्त सिकंदर यादव, पिता दीनानाथ यादव, जो मठिया थाना नगर का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया गया। तो वहीं एक दूसरे मामले में, ये भी हत्या के प्रयास का ही मामला है, इसमें फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त राम विचार महतो को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। यह नगर थाना क्षेत्र के कररिया गांव का रहने वाला बताया जा रहा है और यहां के जगपति महतो का पुत्र है। इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद आज नगर थाना की पुलिस ने इन्हें पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इधर गोपालगंज के बंजारी चौक वार्ड नंबर 15 स्थित घनी आबादी के बीच शमशान में शव जलाने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति राजीव रॉय की बेंच ने गोपालगंज के DM और बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि अधिकारी इस मामले को गंभीरता से लें और दाह संस्कार के लिए आबादी से दूर बेहतर स्थान चुने। याचिका कर्ता के अधिवक्ता रंजीत पांडे द्वारा स्वास्थ्य और वायु प्रदूषण की दुहाई दिए जाने के बाद कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई 16 जुलाई को तय की है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पुलिस अधीक्षक ने कई थानाध्यक्षों का किया तबादला। जनजाति गरिमा उत्सव की हुई शुरुआत। मारपीट में घायल एक बुजुर्ग की गोरखपुर में इलाज के दौरान हो गई मौत। बैकुंठपुर में भीषण सड़क हादसा, एक युवक की घटना स्थल पर ही हो गई मौत और पारिवारिक कलह से एक युवक ने उठाया आत्मघाती कदम। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: घर पर बैठे बेरोजगार युवाओं के लिए अब इंतजार नहीं, एक सुनहरा मौका आपका इंतजार कर रहा है।
15: छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोपालगंज लाया है आपके लिए शानदार करियर बनाने का अवसर।
5: अगर आप 10+2 डिप्लोमा या ग्रेजुएट पास है तो बनिए एक प्रोफेशनल सेफ्टी ऑफिसर और पाए अपने भविष्य को एक नई दिशा।
15: यहां उपलब्ध है 1 साल का सेफ्टी डिप्लोमा ADIS, नेबोश और IOSH, PG डिप्लोमा इन एनवायरमेंट जैसे प्रोफेशनल कोर्स,
5: और सबसे खास बात 100% जॉब गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
15: मोबाइल नंबर 8511168095 और बात करें अमरेंद्र सर से।
5: पता छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बंजारी रोड HP पेट्रोल पंप के सामने, गोपालगंज।
16: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के कहे चलता नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
17: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
16: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी, यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीर फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
18: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
19: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
20: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
19: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
20: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
19: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554 97644।
21: ठक ठक।
22: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
19: अच्छा, मिला ही नहीं
22: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
18: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
22: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
18: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है, जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
23: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
24: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
18: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
25: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
18: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम, RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
26: भारतवर्ष, महानायकों की गौरव गाथा, अनुपम खेर के साथ।
27: आलमपना शहजादे दारा शुको, आपके गुनाहगार ही नहीं वो काफिर भी। दारा ने खुद हिंदुओं के उपनिषदों का तर्जुमा किया है, अपनी किताब में इस्लाम और हिंदू मजहब को बराबर का दर्जा दिया है, जो कि इस्लाम की तौहीन है। इन बातों से साबित होता है कि शहजादे बुतपरस्त भी हैं। और तो और, दारा तो कहते हैं कि जन्नत वही है जहां मुल्लाओं का शोर नहीं होता। मैं तो कहूंगा कि दारा शुकोह को सजाए मौत देने में कोई हर्ज नहीं है।
0: काफिर दारा शुकोह पर लगाए गए तमाम इल्जामात साबित। हम शहजादे दारा शुकोह को सजाए मौत का हुक्म अदा करते हैं। उसका सर कलम हो।

0: इस काफिर का चेहरा तब भी नहीं देखा था जब ये जिंदा था।
1: बदबख्त। मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने भाई दारा शुको का सर कटवाया, उसे धुलवाया और फिर कटे हुए सर को देखकर बोला, बदबख्त यानी बदकिस्मत। नमस्कार, मैं हूं अनुपम खेर, भारतवर्ष में आपका स्वागत है। हम उस घटना के तकरीबन 400 साल बाद यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतवर्ष के लिए बदबख्त यानी बदकिस्मत कौन साबित हुआ। अगर दारा शुको बदबख्त बदकिस्मत साबित ना होता तो भारतवर्ष का इतिहास क्या कुछ और होता। भारतवर्ष में इस बार दारा शुको की कहानी, वो दारा शुको जिसे उसके पिता शाहजहां ने अगला बादशाह घोषित किया, अपना उत्तराधिकारी बनाया, वो दारा शुको जिसके एक हाथ में पवित्र कुरान थी, दूसरे हाथ में उपनिषद। वो मानता था कि हिंदू और इस्लाम धर्म की बुनियाद एक है। वो नमाज भी पढ़ता था और प्रभु नाम की अंगूठी भी पहनता था, मस्जिद भी जाता था और मंदिर में भी उसकी आस्था थी। लेकिन सत्ता की लड़ाई में वो काफिर धर्म को त्यागने वाला बताकर मार दिया गया। और तभी से ये सवाल भी बना हुआ है कि क्या भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास अलग होता अगर औरंगजेब की जगह दारा शुको भारत का बादशाह बनता।
2: 1628 से 1658 पांचवे मुगल बादशाह शाहजहां का काल। ये वो काल था जब दिल्ली में लाल किला बना। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने विश्व प्रसिद्ध ताज महल बनवाया। ये वो दौर था जब शाहजहां ने अकबर की धार्मिक उदारता और मजहबों के बीच बराबरी की नीति को बदलना शुरू किया। लेकिन उसी दरबार और महल में बैठकर शाहजहां का बेटा भारत के लिए बिल्कुल अलग किस्म की राजनीति की बात कर रहा था। वो शहजादा था सुल्तान मोहम्मद दारा शुको। शुको का मतलब होता है शानो शौकत, जबकि आम तौर पर दारा का नाम शिको समझा जाता है, जिसका मतलब होता है आतंक जुल्म। दारा शुको का जन्म 20 मार्च 1615 को हुआ। उसके दूसरे छोटे भाई शुजा, औरंगजेब और मुराद की तरह दारा शुको की परवरिश भी मुगलिया तौर तरीके से हुई, लेकिन दारा शुको का मिजाज अलग था। अपने नाम के ही अनुरूप दारा शुको बड़ी सोच वाला शहजादा था।
1: परंपराओं के मुताबिक मुगल शहजादों को बचपन से ही शिकार, तलवारबाजी, घुड़सवारी, पहलवानी से लेकर हाथियों की लड़ाई तक का प्रशिक्षण दिया जाता था। दारा शुको ने भी ये सब कुछ देखा और सीखा, लेकिन उसका झुकाव पढ़ाई की तरफ ज्यादा था। आगे चलकर दारा शुको को पढ़ाई की ऐसी लत लगी कि कभी धार्मिक पुस्तकों के ज्ञान में डूबा रहता तो कभी जामी और रूमी जैसे महान सूफी संतों के शेर और रुबाइयों में खो जाता।
3: वो पल मेरी हस्ती जब बन गया दरिया, चमक उठा हर जर्रा होके रोशन मेरा, बन के शमा जलता हूं रहे इश्क पर मैं, बस लम्हा एक बन गया सफरे उम्र मेरा।
2: दारा शुको के इस रुझान की वजह से ही कई सवाल शाहजहां के समय से ही पूछे जा रहे हैं। दारा शाहजहां का सबसे बड़ा और चहेता बेटा था। उसने हमेशा यही चाहा कि दारा शुको मुगल सल्तनत का बादशाह बने, लेकिन क्या दारा शुको इस लायक था? इस सवाल पर आज भी बहस होती है। लोग कहते हैं कि दारा का मन तो धर्म और अध्यात्म में रमा रहता था। वो एक सन्यासी या फकीर तो बन सकता था, लेकिन बादशाह नहीं। इन सवालों से बेफिक्र दारा शुको अपने लिए और शायद भारतवर्ष के लिए एक नया रास्ता खोजने में लगा था। वो इस्लाम के अलावा दूसरे धर्मों और महान चिंतकों की किताबें पढ़ रहा था। उसने गीता और उपनिषद से लेकर सूफी संतों की रचनाओं का अध्ययन किया। दारा शुकोह प्राचीन दार्शनिक प्लेटो और अरस्तो से भी प्रभावित था। दारा तुर्की, यूनान और मिस्र तक से किताबें मंगवाकर पढ़ता था।
4: दारा शिको की तालीम का जो इंतजाम शाहजहां ने करवाया था उसमें मीर मेदक, शेख मीर मेदक जो है वो उसके उस्ताद थे जो कि सूफी थे और ये मियां मीर के शिष्यों में से थे। तो इस तरह से सूफीज़्म की तालीम भी मिली, इसके साथ साथ बहुत से योगियों के साथ रहा वो। ये सारे के सारे बहुत ही उदारवादी थे और इंसानियत के नज़दीक ऐसा नज़रिया रखते थे जो वेदांत की फ़िलासफ़ी और इस्लामिक सूफीज़्म दोनों से मिलकर तरतीब पाया था।
2: दारा शिकोह पढ़ने लिखने में इतना रमा था कि वो कभी कभी पूरी रात किताबों के बीच गुजार देता। इसी हाल में उसका निकाह नादिरा बेगम से हुआ। शादी के एक साल बाद ही दारा एक बेटी का पिता बना, लेकिन वो जिंदा नहीं बची। कहते हैं इससे दारा को बड़ा आघात लगा। इस हादसे से उबरने के लिए दारा ने सूफी संत मियां मीर के संदेशों का सहारा लिया। मियां मीर कादरिया सिलसिले के सूफी संत थे। दारा शिकोह ने अपनी रचना सकीनतुल औलिया में मियां मीर से लाहौर में हुई मुलाकात की चर्चा की है। कहते हैं दारा शिकोह ने मियां मीर को अपना आध्यात्मिक गुरु बनाया था।
4: मियां मीर दरअसल जो सूफियों के जो चार सिलसिले हिंदुस्तान में हैं उनमें से एक सिलसिला है कादरिया। मियां मीर कादरिया सिलसिले के एक बुजुर्ग थे और इनका जैसा कि सूफियों का होता है कि धर्मों की पाबंदियां, धर्मों की दीवारें जो हैं इनको जो है खड़ी करना वो पसंद नहीं करते, बल्कि इनके गिराने में ज़्यादा यकीन करते हैं। तो मियां मीर भी एक ऐसे ही बुज़ुर्ग थे और मियां मीर से दारा शिकोह इतने ज़्यादा प्रभावित थे कि उन्होंने अपनी जो दूसरी किताब लिखी सकीनतुल औलिया, तो सकीनतुल औलिया में उन्होंने देखा जाए तो मियां मीर के बारे में ही ज़्यादा लिखा है।
2: इन मुलाकातों ने दारा शिकोह के मन मस्तिष्क को हमेशा के लिए बदल दिया। लाहौर में ही आगे चलकर दारा शिकोह की मुलाकात एक हिंदू सन्यासी से हुई जिसका नाम था लाल बैरागी।
5: ये आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है?
6: मूलतः दोनों में कोई अंतर नहीं होता है।
5: और ये मूर्ति पूजा का क्या उद्देश्य है?
6: मूर्ति पूजा का उद्देश्य मनुष्य के मस्तिष्क को ध्यान में लगाना होता है, परंतु जिसे आत्मा का ज्ञान हो उसे इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है।
5: फारसी ग्रंथों के अनुसार मनुष्य चार तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि। लेकिन भारतीय ग्रंथों के अनुसार मनुष्य की रचना पांच तत्वों से हुई है, तो ये पांचवा तत्व क्या है?
6: आकाश, जिसका नाम श्रवण शक्ति है, जिसके जरिए मनुष्य बुरे और भले का अनुभव करता है।
2: कहा जाता है कि दारा के मन में इतने सवाल थे कि वो लगातार 9 दिन बाबा लाल बैरागी से सवाल पूछता रहा।
7: अब बेटा बहु घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
8: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
9: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
10: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
11: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
10: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
9: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
10: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
9: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
10: एक बार सेवा का मौका जरूर दें, विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
9: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
12: सुनिए सुनिए सुनिए,
13: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
12: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
13: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
12: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
14: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
15: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
14: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे आईसीयू इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
15: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
16: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
17: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
16: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
17: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
12: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
17: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
12: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
17: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
12: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं। सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।
18: बाबा लाल बैरागी के लिए कहा जाता है कि वो एक कुछ बात के लोगों ने तो लिखा है कबीरपंथी थे, मगर शायद कबीरपंथी नहीं थे, वैष्णवाइट वो थे, प्रीचर थे, और शायद इनसे जो मुंशी थे शाहजहाँ के, उनसे उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, उन्हीं ने मिलाया था दारा शिकोह से उनको। उन्हीं ने उनसे 60 सवाल किए और उन्हीं ने 60ों के जवाब दिए, उसको फिर बालकृष्ण ब्रह्मणी ने ट्रांसलेट किया, वो नादर नुकात के नाम से समझी जाती है।
2: दारा एक के बाद एक धर्म चिंतन से जुड़े सवाल करता रहा, बाबा जवाब देते रहे। उसने बाबा लाल के विचारों को जाना, समझा और विश्लेषण किया। ये दारा शिकोह की दरअसल खुद की खोज थी, वो धर्म के सच्चे अर्थों को समझना चाहता था। यह सिलसिला उसने रोका नहीं। सूफी संत मियां मीर के देहांत के बाद वो 6 साल तक गुरु की तलाश करता रहा। इस खोज में उसकी भेंट मियां मीर के शिष्य मुल्ला शाह से हुई। बदख्शां के रहने वाले मुल्ला शाह भी बड़े सूफी संत माने जाते थे।
19: कौन हो तुम?
20: मैं एक फकीर हूं।
19: फकीर का नाम होता है?
20: आपसे कुछ भी छुपा नहीं है।
19: जान गया तुम्हें, आओ यहां बैठो।
2: दारा का जवाब सुनकर मुल्ला शाह मुस्कुराए। उसके पीछे भी कुछ गंभीर अर्थ थे, माने थे। इस अर्थ को समझने के लिए दारा शिकोह की ही लिखी 4 पंक्तियों को समझना जरूरी है। दारा ने लिखा,
20: हमने एक जर्रे को भी सूरज से अलग नहीं देखा। पानी का हर कण अपने आप में समंदर है। सत्य को चाहे जिस नाम से पुकारो, हर नाम खुदा के नामों में से एक है।
2: इन पंक्तियों से दारा जो कहना चाह रहा था वो वेदांत या उपनिषद का ज्ञान है। एक ईश्वर है, एक ब्रह्म है, जो सृष्टि के कण कण में मौजूद है। दारा शिकोह से 1000 साल पहले इसी ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने किया था।
21: ब्रह्म सत्यम, जगन मिथ्या, जीवो ब्रहेव नापरा। ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है। जीव ही ब्रह्म है और जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं। क्या कोई घड़ा मिट्टी से अलग हो सकता है? ये जगत भी इस मिट्टी के घड़े की तरह है। कोई ब्रह्म से अलग नहीं है, हर जीव ब्रह्म है।
2: दारा ने सूफी संत मुल्ला शाह की प्रेरणा से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करने का फैसला किया। कुछ ग्रंथों में यह चर्चा भी है कि इस अनुवाद के लिए दारा वाराणसी में रहा और 150 संस्कृत विद्वानों की मदद ली। उपनिषदों के इस अनुवाद को दारा ने सीरे अकबर का नाम दिया, जिसका मतलब है महान रहस्य। ये एक बहुत बड़ा कदम था। फारसी में अनुवाद के बाद ये ग्रंथ पश्चिमी देशों तक पहुंचे और भारतीय चिंतन परंपरा और विचार की गहराई को पूरी दुनिया ने जाना।
0: उपनिषदों की का पूरा ट्रांसलेशन है, सबसे मशहूर उपनिषदों का 52 उपनिषदों का है सर्रे अकबर के नाम से। और इसका फिर लैटिन में तर्जुमा हुआ 1800 में, वो फारसी से हुआ। और इस तरह से वो लैटिन ट्रांसलेशन पूरे यूरोप में घूमा, क्योंकि लातीनी जबान लैटिन जबान हर एक जानता था, और उससे जो यूरोपियन फिलॉसफी पे बहुत असर हुआ।
1: दारा ने कुछ विद्वानों की सहायता से भगवत गीता का भी फारसी में अनुवाद किया, लेकिन दारा की जो रचना सबसे अद्भुत है वो है मज़्मे उल बहरैन। दारा की ये किताब हिंदू और इस्लाम धर्म में समानता खोजने की पहली बड़ी कोशिश थी।
2: मज़्मे उल बहरैन का मतलब है महासागरों का मिलन, यानी हिंदू और इस्लाम धर्म नाम के दो महान सागरों का एक होना। मज़्मे उल बहरैन पहला ऐसा ग्रंथ है जो हिंदू और इस्लाम धर्म के बुनियादी दर्शनों को जोड़कर देखता है। दारा का मानना था कि इस्लाम का एक ईश्वरवाद वेदांत दर्शन के निकट है। दारा ने उपनिषदों के ज्ञान को गहराई से जाना समझा। दारा इस्लाम और सूफी दर्शन को उपनिषद से जोड़कर देखने लगा। वो समझ गया था कि हिंदू मुस्लिम अलग अलग मजहब जरूर हैं, लेकिन बुनियाद एक ही है।
20: तुम ही रहते हो काबा और सोमनाथ के मंदिर में और प्रेमी के हृदय में। तुम गुलाब हो और प्रेमी बुलबुल हो। तुम अपने ही हुस्न के चिराग पर परवाना हो।
4: वैदिक दर्शन में एक ईश्वरवाद की बड़ी अहमियत है, और इसीलिए उर्दू और फारसी के बड़े राइटर्स, मतलब अमीर खुसरो से लेकर गालिब तक, ये सारे ही लोग जो हैं ये मानते रहे हैं कि हिंदू धर्म में एक ईश्वरवाद का तसव्वुर मौजूद है। दारा शिकोह का ईमान था इस बात में कि हिंदू भी एक ईश्वरवाद को मानते हैं, उसके अनुयायी हैं, और मुसलमान भी। इसलिए जब एक ईश्वर ने पैदा किया है, दोनों एक ही ईश्वर को मानते हैं, तो फिर इनमें अलगाव नहीं होना चाहिए।
1: दारा शिकोह के परदादा अकबर ने सुलह कुल का विचार दिया, जिसमें सभी धर्मों के आदर की बात थी। लेकिन अकबर से कहीं आगे दारा की सोच थी। वो हिंदू और मुस्लिम धर्म की आध्यात्मिक एकता की बात करता था। वो कहता था कि दोनों धर्म की बुनियाद एक है। दारा अपने इस विचार से कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गया।
2: उन कट्टरपंथियों में उसका अपना भाई औरंगजेब भी था। दारा के विचारों से अलग औरंगजेब की चिंता मुगल सल्तनत की बादशाहत थी। जब दारा और उसके भाई बालिग हुए तो शाहजहां ने रियासत के 4 सूबों की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी। शुजा को बंगाल, औरंगजेब को दक्कन और मुराद को गुजरात की सूबेदारी सौंपी गई।
1: शाहजहां दारा को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, और यह बात जग जाहिर करने में उसने कोई कोर कसर भी नहीं छोड़ी। शाहजहां ने दारा को पंजाब की बड़ी जागीर दे दी थी, लेकिन दिल्ली आगरा से उसे दूर जाने नहीं दिया। शाहजहां उसे अपने दरबार में ही रखता था, और अपनी गद्दी के पास एक सोने की कुर्सी दारा शुकोह के लिए लगवा दी गई। 1654 में दारा को सुल्तान बुलंद इकबाल की पदवी दे दी गई।
2: इसी बीच सल्तनत के उत्तर पश्चिमी इलाके में तब के फारस और आज के ईरान की सेना ने कंधार पर कब्जा कर लिया। कब्जे को छुड़ाने के लिए पहले औरंगजेब ने दो बार कोशिशें की, लेकिन वो नाकाम रहा। ऐसे में दारा शुकोह ने कंधार को वापस लेने के लिए सेना का नेतृत्व करने का प्रस्ताव दिया, जिसे शाहजहां ने मान लिया। ये फैसला बहुत हैरत में डालने वाला था, क्योंकि दारा शुकोह को सैनिक अभियान का कोई अनुभव नहीं था। उल्टे उसकी फौज में सिपाहियों के अलावा अनेक सन्यासी, फकीर और तांत्रिक भी थे, जिनके ऊटपटांग दावों को दारा शुकोह मान लेता था।
3: मेरी दुआओं के असर से 3 घंटे के अंदर दुश्मन तोप से गोले बरसाना पड़ गया, फिर आपकी फौज कंधार पे हमला करके किले पर कब्जा कर गई। वो कैसे? मैं दुआ करूंगा, लेकिन उसके लिए मेरी भी कुछ जरूरतें हैं। मुझे खाने के लिए मुफ्त रसद दिया जाए और 20 रुपए रोज दिए जाए।
2: दारा शुकोह के पास इससे पहले भी कंधार में कई फकीर जोगी आ चुके थे, लेकिन दारा शुकोह इस फकीर की बातों में आ गया। उसे कैंप के भीतर दुआ करने के लिए एक शांत जगह दी गई और कहा,
3: मेरी दुआओं का असर कब से निकला?
2: जैसे ही तांत्रिक ने यह बात कही, अगले दिन किले पर हमले की तैयारी शुरू हो गई। दोपहर को तांत्रिक आया और फिर गायब हो गया। दिन ढलने पर वो फिर आया।
3: मिर्जा साहब सलाम। मैं किले के अंदर गया, मंगलवार को दोपहर के बाद सैनिकों को लेकर जाऊंगा। युद्ध
2: आक्रमण को फिर टाल दिया गया। अगले सोमवार को उसने एक बत्ती जलाई और कुछ उड़द के दाने छोड़े। इसके बाद तांत्रिक जोर जोर से कूदने फांदने लगा। इसके बलि का दौर चला और कहा,
3: हमला कल होगा।
5: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
22: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
22: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
23: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो? गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
24: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
23: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
24: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
25: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
26: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
25: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
6: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
23: कहाँ पर?
6: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल चवही खास गोपालगंज,
23: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
6: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
23: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
6: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता चवही खास NH 27 गोपालगंज, कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835565965।
23: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
7: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
8: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
7: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
8: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
7: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
8: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
7: संपर्क करें 8470309 या 9765665750।
2: अगली रात दारा शुकोह का मुख्य तोपची मुसलमान तांत्रिक के कैंप में पहुंचा, जब तांत्रिक सो रहा था।
3: शाह साहब, किले की हिफाजत 3 फरिश्ते कर रहे हैं और कल रात में मेरी उनसे जबरदस्त लड़ाई हुई और युद्ध के दरमियान मुझे कई बार आसमान में जाना पड़ा और नीचे आना पड़ा। 2 फरिश्तों को तो मैंने अपने कब्जे में कर लिया, लेकिन तीसरा बहुत शातिर और खतरनाक है। मैं तो ये कहूंगा कि सोमवार तक के लिए युद्ध टाल दिया जाए, उसके बाद फिर मैं उन्हें अपने कब्जे में कर लूंगा।
2: तय समय पर दारा शुकोह का मुख्य तोपची मिर्जा जफर फिर उस तांत्रिक के पास पहुंचा।
3: मैंने तीसरे फरिश्ते पर कब्जा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन काबू नहीं कर सका, और उन दोनों फरिश्तों को अगर मैं आजाद नहीं किया तो वो मेरी जान ले लेंगे। इसलिए मेरी गुजारिश है कि कांधार पर युद्ध न किया जाए।
2: बहरहाल जब दारा के नेतृत्व में हमला हुआ तो मुगल सेना को खासा नुकसान उठाना पड़ा। ईरानियों की युद्ध नीति ज्यादा कारगर साबित हुई।
1: कंधार में मुगलों को सफलता नहीं मिली, इसकी एक वजह निश्चित तौर पर दारा शुकोह खुद था। दारा शुकोह कोई युद्ध कौशल नहीं दिखा पाया, उल्टे कुछ मुंह लगे सरदारों को बढ़ावा देकर शाही सेना के वरिष्ठ अधिकारियों को नाराज कर दिया। लेकिन जब वो दिल्ली पहुंचा तो दारा का स्वागत शाहजहां ने ऐसे किया जैसे उसने एक बड़ी जंग जीत ली।
2: शाहजहां के इस दारा प्रेम ने हालात को बहुत पेचीदा बना दिया था। यही हाल शाहजहां का भी था। हालांकि औरंगजेब ने हुकूमत चलाने और सैन्य अभियानों में खुद को साबित किया था, लेकिन दारा शुकोह औरंगजेब को धूर्त और मक्कार नमाजी कहता था, जबकि औरंगजेब दारा को मजहब को छोड़ने वाला कहता था। शाहजहां के रुख ने हालात और खराब कर दिए। धीरे धीरे मुगल ओहदेदार बंटने लगे।
1: एक तरफ दारा शुकोह से शाहजहां को बेहद लगाव था तो दूसरी तरफ औरंगजेब को वो बिल्कुल पसंद नहीं करता था। छोटी छोटी बातों पर औरंगजेब को शाहजहां झिड़क देता था।
2: शाहजहां औरंगजेब को पसंद नहीं करता था। कंधार में असफलता के बाद सिंध और मुल्तान की सूबेदारी उससे छीनकर दक्कन भेज दिया था। उस पर उपजाऊ जमीनों पर गलत तरीके से कब्जा करने का आरोप लगाया। एक बार तो बुरहानपुर में शाहजहां के पसंदीदा आम के पेड़ों का फल खाने के आरोप में औरंगजेब को फरमान भेजा गया।
18: ये लिखते हैं कि तुमने मुझे जहानारा के बाग के आम नहीं भेजे, तो कह रहा है कि उसमें बाग आम हुए ही नहीं है। मैं कैसे भेज देता आपको, मैंने और सब जगह के भेजे, उनके बाग में अबके नहीं हुए हैं हम। तो हर जगह बाप बेटे की आपको अच्छा जहाँ को उन पर शक ही पर शक है, या तो कोई पैदा कर रहा है या अपने आप से।
2: लेकिन हालात जल्द ही बदल गए। सोलह सौ सत्तावन में शाहजहां गंभीर रूप से बीमार पड़ा। दरअसल शाहजहां की बीमारी की खबर जैसे ही फैली, अफवाहों का बाजार गर्म होने लगा था। कुछ हफ्तों की तीमारदारी से शाहजहां ठीक हुआ, लेकिन दारा के दूसरे भाई ये आरोप लगाने लगे कि शाहजहां की मृत्यु हो चुकी है और दारा शिको उनकी बीमारी की बात कहकर वरगला रहा है। शाहजहां ने ठीक होने पर लाल किले के झरोखे से दर्शन भी दिया, लेकिन औरंगजेब और उसके दूसरे भाई की नजर गद्दी पर थी।
1: शाहजहां बादशाह था, लेकिन उसकी बीमारी ने उसके चारों बेटों के बीच उत्तराधिकार की लड़ाई को तेज कर दिया। दारा के तीनों भाइयों ने खुद को बादशाह घोषित कर दिया और पिता शाहजहां को देखने के बहाने अपनी सेना के साथ दिल्ली की तरफ कूच करने लगे। इसी बीच शाहजहां अपनी बीमारी से ठीक हुआ तो उसने आगरा जाने का फैसला किया, लेकिन आगरा जाने से पहले उसने एक बड़ी भूल कर दी। उसने मुगल ओहदेदारों के सामने यह ऐलान कर दिया कि दारा शिको के साथ बादशाह की तरह व्यवहार करे।
2: ये खबर मिलते ही शाहजहां के तीनों बेटों के बीच दिल्ली के तख्त के लिए होड़ शुरू हो गई। दक्षिण से औरंगजेब, गुजरात से मुराद और बंगाल से शुजा तीनों सेना लेकर दिल्ली की ओर बढ़े। भाइयों में औरंगजेब का पलड़ा भारी था, क्योंकि वो दक्षिण के सैन्य अभियान में अपनी एक मजबूत फौज तैयार कर चुका था। उत्तराधिकार की ये लड़ाई करीब दो साल चली। इसमें धर्मठ और सामूगढ़ की जंग सबसे बड़ी थी। उज्जैन के पास धर्मठ की जंग में शाही सेना की हार हुई, जबकि आगरा से 10 मील पूर्व में सामूगढ़ नाम की जगह पर दारा ने खुद शाही सेना का नेतृत्व किया। सामूगढ़ की जंग में दारा औरंगजेब की सेना के सामने टिक नहीं पाया।

0: बस मैं और आगे नहीं जा सकता, चाहे जो होना है हो जाए।
1: तो इस तरह औरंगजेब की ताकत बढ़ गई थी। दूसरी चीज, जंगों की बड़ी महारत थी, बड़ा तजर्बा था उसको, जबकि दारा शिकोह को भी तजर्बा था, जंगें उसने भी लड़ी हैं, जंगें जीती भी हैं उसने, लेकिन औरंगजेब के मुकाबले में वो कम पड़ जाता था, उतनी ज़बरदस्त स्ट्रेटेजी जंग की वो नहीं बना पाता था। इसलिए दारा शिकोह को उसमें शिकस्त हुई और शिकस्त खाकर उसको फरार होना पड़ा।
2: सामूगढ़ की लड़ाई भारत के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई मानी जाती है। इस लड़ाई ने धार्मिक कट्टरता को छोड़कर सभी धर्मों को एक मानकर राज करने की अकबर की नीति को खत्म किया। साहित्य, कला और विज्ञान के पुनरुत्थान को खत्म किया। बहरहाल इस लड़ाई में हार से हताश दारा शिकोह भाग्य के भरोसे भागता रहा। सवाल था कब तक। सामूगढ़ की हार के बाद दारा कई दिनों तक औरंगजेब की नजरों से छिपता और भागता रहा। आगरा के किले पर कुछ दिनों की घेराबंदी के बाद औरंगजेब का कब्जा हो गया, शाहजहां को नजरबंद कर लिया गया और औरंगजेब ने खुद की ताजपोशी करवाई।

0: लेकिन याद रखना, मेरा गुना सिर्फ तेरी जान बचाना था।
1: मलिक जीवन कहां मानने वाला था, भारत के भाग्य के चमकते सितारे को उस गद्दार ने औरंगजेब को सौंप दिया।
2: उस काफिर के पैरों में बेड़ियां डाल, उसे एक गंदे कपड़े पहनाओ, उसे एक मरियल से हाथी पे बैठाकर पूरी दिल्ली में घुमाओ। इस दुनिया को भी तो पता चलना चाहिए कि इस सल्तनत का बादशाह कौन है।
3: और ऐसा ही हुआ। दारा को फटेहाल हाथी पर बिठाकर जब दिल्ली में घुमाया गया तब बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकल आए। दारा की हालत देखकर कोई फूट फूट कर रो रहा था, तो कोई उसकी मदद के लिए चीख रहा था। कुछ लोग गुस्से में आकर औरंगजेब के सैनिकों पर पत्थर और अंडे फेंकने लगे। ऐसा लग रहा था कि दारा मुगल शहजादा नहीं बल्कि उनके घर का एक सदस्य हो। रास्ते में एक भिखारी ने दारा से खैरात मांगी तो दारा ने अपनी चादर उतार कर उसे दी। दारा किसी नायक की तरह दिख रहा था। औरंगजेब को जब ये खबर लगी तो वो छल्ला उठा। दारा के साथ लोगों का समर्थन देखकर वो परेशान हो गया। उसने दारा की सजा को लेकर दरबार बुलाया, जहां दारा पर यह आरोप लगा कि वो काफिर है।
4: आलमपना, आपके हुक्म के मुताबिक हमने शहजादे दारा सुको और उनके छोटे बेटे सिपीहर सुको को ख्वासपुरा में नजरबंद कर रखा है।
5: जनाब दानिशमंद खान, दारा शिको के साथ क्या किया, उसे ग्वालियर के किले में कैद रखा जाए या फिर सजाए मौत दी जाए?
6: आलमपनाह, दारा शिको को ग्वालियर के किले में कैद करने में कोई हर्ज नहीं।
7: नहीं आलमपनाह, शहजादे दारा शिको को जिंदा रखना मुनासिब नहीं होगा। दिल्ली में बहुत लोग हैं जो उनसे हमदर्दी रखते हैं, उन्हें मुगल सल्तनत का बादशाह समझते हैं। आलमपना, शहजादे दारा शुको आपके गुनहगार हैं, उन्हें मौत की सजा मिलनी चाहिए।
5: हम नहीं चाहते कि कल को कोई ये कहे कि हमने जानबूझकर दारा शुको का कत्ल करवाया है, इसलिए उलेमा हजरात का मशवरा जरूरी है। तो जनाब पेशे इमाम, शरीयत के मुताबिक आपकी क्या सलाह है?
8: नन्ना मुन्ना लाही हूं, देश का सिपाही हूं।
9: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
8: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
9: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
8: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
10: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
11: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
10: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
11: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
10: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
11: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
12: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
13: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
12: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
13: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज,
12: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97714-86164।
14: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।
15: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां।

0: साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहाँ इम्पोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहाँ हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं। श्रृंगार वाटिका,
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034-48652 पे।
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
3: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
4: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
2: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
4: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष शग्यो द्वारा।
4: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
4: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
2: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
5: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
6: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
5: तो देर मत कीजिए,
6: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज, ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
8: तब रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
9: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
8: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
9: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
8: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
9: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा।
10: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
8: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
11: आलमपना शहजादे दारा शुको, आपके गुनाहगार ही नहीं वो काफिर भी है। दारा ने खुद हिंदुओं के उपनिषदों का तर्जुमा किया है। उन्होंने बादशाह शाहजहां से कहकर कुंभ के मेले में हिंदुओं से लिए जाने वाले कर में छूट दिलवाई थी, और शहजादे ने अपनी किताब में इस्लाम और हिंदू मजहब को बराबर का दर्जा दिया है, जो कि इस्लाम की तौहीन है। शहजादे ने हिंदू मंदिरों को अतिया दिया है। उन्होंने कई मंदिरों की मरम्मत करवाई और नए मंदिर भी बनवाए हैं। इन बातों से साबित होता है कि शहजादे बुत परस्त भी हैं। धारा ने तो अपनी अंगूठी पर काफिरों का प्रभु शब्द लिखवाया है। और तो और, धारा तो कहते हैं कि जन्नत वही है जहां मुल्लाओं का शोर नहीं होता। आलमपना शहजादे अगर खुदा न खास्ता हिंदुस्तान के तख्त पर बैठ गए,
12: पूरी सूरत वाले को आईने से ही शिकायत हो तो फिर मेरा क्या कसूर? अगर आप मेरी कहानी को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है कि इस जमाना ही नाकाबिले बर्दाश्त है।
13: और अब आपसे विदा लेने का समय हो गया है, तो अनुमति दीजिए कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की।
14: हैव अ सुपर्ब डे।
13: नमस्कार।
15: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत ईएफटीए समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को रिपोर्ट सौंपी। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। प्रधानमंत्री कल ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। क्राउन प्रिंस हकॉन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनिस गहर स्तुर भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते टीईपीए के लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
16: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब क्रिएट करने का लक्ष्य है।
15: प्रधानमंत्री ने भारत के हरित परिवर्तन पर बल देते हुए देश के विकास, बढ़ती ऊर्जा मांग, जलवायु प्रतिबद्धताओं और नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रिड अवसंरचना, हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार का उल्लेख किया।
16: 2030 तक हमने 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी और 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा है। क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट नॉर्वे वेल्थ फंड की भी प्राथमिकता है। मैं नॉर्वे को भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में अहम हिस्सेदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं।
15: प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों से नई साझेदारियां बनाने, सहयोग के उभरते क्षेत्रों की पहचान करने और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने का आग्रह किया। शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारत तथा नॉर्वे के व्यापार और अनुसंधान समुदायों के 250 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम सिबी जॉर्ज ने प्रेस वार्ता में इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के हरित और समुद्री अर्थव्यवस्था में साझेदारी से अधिक निवेश आएगा, रोजगार सृजित होगा और भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा सहित सतत ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा।
17: Recognizing the ambitious
18: भारत के महत्वाकांक्षी समुद्री अमृतकाल विजन 2047 को मान्यता देते हुए दोनों नेताओं ने जहाज निर्माण, हरित जहाजरानी, जहाज पुनर्चक्रण, बंदरगाह अवसंरचना का विकास, नाविकों का प्रशिक्षण, मत्स्य पालन, जलीय कृषि और बंदरगाहों के हरितकरण सहित समुद्री अर्थव्यवस्था साझेदारी को बढ़ाने का आह्वान किया है।
17: ग्रीनिंग ऑफ पोर्ट्स।
15: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। अधिक जानकारी ओस्लो से हमारी संवाददाता से।
14: भारत और पांच नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। TEPA लागू होने के परिप्रेक्ष्य में यह शिखर सम्मेलन व्यापार और निवेश संबंधों को अधिक मजबूत करने का प्रयास करेगा। वर्तमान में इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य $19 अरब है। तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
15: प्रधानमंत्री मोदी पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेल्ला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से बातचीत भी करेंगे।
19: रोम पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में बसे भारतीय समुदाय के सदस्यों से मुलाकात करेंगे, जिनकी यहां उल्लेखनीय उपस्थिति है। वे भारतीय मूल के बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखेंगे, जिसमें प्रवासी भारतीय समुदाय के बच्चों द्वारा गाया गया एक पंजाबी लोकगीत शामिल है। ये बच्चे रोम के पास स्थित फोंदी कस्बे से आते हैं, जहां उनके माता पिता कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। ये पंजाबी लोक शैली का गीत एक जट किसान के गर्व, शक्ति और उत्साहपूर्ण जीवन का उत्सव मनाता है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
15: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
20: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
21: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
20: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
15: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और यह केवल तकनीक की प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।
22: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पिछले 6 दशकों के दौरान नक्सलवाद के कारण बस्तर को बड़े पैमाने पर जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अगले 5 वर्षों में करेगी। उन्होंने कहा कि अगले 1.5 वर्षों के दौरान बस्तर में स्थापित सुरक्षा बलों के करीब 200 कैंपों में से 70 कैंपों को जन सेवा केंद्रों में बदलकर उन्हें आदिवासी कल्याण का केंद्र बनाया जाएगा। इन सेवा केंद्रों में बैंकिंग, आधार, राशन कार्ड, कौशल प्रशिक्षण सहित केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
15: न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। एक रिपोर्ट।
23: उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा पिछले वर्ष 12 अगस्त को एक समिति का गठन किया गया था। रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में उचित समय पर प्रस्तुत किया जाएगा। मिश्रा, न्यायाधीश जांच समिति के पीठासीन अधिकारी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर और कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी आचार्य ने श्री बिरला को न्यायाधीश जांच समिति की रिपोर्ट सौंपी। आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
15: पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय को मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आधिकारिक आदेश जारी कर निदेशालय को घोष के खिलाफ कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। श्री अधिकारी ने कहा कि पूर्व की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इस मामले की जांच प्रक्रिया को लंबे समय तक जबरन और अनैतिक रूप से रोक रखा था। ये मामला एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या से भी संबंधित है। सीबीआई ने 29 नवंबर 2025 को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में आरोप पत्र दाखिल किया था। अमरीका ने समुद्र में पहले से मौजूद रूस के तेल पर प्रतिबंधों की छूट की अवधि को एक महीने के लिए बढ़ा दिया है। अमरीका के वित्त विभाग ने कल एक आदेश जारी कर 17 अप्रैल या उससे पहले समुद्र में फंसे रूसी तेल पर प्रतिबंधों से मिली छूट की समय सीमा को 17 जून तक बढ़ा दिया है। इससे पहले अमरीका ने 5 मार्च को एक महीने के लिए रूस का तेल खरीदने पर भारत को प्रतिबंधों से छूट दी थी। कुछ दिनों बाद यह छूट अन्य देशों को भी दी गई, जो 11 अप्रैल को समाप्त हो गई थी। अमेरिका इस वर्ष 30 और 31 अक्टूबर को जॉर्जिया के अटलांटा शहर में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कल घोषणा की कि इस बैठक में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के विदेश मंत्री शामिल होंगे, जिससे वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए G20 के मुख्य उद्देश्यों को आगे बढ़ाया जा सके। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। चेन्नई में पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से शाम 7:30 बजे से होगा। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में दिन के समय मौसम गर्म और उमस भरा रहने की संभावना है। राजस्थान, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज रात भी गर्मी बने रहने का अनुमान है। जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में आज बादल गरजने के साथ बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
0: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपना शीर्षक बनाया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका प्रतिबंध हटाए या लगाकर रखे, रूस से तेल खरीद जारी रखेगा भारत, सरकार की दो टूक, अपने देश की ऊर्जा जरूरत के हिसाब से तेल खरीदेंगे। हिंदुस्तान ने अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के दावे को प्रमुखता दी है। ईरान का नया शांति प्रस्ताव भी खारिज। पंजाब केसरी ने लिखा है, ट्रंप ने युद्ध पूरी तरह खत्म करने के लिए रखी 5 शर्तें, जवाब में तेहरान ने भी 5 शर्तों की सूची थमाई। देशबंधु की खबर है, ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर लागू की नई व्यवस्था, स्ट्रेट के प्रबंधन के लिए नया निकाय बनाने की घोषणा की गई है। नवभारत टाइम्स के अनुसार नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने सोमवार को महाराष्ट्र के लातूर से 10वीं गिरफ्तारी की। सीबीआई का दावा, नीट से 10 दिन पहले मिले थे सवाल। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा पर विश्लेषण दिया है। नए समीकरणों की उम्मीद शीर्षक से पत्र लिखता है, गहरे भू राजनीतिक संकटों और आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की 6 दिवसीय यात्रा सिर्फ औपचारिक राजनयिक दौरा भर नहीं है, बल्कि इसके व्यापक कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक निहितार्थ भी हैं। दैनिक भास्कर की विशेष खबर ध्यान आकर्षित करती है, स्मार्ट से उबे लोग, बेसिक चीजों में सुकून की तलाश, जो गैजेट चुपचाप काम करे अब वही ज्यादा समझदार।
15: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत EFTA समझौते के तहत 100 अरब डॉलर अमरीकी निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी पांच नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for $100 billion investment and 1 million jobs under India EFTA agreement at Business and Research Summit in Oslo, Norway. Prime Minister Modi to meet leaders of all five Nordic nations at third India-Nordic summit today. Defence Minister Rajnath Singh describes Operation Sindoor as testament to India's transformation into strong, confident and capable nation. Judges Inquiry Committee investigating allegations against Justice Yashwant Verma submits report to Lok Sabha Speaker Om Birla. West Bengal government allows ED to prosecute.
2: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
3: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
2: कहाँ पर?
3: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल चवही खास गोपालगंज,
2: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
3: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
2: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
3: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता चवही खास NH 27 गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835569 65।
4: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
24: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
25: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
24: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
26: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
27: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
28: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
29: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434003।
30: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
31: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
30: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
31: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
30: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
5: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
6: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
5: तो देर मत कीजिए,
6: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।

0: लल्ला मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902। अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS, एक्स रेसिडेंट KGMU लखनऊ।
5: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
5: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
6: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
5: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
5: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 तक।
4: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
7: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
8: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
9: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
10: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
9: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
7: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64498 पे।

0: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
2: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
3: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
2: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
4: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
5: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
6: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
5: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
7: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
5: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
7: जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
5: और 9097160602।
8: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
9: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
10: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
11: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
12: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
10: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
9: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
10: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
12: कॉल करें 87 894 18744।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ अंकल, मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमान गढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
6: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
7: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
6: अरे, अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
7: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
8: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
9: ओ माई गॉड, आज फिर से भूल गई।
8: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
9: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
9: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
9: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97007006575।
4: ठक ठक।
5: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: राधा तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
8: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
6: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
9: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
6: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
10: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में, आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं, नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। आम लोगों की समस्याओं के त्वरित निपटारे के लिए आज प्रदेश की सभी पंचायतों में हो रहा है सहयोग शिविर का आयोजन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सारण जिले की टुमरी बुजुर्ग पंचायत से करेंगे शिविर की शुरुआत। प्रदेश में राशन कार्डधारी परिवारों की जांच में संदिग्ध पाए गए 35,15,000 से अधिक परिवारों के नाम सूची से काटे जाएंगे। खगड़िया जिले के मांझी थाना क्षेत्र में NH31 पर सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत, 6 अन्य घायल। और प्रदेश के विभिन्न भागों में तापमान 40 डिग्री के पार। मौसम विभाग ने आज रोहतास, कैमूर तथा बक्सर जिले में लू की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए आज से पंचायत स्तर पर राज्यव्यापी सहयोग शिविर की शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सारण जिले की टुमरी बुजुर्ग पंचायत में आयोजित कार्यक्रम से शिविर का उद्घाटन करेंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी पटना के नौबतपुर की चिरौड़ा पंचायत में आयोजित शिविर में शामिल होंगे। सभी प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिव भी संबंधित जिलों में आयोजित होने वाले शिविर में भाग लेंगे। इन्हें कम से कम 3 प्रखंडों के सहयोग शिविरों में उपस्थित रहने को कहा गया है। इधर हमारे संवाददाता ने बताया कि 7 निश्चय 3 के सबका सम्मान जीवन आसान विजन के तहत इस पहल का मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवाओं और प्रशासनिक तंत्र को सीधे जनता के द्वार तक पहुंचाना है। ये शिविर प्रत्येक महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में आयोजित किए जाएंगे।

0: दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाए। ऐसा नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री सचिवालय स्तर से भी इन शिकायतों की सीधी निगरानी की जाएगी। जनता की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर 1100 और सहयोग पोर्टल भी क्रियाशील कर दिया गया है। समाचार कक्ष से मैं सविता पारीक।
1: इधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि सहयोग शिविर के तहत प्राप्त आवेदनों का 30 दिनों के भीतर निष्पादन किया जाना अनिवार्य है। पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं करने पर संबंधित अधिकारी 31वें दिन स्वतः निलंबित हो जाएंगे।
2: आपको अटकाना और भटकाना नहीं है। 19 तारीख से यह जब शुरुआत होगा, अगले 20 जून को 31वां दिन होगा साथियों, और जो पदाधिकारी 30 दिन में इसको ऑर्डर नहीं करेंगे, अंतरिम ऑर्डर भी नहीं करेंगे क्योंकि कई चीजें न्यायालय से जुड़े होंगे, तो 30 दिन में जो भी पदाधिकारी आदेश नहीं जारी करेगा वो 31वां दिन स्वयं निलंबित हो जाएगा।
1: केंद्र सरकार ने प्रदेश में राशन कार्डधारी परिवारों की जांच में संदिग्ध पाए गए 35,15,000 से अधिक परिवारों का नाम सूची से काटने का निर्णय लिया है। इनमें 21,10,000 से अधिक परिवारों के नाम काट लिए गए हैं, जबकि 14,00,000 से अधिक और संदिग्धों के नाम काटे जाएंगे। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सभी जिलों को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किया है। सबसे अधिक 2,12,000 परिवारों के नाम पटना जिले में कटेंगे। प्रदेश में बैंकों का साख जमा अनुपात सीडी रेशियो पहली बार 60% से अधिक हो गया है। बिहार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में पहली बार 60.21% का सीडी रेशियो हासिल किया है। विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह की अध्यक्षता में पटना में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकिंग समीक्षा बैठक में ये जानकारी दी गई। बैठक में सरकारी और निजी बैंकों के स्तर से ऋण वितरण तथा प्राथमिकता क्षेत्रों में वित्तीय प्रवाह की स्थिति की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने तेल कंपनियों को पाइप नेचुरल गैस पीएनजी के लंबित आवेदनों के शीघ्र निपटारे का निर्देश दिया है। वर्तमान में पीएनजी के लिए राज्य में 31,774 आवेदन लंबित हैं। मुख्य सचिव ने अतिरिक्त मानव बल और संवेदकों के माध्यम से इन आवेदनों को मिशन मोड में निपटाने का निर्देश दिया। आपदा प्रबंधन समूह की उच्च स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव ने पीएनजी कनेक्शन की प्रगति के साथ साथ घरेलू एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति की स्थिति और पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता की भी समीक्षा की। मुख्य सचिव ने कहा कि पूरे राज्य में पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी को लेकर किसी भी प्रकार की संकट की स्थिति नहीं है। भूमि विवाद के बढ़ते मामलों और लंबित वादों के त्वरित निपटारे के लिए राज्य सरकार ने बिहार भूमि न्यायाधिकरण में सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 7 कर दी है। साथ ही न्यायाधिकरण में 5 नए न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति भी की गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि फार्मर रजिस्ट्री के लिए चल रहे विशेष अभियान के तहत अब तक 74,434 किसानों का निबंधन हो चुका है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि कृषि विभाग तथा भूमि और राजस्व विभाग के अधिकारी समन्वय बनाकर फार्मर रजिस्ट्री अभियान को गति दे रहे हैं। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन माध्यमों पर प्रसारित उस दावे का खंडन किया है जिसमें कहा जा रहा है कि मंदिरों के स्वर्ण भंडार के बदले सरकार मंदिरों को गोल्ड बॉन्ड जारी करेगी। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि यह दावा पूरी तरह फर्जी है। पीआईबी ने कहा कि सरकार की ओर से ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया गया है। उच्च शिक्षा निदेशक एन के अग्रवाल अंगिका अकादमी और बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। वे विभागीय कार्यों के अतिरिक्त अकादमी के अध्यक्ष पद का दायित्व निभाएंगे। इसके अलावा उच्च शिक्षा विभाग के उपनिदेशक दिवेश कुमार चौधरी को अंगिका अकादमी और बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी के निदेशक के पद पर नामित किया गया है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @news_पटना को फॉलो कर सकते हैं। राज्य के अधिकतर हिस्सों में भीषण गर्मी की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 10 जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। इस अवधि में कयाची और बक्सर में लू की स्थिति बनी रही। इन स्थानों पर तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार कयाची प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बक्सर का अधिकतम तापमान 44.4, डेहरी का 44 और कैमूर का अधिकतम तापमान 43.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं छपरा का 40.4, नालंदा का 40 और पटना का अधिकतम तापमान 37.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इधर मौसम विभाग ने आज रोहतास, कैमूर और बक्सर जिले में लू चलने की आशंका को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है।
1: दिनांक 19 मई राज्य के उत्तर पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के भभुआ, बक्सर एवं रोहतास जिलों में एक दो स्थानों पर उष्ण लहर चलने की संभावना है।
0: खगड़िया जिले के मानसी थाना क्षेत्र में NH 31 पर हुए सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, वहीं हादसे में 6 अन्य घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक तेज रफ्तार ट्रक और ऑटो रिक्शा के बीच हुई टक्कर के कारण ये हादसा हुआ। सभी मृतक ऑटो सवार यात्री थे। हादसे के बाद मौके से भागने के क्रम में ट्रक ने सामने से आ रहे दो अन्य वाहनों को भी टक्कर मार दी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दुर्घटना पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। साथ ही उन्होंने सभी मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया है। इधर रोहतास जिले के धौड़ार थाना क्षेत्र में तिलोथू सासाराम मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य घायल हो गए। घायलों में एक की हालत गंभीर बताई जाती है। पटना स्थित नियोजन भवन में आज पूर्वाह्न 11 बजे से रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। युवा, रोजगार और कौशल विकास विभाग के तत्वावधान में आयोजित मेले में 12वीं पास 18 से 40 वर्ष के अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। गया जिले के कोठी थाना क्षेत्र के रानीपुर टेला में बालू माफिया पुलिस पर हमला कर 2 जब्त ट्रैक्टर छुड़ाकर भाग गए। इस मामले में पुलिस ने 12 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है। इन सभी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। कटिहार जिले के बलरामपुर थाना क्षेत्र के फरसरा गांव में पुलिस ने छापेमारी कर एक महिला समेत 2 तस्करों को मादक पदार्थ स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। IPL क्रिकेट में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। मैच जयपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं कल खेले गए मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्ले ऑफ में जगह बना ली है। गुजरात टाइटंस भी अंतिम 4 में पहुंच गई है, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पहले ही प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। सीतामढ़ी के जानकी स्टेडियम में खेले जा रहे श्यामल सिन्हा अंडर 16 एक दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट में गया ने बेगूसराय को 65 रनों से पराजित कर फाइनल में जगह बना ली है। बिहार फुटबॉल एसोसिएशन ने निर्देशों की अवहेलना और संगठनात्मक नियमों के उल्लंघन के आरोप में पश्चिम चंपारण, सीवान, अररिया, गया, बेगूसराय, वैशाली, सहरसा, सुपौल और नालंदा जिला फुटबॉल संघों के सचिवों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश को प्रमुखता देते हुए लिखा है, निर्माण कार्यों के प्राक्कलन की AI से जांच अनिवार्य। दैनिक जागरण ने लिखा है, पटना और सिवान में अपराधियों से मुठभेड़, दोनों के पैर में लगी गोली। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, सम्राट बोले 20 दिन में 2 नोटिस, 30 दिन में काम नहीं हुआ तो सस्पेंड। प्रभात खबर ने राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल के हवाले से लिखा है, बिहार में 3 और सैटेलाइट टाउनशिप बनेगी। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, सहयोग शिविर आज, पंचायत में सुनी जाएगी फरियाद। आज अखबार लिखता है, अब स्कूलों में रोज होगी बच्चों के बैग की जांच, बच्चे का स्कूल बैग उसके शरीर के वजन से 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आम लोगों की समस्याओं के त्वरित निपटारे के लिए आज प्रदेश की सभी पंचायतों में हो रहा है सहयोग शिविर का आयोजन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सारण जिले की डुमरी बुजुर्ग पंचायत से करेंगे शिविर की शुरुआत। प्रदेश में राशन कार्डधारी परिवारों की जांच में संदिग्ध पाए गए 35,15,000 से अधिक परिवारों के नाम सूची से काटे जाएंगे। खगड़िया जिले के मानसी थाना क्षेत्र में एनएच 31 पर सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत, 6 अन्य घायल। और प्रदेश के विभिन्न भागों में तापमान 40 डिग्री के पार। मौसम विभाग ने आज रोहतास, कैमूर तथा बक्सर जिले में लू की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजी 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
3: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
5: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
6: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042403 6200042403। सुनिए,
7: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
6: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
7: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
6: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
8: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
9: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
8: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
9: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
8: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
9: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
10: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
8: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
11: Now pick it up. Hello. Now pick your phone up. Hello. Pick it up. Hello. Now pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी रेडियो दोस्त आरजे सोनी और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस के कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप शो से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश को।
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
2: जी मैम, सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मायर MP से।
1: जी जी, क्या हाल चाल है सुनील जी?
2: बस ठीक है मैम, बस बैठे थे मैम शो का इंतजार करते हुए मैम, तो टाइम हो गया तो हम सोचे चलो अभी फोन लगाते हैं, फोन भी लग गया मैम।
1: चलिए बढ़िया है। गाना कौन सा सुन रहा है आपको?
2: जी हमको सुनवा दीजिएगा फिल्म जीत से भगवान ने क्या बोले, तू धरती में जाए जहाँ पी रहे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। और सुनवाएंगे किसने रेडियो रिमझिम, दोस्त लोग सुनते सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं।
1: ओके, तो प्ले करेगा ना?
2: ओके मैम।
1: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सो मैं कॉल किया।

0: हाँ अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीम 90.4 FM में।
0: मैं मोहम्मद यूसुफ सिपाही डाला अपना मेडिकल हॉल से बोल रहा हूँ।
1: जी कैसे हैं?
0: बहुत बढ़िया है, अभी फोन लगाए थे तो कट गया, नेटवर्क नहीं था।
1: जी जी बारिश हो रही है ना शायद इसकी वजह से नेटवर्क सही नहीं है।
0: यहाँ पर भी सिपाही डाला में बहुत जोरों से बारिश हो रही है, 2 घंटा हो गया लगभग।
1: हाँ यहाँ भी वही हाल है।
0: मौसम तो बहुत खराब है, अब क्या कीजिएगा,
1: क्या करेंगे, काम तो करना ही है।
0: ये है कि गेहूं वेहूं का दौरी हो गया।
1: हाँ हाँ हो गया, लेकिन बारिश हो गया तो खेत के लिए भी सही है। हाल हो जाएगा।
0: हाल हो जाएगा, बिचड़ा वगैरह गिरेगा गेहूं का, धान का।
1: हाँ जिसको गिराना होगा वो गिरा देगा, सही रहेगा उसके लिए।
0: तब हम यही कहेंगे कि आप हमको इसी बरसात में गाना सुनवा दीजिए।
1: जी बता दीजिए नाम।
0: ये कह रहे हैं कि बेमौसम बरसात हुई, अभी बरसात का मौसम नहीं है।
1: जी जी
0: बेमौसम बरसात हुई है, कुछ तो ऐसी बात हुई है, अपना सब हम भूल गए जब से सोनी जी से बात हुई है। हाँ तो जारे सारी बदरिया, यही
1: आवाज कट गया, एक बार और बताइए।
0: जारे जारे वो कारी बदरिया।
1: जी
0: इसी गाने को सुनवाइएगा
1: और डेडिकेट भी करिएगा।
0: हाँ अपना मेडिकल हॉल के सभी स्टाफ और खास कर कन्हैया जी जो फौजी से रिटायर किए हैं उनको सुनवाइए।
1: चलिए तो प्ले कर रहे हैं गाना आपकी।
0: हाँ ठीक
1: ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सोना कॉल के जी।

0: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
1: कहाँ पर?
0: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल छवही खास गोपालगंज,
1: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
0: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
1: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
0: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता छवही खास NH 27 गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835569650।
1: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
2: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
3: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
1: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
3: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
1: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
3: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
3: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
1: कॉल करे 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करे www.shalyamhospital.com।
4: ठक ठक।
5: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
7: जी हाँ कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
7: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
8: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
1: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
8: तो देर मत कीजिए,
1: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
9: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
10: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
9: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का आधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
10: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
11: Now pick it up, pick it up.
12: Hello.
11: Now pick your phone up.
12: Hello.
11: Pick it up, pick it up.
12: Hello.
11: Now pick your phone up.

0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: हेलो
2: जी, बात है आपका रेडियो रिमझिम नंबर 4 है।
1: सोनी मैम प्रणाम।
2: जी प्रणाम,
1: क्या हाल रहा है?
2: बिल्कुल बढ़िया, रहो बताए कैसा बानी?
1: ठीक बानी। आज क्या बात, कभी स्विच ऑफ, कभी नेटवर्क या कभी चालू, क्या हो रहा है?
2: पता ना, बारिश होता तो शायद नेटवर्क इशू हुई।
1: कभी बंद बता रहा है, कभी नेटवर्क
2: ना। रिकॉर्डिंग तो शुरू ही हुआ है 11:05 में बारिश की वजह से, लेकिन उसके बाद अगर बंद चालू बता रहे तो मतलब नेटवर्क इशू होगा।
1: तो ये बारिश हो क्या अभी भी?
2: काफी भयानक वाला।
1: अच्छा, सब सुनाई कैसे?
2: सब बढ़िया। धनेश से बात करते
1: हैं। हाँ हाँ हाँ, आज कौन है आज भोजपुरी में बात करेगा बात?
2: चलिए बढ़िया बात।
1: लौड़ो भोजपुरी में कमेंट करने बड़ा बढ़िया लगे ला।
2: अच्छा,
1: अभी हमने तो मजबूरी बना कि हिंदी आदमी बोले ला ना, तो भोजपुरी अच्छा, इतना अच्छा कौन शब्द बा?
2: कौन भाषा नहीं है भोजपुरी नहीं
1: है, लेकिन मजबूरी बाकी आदमी हिंदी आदत पड़ गई है, भोजपुरी बतिया पड़ रहा था हिंदी में आ जाने को।
2: हाँ, सामने वाला जब हिंदी बोली तब बोले के पड़ जा। आज ड्यूटी में बने की रूम पे?
1: आज ड्यूटी में बनी, हमने तो सोमवार का छुट्टी रहा।
2: अच्छा, आज कौन गाना सुने को बता दी?
1: आज काजल सहनी का सुना दी।
2: अच्छा, काजल सहनी के
1: और ये दाज गहरा मिलल बा प्यार के।
2: अच्छा,
1: ये आज सुना दी।
2: और सुनवाई के भी बात?
1: हाँ, वही रवि भैया भाभी लिखना सुनने वाले सारे को। रवि फोन किया था कि नहीं?
2: ना, अभी तो रवि फोन ना के ले रही है।
1: कहाँ गए भेजो ना?
2: अच्छा, तो ये बात तो ना पता, बाकी गाँव आवे के बाद अभी बात ना भेजो।
1: चलिए, फिर ढेर बात हो गई।
2: जी जी, चलिए ठीक बा, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हें कॉल करने।
3: क्यों

0: शादी की ज्वेलरी लेनी है। हाँ,
1: भरोसे वाले से लेंगे,
0: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
1: और कीमत भी।
0: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
3: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
4: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
5: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करे 85070-32042 पे।
6: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के कहे चलता नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
7: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
6: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बानी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीर फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करत तानी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053-69015 पे।
8: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। सीबीएसई पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
9: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
8: तो देर मत कीजिए,
9: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
8: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
9: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
8: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
9: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी गोपालगंज,
8: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-7-14-86-164।
9: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड गोपालगंज।
8: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS एक्स रेसिडेंट KGMU लखनऊ,
9: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी,
8: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
9: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
8: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल गोपालगंज।
9: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
10: Now pick it up, hello. Now pick your phone up.

0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: नमस्कार सोनी जी।
2: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: धर्मेंद्र तिवारी बोल रहे हैं
2: जी। कैसे हैं धर्मेंद्र जी?
1: भैया
2: तो क्या हो रहा था अभी?
1: अभी तो घर तो पाए हैं, बारिश हो रही, घर में कुछ काम है वही कर रहे थे।
2: ठीक है, तो गाना कौन सा सुनना है आपको?
1: शादी वाला कोई गाना सुनवा दीजिए।
2: शादी वाला और सुनवाना भी है?
1: रेडियो रिमझिम सोता सुनेंगे सारे आदमी।
2: ओके, चलिए तो प्ले कर रहे हैं गाना आपकी
1: जी। नमस्कार।
2: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर मैं कॉल किया।

0: हेलो,
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से।
0: जी, कुमारी गोपालगंज से।
1: जी, कैसे हैं खुशी जी?
0: अच्छे हैं, अपना बताइए।
1: मैं भी बढ़िया हूँ। क्या हो रहा था अभी?
0: अभी कुछ नहीं, बारिश हो रहा है, बैठे हैं।
1: तो गाना कौन सा सुनना है खुशी जी आपको?
0: गाना बज सकता है।
1: कौन सा गाना?
0: भोजपुरी गाना बज सकता है
1: जी। बिल्कुल बज सकता है भोजपुरी गाना। अच्छा, प्यार के बुखार उतारे लगी हो, ये वाला गाना ना?
0: हाँ, यही।
1: अच्छा, और सुनाना भी है?
0: हाँ, जी कुमारी, शिवम कुमार, सलोनी कुमारी को और आपको, जितने रेडियो सुने सबको।
1: ओके, चलिए तो प्ले करे गाना आपकी।
0: हाँ, कर दीजिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय कॉल के।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 9097160002।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
3: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: घर पर बैठे बेरोजगार युवाओं के लिए अब इंतजार नहीं, एक सुनहरा मौका आपका इंतजार कर रहा है।
3: छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोपालगंज लाया है आपके लिए शानदार करियर बनाने का अवसर।
6: अगर आप 10+2 डिप्लोमा या ग्रेजुएट पास है तो बनिए एक प्रोफेशनल सेफ्टी ऑफिसर और पाए अपने भविष्य को एक नई दिशा।
3: यहां उपलब्ध है 1 साल का सेफ्टी डिप्लोमा ADIS, नेबोश और IOSH, PG डिप्लोमा इन एनवायरमेंट जैसे प्रोफेशनल कोर्स
6: और सबसे खास बात 100% जॉब गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
3: मोबाइल नंबर 8511168095 और बात करें अमरेंद्र सर से।
6: पता छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बंजारी रोड, HP पेट्रोल पंप के सामने, गोपालगंज।
7: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029294911। जी हाँ, 8029294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
8: हेलो
9: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
8: हाँ सर जी, हमारा संगठन होता का
9: जी जी का होता थे बताएं।
8: फोन था के कट गया है, नेटवर्क
9: ना जी सबके संग होता है, शायद बारिश के मौसम बनो, बारिश काफी तेज आवत है तो मैं नेटवर्क था फंसा था।
8: हम जन के हमारे संग होता है
9: आज काफी भयानक वाला बारिश होता है, आज 2 घंटा हो गए अभी बारिश होता।
8: हम नहीं कहता अभी नीचे
9: ना, यहाँ तो होता बारिश खुल रहा था महीने आज, इसे अंदर पैर रखने फिर बारिश शुरू हो गए। बात करता नहीं
8: ना। हाँ जी हाँ जी
9: जी तब बताए जी
8: तब बढ़िया। हमने कहा 29 तारीख के खूब भयंकर बारिश भइल है, नहीं पानी हुई तरी
9: वो दिन तेज भइ रहे, शाम के बारिश भइ रहे।
8: हाँ शाम के पूरा टेंट समझ अपना लोग के लगा रहे दिया गई
9: सब लेके चल गए।
8: हमने के पूरी खाई बैठल है यार, मतलब शाम के ही अभी मतलब 2-4 कवर तक खाई नहीं रखा तब तक पतल उतल में दिया
9: बोला कि ना खाए दे आज।
8: हाँ ना खाए के मिले
9: अब सब उदिया ले गए तो कैसे आदमी खाए।
8: हाँ पूरा टेंट समझाना में पानी लागे रहे, एक फीट तक पानी लागे रहे तो मैं अभी कहाँ बैठे कहाँ खाई है
9: ना खा पाई। सही बात बा।
8: हाँ खाना में कुछ देख जो ड्रम सोल में पानी देखते देखती जो रहे में पानी भर गए
9: वही बात बाटे खाना भी बर्बाद हो गए। तो बता दी गाना कौन सुने के बा।
8: अच्छा सुने के चाहत रहने पवन सिंह के सनहिया लगावल बहुत बात नहीं है
9: और सुनवाए के भी बा।
8: हाँ सुनवाए के पूरा रेडियो काल फैमिली बा रहुआ बानी हम बानी अरे घर तो बलिराम जी संगे तनी छटक गई बड़न पटक गई बड़न जानते बनी उनका घरेलू मैटर बनी।
9: अच्छा अच्छा क्या वहाँ के श्रीमती जी ने की आवेदन का।
8: श्रीमती जी कहते थे कि 24 घंटा में 23 घंटा तू उनके संग रहो तो हमारा संगे कहो रहो
9: ना तो 24 घंटा में 23 घंटा ना तो रखी।
8: हाँ तो अब बड़न की बार बार हमारे कहे चले जाए बोलन
9: तब तक लड़ाई होके के बाद बटे।
8: हाँ वही से लड़ाई हो जाता है बुधे के दिन समझा खदला बने की तू हमारा संग भाई मत रहा
9: चली बढ़िया के ले बनी ऐसा बात बात।
8: हाँ कहते बनी कि हमारा संग रहो हम अपन जहाँ बनी चाहे ठीक बनी हमारा से जब जरूरत पड़े तब हमारा से मिल ली है
9: जब काम पड़े तब मिल ली है ठीक
8: बा। हाँ काम पड़े तब मिल ली है काम पड़े तब मिलने के बिना मतलब कि हमारा संग रहो भी ठीक नहीं है
9: बिल्कुल।
8: हाँ उनको मेरा भी कहना नहीं है।
9: चलिए ठीक बा बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हें कॉल करने।
10: काहे आखिर काहे काहे रोवलू जब हंसावे के ना रहे काहे गुनगुनौलू जब गावे के ना रहे आज आंसू पोछतनी एगो प्रश्न बन के काहे कैलू मोहब्बत जब निभावे के ना रहे।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए

0: ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97070065।
2: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
3: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
4: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
5: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042434, 6200042434।
6: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
7: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
6: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
7: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
6: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
0: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 PM तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
8: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
9: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
1: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
10: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
0: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
1: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
9: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
1: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
0: कॉल करे 87894-18744।
11: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
12: हेलो मैडम, नमस्कार।
13: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
12: जी मैं मन्नान बोल रहा हूँ कपूरपुर से।
13: जी कैसे हैं मन्नान जी?
12: बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, आज टाइम मिल गया है फोन करने के लिए। नाश्ता पानी हो गया?
13: जी जी बिल्कुल हो गया है।
12: हो गया कि हो रहा?
13: नहीं नहीं हो गया है
12: ना, हमको तो लगता है कि हो रहा है।
13: ना ना आज तो सुबह में ही हो गया है।
12: दो गाना सुना दीजिए मैडम आज
13: जी।
12: बन के दुल्हनी मैं चली तेरे द्वार
13: जी।
12: तो गाना हमको वही सुनना था
13: और सुनवाना भी है।
12: और सुनवाना है क्या है, वही जो आसाम वाले लोग आए हैं तो उन लोग को सुनाना है। जैसे बेनजीर नाम है, बाबुल नाम है, आलिया नाम है
13: जी।
12: इन लोगों को सुनवाना है और आपको सुनवाना है। बाकी रेडियो में जितने दिल्लियों के साथ प्रेमी है लोग वो लोग सुनेंगे।
13: ये तो प्ले करे गाना
12: बिल्कुल शौक से प्ले कीजिए, हम जरा सुने आपका प्ले किए हुए गाना
13: जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो माय चॉइस में कॉल किया।

0: गुड मॉर्निंग मैम।
1: गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगटोन 104 FM में।
0: थैंक यू मैम, आपको भी बरसात मुबारक।
1: जी जी, बरसात आपके उधर भी हो रही है क्या?
0: बहुत अधिक, आज तो रेनकोट पहन के आए हैं काम पे।
1: अच्छा,
0: टाइम पे ही आ गए थे, बारिश हो रहा था।
1: जब रेनकोट पहन के आना है तो आदमी टाइम।
0: और आज हमें एक भजन सुनना है।
1: जी बिल्कुल, बताइए कौन सा भजन सुनना है।
0: संजय मित्तल का गाया हुआ है, प्रेम तुमसे किया तो गलत क्या किया, जिंदगी अब तेरे नाम है सांवरे।
1: जी, और सुनाना भी है।
0: हाँ, सारे लिसनर्स लोग को। और जमाना बहुत खराब चल रहा है, लग रहा है कि अब भगवत भक्ति ही आदमी का मतलब अंतिम सहारा है,
1: तो यही होगा।
0: वही चीज लगातार अखबार में वही चीज सुनने देखने को पढ़ने को मिल रहा है, सोशल मीडिया पे भी वही चीज आ रहा है ज्यादातर।
1: वही चीज है एक। ठीक है फिर।
0: ठीक है
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनने कॉल।
0: थैंक यू मैम।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
0: यार कुछ ऐसा खाने का मन है जो दिल भी खुश कर दे और स्वाद भी याद रह जाए,
1: तो चलो ना मोती महल रेस्टोरेंट।
0: अब स्वाद का असली ठिकाना मोती महल रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा लाजवाब नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, लजीज तंदूरी स्पेशल, चिकन, मटन, दमदार बिरयानी, साथ ही साउथ इंडियन डिशेस, कॉन्टिनेंटल डिशेस, पिज्जा, बर्गर, चाट, गोलगप्पे और कई शानदार वेज आइटम।
1: फैमिली डिनर, बर्थडे पार्टी, दोस्तों की गैदरिंग या वीकेंड आउटिंग, हर मौके के लिए शानदार माहौल।
0: तो देर किस बात की, तो आज ही आइए मोती महल रेस्टोरेंट, सरस्वती टॉकीज मल्टीप्लेक्स कैंपस, यादवपुर रोड, गोपालगंज,
1: जहां हर निवाला कहे वाह।
2: Now pick it up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up.

0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: हेलो,
2: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिम 90.4 FM में।
1: नमस्कार मैडम।
2: नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
1: नाम मनोज कुमार
2: जी,
1: हम मुंगेर जिला से बोल रहे हैं।
2: कैसे हैं?
1: ठीक है।
2: तो क्या हो रहा था?
1: क्या हो रहा था, बगीचा में बैठे हैं, रखवाली करते हैं। अपने क्षेत्र का कुछ जानकारी हम आपसे साझा कर सकते हैं?
2: जी बिल्कुल कर सकते हैं।
1: देखिए, हमारे गांव के बगल में एक घोड़ाखुर पहाड़ है, जिसका पौराणिक गाथा है कि जब दशरथ जी घोड़ा छोड़े थे तो वो घोड़ा जो था वही पहाड़ पे आके रुका था, तो उसका पदचिन्ह अभी तक यहाँ है।
2: अच्छा अच्छा,
1: इसी के नाम पे इस पहाड़ का नाम घोड़ाखुर रखा गया है। और वहाँ पर एक भोले बाबा का मंदिर है, वहाँ का मनोकामना सिद्ध होता है, जो भी कोई वहाँ जाके मांगते है ना, का मनोकामना सिद्ध होता है उस मंदिर में। बगल में झील है, बहुत सुंदर जी, बहुत अच्छा देखने में लगता है। 1 जनवरी को लोग वहाँ पिकनिक करने भी जाते हैं।
2: ये बढ़िया जानकारी दी है, कभी घूमना हुआ तो फिर आदमी आ सकता है उधर।
1: हाँ आइए, बहुत अच्छा घूमने का जगह है यहाँ पर। पानी इतना अच्छा गिरता है ना ऊपर से झरना, कहते हैं कि अगर किसी को खुजली उजली हो गया है कुंड में नहा लीजिए तो ठीक हो जाएगा।
2: अच्छा,
1: हमारे पहाड़ का यही विशेषता है मैडम।
2: चलिए
1: गाना हमको सुना दीजिए आज
2: जी,
1: दोस्ती का। गुड़िया कब तक रूठी रहोगी?
2: सुनवाना भी है।
1: सुनवाना है आपको, सरिता देवी को और सिंजिन के सारे श्रोतागण को। ठीक है प्रणाम मैडम, गाना सुना दीजिए
2: जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद कॉल किया।

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9520384088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
4: बात आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029294911। जी हाँ, 8029294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो मैम, अस्सलाम वालेकुम।
6: वालेकुम सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
5: थैंक यू
6: जी। नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
5: जी रियाज अंसारी, सिवान।
6: जी जी, क्या हाल चाल है?
5: हाल चाल बढ़िया है, यहाँ तो कंपटीशन हो रहा है कॉल लगाने के लिए।
6: चलिए तो कंपटीशन में आप जीत गए लग रहा है।
5: हाँ, फोन किया।
6: चलिए बढ़िया है, तो बता दीजिए।
5: पहली बार भी किया था तो 75, अभी 76।
6: चलिए बढ़िया है, लग गया ना?
5: हाँ लग गया जी, लग गया। लड़ाई पे जा रहे हैं।
6: चलिए तो आपको उधर भी बारिश हो रही है?
5: नहीं, हमारे और इधर हम बेंगलोर में है ना, अभी फर्स्ट टाइम कॉल किया था आपको, ये सेकंड टाइम है। तो इधर तो दिन में धूप होता है पर हाँ। मसाला रात को बहुत अच्छा मौसम हो जाता है, अब बारिश भी रात को ही होती है। दिन में कमाओ, रात को सो जाओ।
6: बढ़िया है, रात को बारिश होती है तो कोई टेंशन नहीं रहता, अपने घर में सब कुछ रहता है।
5: उधर तो गाँव में तो पूरा आंधी तूफान, क्या क्या किसी का सामने आना, टेंट सब उड़ जाए।
6: आज तो बहुत सारा इधर लगन है और देख रहे हैं कि सुबह 10 बजे से बारिश इतनी कंटिन्यू हो रही है।
5: हम भी मिस कर रहे हैं यार बहुत अपने गाँव की।
6: चलिए तो गाना कौन सा सुनना है?
5: गाना हमें सुनना है वो मेरे आने पे खिल जाना तेरा, और मेरे जाने पे रुक जाना तेरा याद है ना।
6: जी, और डेडिकेट भी करिएगा।
5: हाँ करेंगे, आकाश, सैनुल्ला, मुस्कान और शहजादी।
6: चलिए तो प्ले करे गाना आपकी।
5: और एक बात मैम, कुछ बोल सकते हैं शहरी वगैरह? क्योंकि
6: बिल्कुल कुछ भी बोल सकते हैं जिससे सुन के किसी को आपत्ति नहीं हो, किसी को
5: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं,
6: मतलब
5: कोई...
6: मैं आपको बोल रही हूँ किसी को दुख ना हो, बाकी आप सब कुछ बोल सकते हैं। और गाने में भी कोई ये नहीं है, गाना बस जातिवाद नहीं होना चाहिए, धार्मिक गाना नहीं होना चाहिए, बस
5: वो सबसे दूर रहते हम, लड़ाई झगड़ा से क्या मतलब। तो हम यही कहना चाहते कि हमारे हेड सॉन्ग के साथ में एबी बज जाए, मांगा था खुशी आशियाने की, चल पड़ी आधिया जमाने की। मांगा था खुशी आशियाने की, चल पड़ी आधिया जमाने की, मेरा दर्द कोई समझ ना सका, क्योंकि हम याद रहते हमेशा मुस्कुराने।
6: जी जी,
5: बस इतना ही, थैंक यू।
6: वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चॉइस में कॉल।
5: थैंक यू मैम,
6: वेलकम।

0: दोस्तों, आप लोग अभी कार्यक्रम हेलो माय चॉइस को मेरे साथ यानी आरजे सोनी के साथ सुन रहे थे। अब समय हो चुका है इस कार्यक्रम से विदा लेने का, तो मुझे दीजिए अब जाने की इजाजत और ऐसे ही सुनते रहिए रेडियो रिंजन 90.4 FM। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, नमस्कार।
1: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
2: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
3: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
4: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
5: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
4: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
5: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
6: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
5: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
6: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
5: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
6: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
3: भरोसे वाले से लेंगे,
2: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
3: और कीमत भी।
2: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
4: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
6: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
7: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
6: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
1: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड, गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
6: कॉल करें 85070-32042 पे।

0: कब भौजी? आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करे 9006978856 या 6203139564।

0: आज ही मिले सिवान के सुपर सीट डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69 015 पे।
1: अरे, स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
2: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
3: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
2: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
3: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
3: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।

0: रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
5: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
4: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
2: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
7: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
8: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
7: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
8: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
7: या अभी कॉल कीजिए 92-899-22567 या 97-714-86-164।
9: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
10: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
9: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
7: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
9: संपर्क 99-393-65-930।
7: घर पर बैठे बेरोजगार युवाओं के लिए अब इंतजार नहीं, एक सुनहरा मौका आपका इंतजार कर रहा है।
8: छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोपालगंज लाया है आपके लिए शानदार करियर बनाने का अवसर।
7: अगर आप 10+2 डिप्लोमा या ग्रेजुएट पास है, तो बनिए एक प्रोफेशनल सेफ्टी ऑफिसर और पाए अपने भविष्य को एक नई दिशा।
8: यहां उपलब्ध है 1 साल का सेफ्टी डिप्लोमा ADIS, NEBOSH और IOSH, PG डिप्लोमा इन एनवायरमेंट जैसे प्रोफेशनल कोर्स,
7: और सबसे खास बात 100% जॉब गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
8: मोबाइल नंबर 8511168095 और बात करें अमरेंद्र सर से।
7: पता छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बंजारी रोड, HP पेट्रोल पंप के सामने, गोपालगंज।
11: Excuse me boss, you have a text message.

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आपसे के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू SMS फरमाइश के साथ रेडियो रेम 96.4 FM पे समय 9:23 हो रहे हमारे स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। टेक्स्ट मैसेज के लिए नंबर है 7276 1665। और ध्यान रखना है कि जब भी गाने के फरमाइश करना है तो थोड़ा पुराने गाने के फरमाइश करने की कोशिश करना है ताकि आपकी फरमाइश हम सुना सके और आप सुन पाए। ऐसा ना हो कि आप नए गाने के चक्कर में पुराने जो गाने हैं वो आप ना फरमाएं और हम आपकी फरमाइश पूरी ना कर पाएं। तो आप डायरेक्ट पुराने गाने का फरमाइश करें, हम बिल्कुल आपकी फरमाइश पूरा करेंगे। और यहाँ पे अभी हमारे पास कोई मैसेज रिसीव नहीं हुई है तो एक प्यारा सा सॉन्ग अपने तरफ से प्ले करते हैं और इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं और सुनते हैं, इंजॉय करते हैं।

रेडियो चिमनी 94.4 FM सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश, और इस समय जो है आगे बढ़ रहे हैं, और यहाँ पे अभी कोई मैसेज हमारे पास नहीं पहुँची है, और हमें लग रहा है कि थोड़ी डिवाइस में प्रॉब्लम है जिसके कारण मैसेज हमारे पास रिसीव नहीं हो रही है। तो एक और प्यारे से गाने को हम प्ले करते हैं और सुनते हैं फिलहाल। और जो भी श्रोतागण इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं अपने मैसेज को सेंड करें, और जैसे हमारे पास मैसेज रिसीव होगा वैसे आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। फिलहाल अगले गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं।

काफी प्यारा सॉन्ग सुन रहे हैं हम सभी रेडियो रामछेम 94.4 FM पे और आप सब भी बने हुए हमारे साथ। और यहाँ पे आगे मैसेज हमारे पास रिसीव हो चुके हैं और कई श्रोतागण की मैसेज पहुँची है। और पहला मैसेज हमारे पास पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो जी नमस्ते, सॉन्ग तेरे नैना बड़ा कातिल मार ही डालेंगे। और इस मैसेज को करती हैं निशा शुक्लवा से। और चलिए आपके गाने के साथ इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, कैसे हैं सर, सॉन्ग कसम खा के कहो, दिल लगा के कहो, बस आके कहो, कहो ना कहो कि तुमको मुझसे प्यार है। डेडिकेट सभी को श्रेया फ्रॉम अहमा मौजम से। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। गाने का फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है। आगे मैसेज, क्या हाल है भैया जी, मुझे सॉन्ग सुनना है, शुक्रिया शुक्रिया दर्द जो तुमने दिया। ओ बिल्कुल सुनाएंगे आपकी फेवरेट सॉन्ग। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है गाने और मैसेज करते हैं विपुल सिंह, गाने के फरमाइश करते हैं आने से उसके आए बाहर। बिल्कुल पूरा करने की कोशिश रहेगा। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हाय हेलो सर नमस्ते, आप कैसे हैं, अनुजा कुमारी मैठी काला से। तो बिल्कुल बढ़िया, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। अपना बताएं और सारे दोस्तों को बोल देना मेरे तरफ से नमस्ते। बिल्कुल आपकी फुल मैसेज हमने शामिल कर दिए। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय सर समीर आलम जंगलिया से। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज, सुन भाई राम राम भोला शाखे मठनिया से, और कहते हैं कि मुझे गाना सुनना है। बिल्कुल सुनाने की कोशिश रहेगा, फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ। और फिलहाल आगे बढ़ते हुए अगली श्रोतागढ़ की फरमाइश को साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं। यहाँ पे एक कॉल आ रहा है, अंत में 184 है, तो आप श्रोतागढ़ कॉल ना करें और मैसेज करें जिस नंबर पे आप कॉल कर रहे हैं। यदि मैसेज करते हैं तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे और कॉल के माध्यम से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप थोड़ा सा समझे और मैसेज अभी सेंड करें हमारे नंबर 72 77 16 65 96 पे। फिलहाल गाने को प्ले करते हैं।

94 FM सुन रहे हैं आप सब और कार्यक्रम चल रहा है इसमें फरमाइश का। और यहाँ पे आगे कई श्रोतागण की मैसेज भी पहुँची है मेरे पास और आगे श्रोतागण की फरमाइश भी पहुँची है। और अगला मैसेज लिखा गया है कि थैंक्स, आपको धन्यवाद रेडियो एमसीएम सुनने के लिए। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, मैं सचिन जायसवाल। तो बिल्कुल सचिन जी, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और कहते हैं कि राधे राधे सर, मैं इस शो में पहली बार जुड़ा हूँ और बिल्कुल आपका स्वागत है। और गाने की फरमाइशें तो पूरा करने की कोशिश रहेगा। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया कि हेलो हाय नमस्ते, कैसे हैं आप, और मुझे सॉन्ग सुनना है तो बिल्कुल सुनाने की कोशिश रहेगा। फिलहाल इस मिसेज को करती हैं सोनी सरयावर, नंबर 1 गोपालगंज से। आगे मिसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि सुपर सॉन्ग बज रहा है सरिया फ्रॉम अम्मा मजम से। और आगे मिसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि प्लीज़ मेरा गाना सुना दीजिए। बिल्कुल लेके करके तो ही गाने की फरमाइश हम पूरी करेंगे। अभी तो एक ही गाने हम सभी श्रोतागण की फरमाइश से सुने हैं, अभी कई सुनने हैं तो आगे बढ़ते हैं और अगले गाने की फरमाइश सीरिया की प्ले करते हैं और सुनते हैं इनके पसंद के गाने हम सभी रेडियो रिमझिम 94 FM पे। कसम खा के कहो, कहो ना कहो कि तुमको मुझसे प्यार है।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 9097160602।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलता नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
6: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
5: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू, अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीर फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करत नी, तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा। आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
7: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड, यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053969015 पे।
8: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
9: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
4: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
3: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
4: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
3: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
4: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
4: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
3: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
10: यार कुछ ऐसा खाने का मन है जो दिल भी खुश कर दे और स्वाद भी याद रह जाए,
11: तो चलो ना मोती महल रेस्टोरेंट।
4: अब स्वाद का असली ठिकाना मोती महल रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा लाजवाब नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, लजीज तंदूरी स्पेशल, चिकन, मटन, दमदार बिरयानी, साथ ही साउथ इंडियन डिशेस, कॉन्टिनेंटल डिशेस, पिज्जा, बर्गर, चाट, गोलगप्पे और कई शानदार वेज आइटम।
11: फैमिली डिनर, बर्थडे पार्टी, दोस्तों की गैदरिंग या वीकेंड आउटिंग, हर मौके के लिए शानदार माहौल,
4: तो देर किस बात की, तो आज ही आइए मोती महल रेस्टोरेंट, सरस्वती टॉकीज मल्टीप्लेक्स कैंपस, यादवपुर रोड, गोपालगंज,
11: जहां हर निवाला कहे वाह।
12: खुला एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
13: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
12: आज ही संपर्क करें 7388 9470 या 9198 8668 6973।

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रिमझिम 94.4 FM पे सोशल लाइफ में फरमाइश का। और यहाँ पे आगे कई श्रोतागण की फरमाइश वाला मैसेज पहुँचा हुआ है और आगे मैसेज और अगली गाने की फरमाइश दीपक एंड जेलर जी की प्ले होगी और इन्होंने गाने की फरमाइश करते हैं शुक्रिया शुक्रिया दर्द जो तुमने दिया। और आगे कुछ मैसेज पहुँचे हुए तो मैसेज देखते हैं फिर गाने को प्ले करते हैं। आगे मैसेज में लिखा गया है कि हाय सुनो भैया, मेरा नाम है आस्था पटेल और मुझे गाना सुनना है। बिल्कुल सुनाएंगे, फिलहाल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज करती हैं श्रोनी और लिखती हैं वेरी वेरी नाइस सॉन्ग, मेरा सॉन्ग सुना दीजिए प्लीज़। बिल्कुल आपकी भी सॉन्ग सुनाएंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि थैंक यू सॉन्ग सुनाने के लिए, आपको धन्यवाद है रेडियो रिमझिम सुनने के लिए। और आगे बढ़ते हैं, अब अगली फरमाइश प्ले करते हैं और सुनते हैं दीपक एंड जेलर जी की।

94 FM पे इस गाने को सुन रहे थे। दीपक खंड जेलर जी की फरमाइश पे शुक्रिया शुक्रिया दर्द जो तुमने दिया। और आगे कई मैसेज, अगला मैसेज पहुंचा हुआ है और अगले गाने के फरमाइश हम प्ले करेंगे। और इस गाने के फरमाइश करते हैं विपुल सिंह गोपालगंज से, और गाने का बोल देते हैं आने से उसके आए बाहर। तो इनके गाने हम प्ले करेंगे। आगे कुछ और भी सुरतागढ़ की मैसेज पहुंचा हुआ है। आगे मैसेज करते हैं दीपक एंड जेलर जी, थैंक्स भैया जी, आपको धन्यवाद है रेडियो रिमझिम सुनने के लिए और गाने की फरमाइश करने के लिए। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है वेरी नाइस सॉन्ग, मेरा सॉन्ग सुना दीजिए प्लीज़, बिल्कुल सुनाएंगे। और आगे मैसेज, हाय सुनो भैया, मेरा नाम आस्था पटेल। तो बिल्कुल आपकी भी मैसेज हमारे पास पहुंची है और एक एक करके सबकी फरमाइश पूरा करने की कोशिश है। फिलहाल गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं विपुल सिंह की फरमाइश रेडियो रिमझिम 94 FM पे कार्यक्रम SMS फरमाइश में।

काफ़ी प्यारा संग रेडियो रमझिम 9.4 FM पे सुन रहे थे अभी हम सभी रफ़ी जी की आवाज़ में, और ओल्ड इज गोल्ड सॉन्ग रहा। आगे कई मैसेज और आगे गाने की फरमाइश करती हैं सोनी सरेवर नंबर 1 गोपालगंज से, और गाने का बोल देती हैं, अब तक तुझको मेरी वफा ना समझ ना आई। तो चलिए आपके भी गाने हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने हम सभी।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनो फेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765655750।
3: सुनिए,
4: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
3: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
4: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
1: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
2: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
2: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
5: ठक ठक।
6: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
7: अच्छा मिला ही नहीं।
6: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
6: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
8: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
3: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
9: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
3: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
6: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊं अपनी दोस्त की शादी में?
7: क्यों, क्या हुआ है?
6: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
7: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
6: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
3: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें, लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड, गोपालगंज में।
10: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
11: टेडरेम झीम 94.4 FM सुनने आप सब, और लाख आग्रह और निवेदन करने के बाद भी कई हमारे श्रोतागण ऐसे ही जो नए गाने की फरमाइश करते हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे से ध्यान रखिएगा, नहीं तो गाने अब रुक के ही रखा जाएगा। गाने की फरमाइश अगली पूरी करेंगे हम भोला शाह जी की, और इनके तरफ से गाने की फरमाइश पहुँचा हुआ है और गाने का बोल देते हैं। मुझे लोग कहते हैं कदमों की धूल, तो इनकी प्यारे गाने हैं।

सभी प्यारा संग्रह रेडियो एमसीएम 94.4 FM पे भोला शाह जी के द्वारा फरमाए गए गाने अभी सुन रहे थे हम सभी। मुझे लोग कहते हैं कदमों के धूल। आगे कई मैसेज और कई श्रोतागण की फरमाइश है और अगले गाने की फरमाइश भी प्यारे पहुंची और इस गाने की फरमाइश आस्था पटेल के द्वारा पहुंचाया गया है और इनके तरफ से गाने की फरमाइश दिया गया है मोहब्बत दिल का सुकून है एतबार। तो चलिए आपके गाने भी हम प्ले करते हैं और सुनते हैं अगली फरमाइश रेडियो एमझिम 94.4 FM पे।

कभी प्यारे गाने सुन रहे थे हम सभी रेडियो एमजीएम 90.4 FM पे शो चल रहा है, इसमें इस फरमाइश का। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि प्लीज़ मेरा सॉन्ग सुना दीजिए। और इस मैसेज को करते हैं अनीश कुमार गोपालगंज से, और गाने के फरमाइश करते हैं हम उनसे मोहब्बत करते हैं कुमार शानू की आवाज़ में। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि बहुत अच्छा सॉन्ग। और इस मैसेज को करते हैं वीरेंद्र गुप्ता भैया के खरिया रक्सोल नेपाल बॉर्डर से। बिल्कुल काफ़ी प्यारे गाने की फरमाइश थी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है कि प्लीज़ मेरा सॉन्ग सुना दीजिए। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है कि हम भी लाइन में लगे हुए हैं, तो बिल्कुल अब तो अंतिम गाने हम प्ले करने जा रहे हैं। और यहाँ पे देखे तो समय समाप्ति से हम आगे निकल चुके हैं, तो आज के लिए बस इतना ही। आप सब सुनते रहें रेडियो 90.4 FM, जो हमेशा कहता है सुनो दिल से। नमस्कार।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 9097160602।
3: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। सीबीएसई पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
4: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
3: तो देर मत कीजिए,
4: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे आईसीयू इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
4: रेडियो रिमझिम,
3: सुनो दिल से।

0: सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
7: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
6: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
8: ऑलराइट।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9056-59536 या 9056-57902।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
5: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज़, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: अचानक के।
1: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
2: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
3: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0976-575।
5: ठक ठक।
6: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
7: अच्छा मिला ही नहीं।
6: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
7: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
6: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
7: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
8: कुल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
9: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
8: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।
10: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
11: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82-101-87-952। नियम और शर्ते लागू।
3: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
4: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
5: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
7: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
3: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
2: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
3: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
2: या अभी कॉल कीजिए 92-899-22567 या 97-714-86-164।

0: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
1: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
2: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
1: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
2: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
2: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
3: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
4: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034648652 पे।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

0: प्रसाद क्लिनिक।
1: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
0: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
1: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
2: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
3: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
2: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
3: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
2: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
4: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
5: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
4: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
5: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
4: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
5: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
6: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
0: और 90971660002।

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, सुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331।

0: घर पर बैठे बेरोजगार युवाओं के लिए अब इंतजार नहीं, एक सुनहरा मौका आपका इंतजार कर रहा है।
1: छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोपालगंज लाया है आपके लिए शानदार करियर बनाने का अवसर।
0: अगर आप 10+2 डिप्लोमा या ग्रेजुएट पास है तो बनिए एक प्रोफेशनल सेफ्टी ऑफिसर और पाए अपने भविष्य को एक नई दिशा।
1: यहाँ उपलब्ध है 1 साल का सेफ्टी डिप्लोमा ADIS, नेबोश और IOSH, PG डिप्लोमा इन एनवायरमेंट जैसे प्रोफेशनल कोर्स,
0: और सबसे खास बात 100% जॉब गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: मोबाइल नंबर 8511168095 और बात करें अमरेंद्र सर से।
0: पता छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बंजारी रोड HP पेट्रोल पंप के सामने, गोपालगंज।
1: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
2: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
1: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
1: संपर्क 99393965930।
3: यार कुछ ऐसा खाने का मन है जो दिल भी खुश कर दे और स्वाद भी याद रह जाए,
1: तो चलो ना मोती महल रेस्टोरेंट।
3: अब स्वाद का असली ठीक है जो दिल भी खुश कर दे और स्वाद भी याद रह जाए,
1: तो चलो ना मोती महल रेस्टोरेंट।
0: अब स्वाद का असली ठिकाना मोती महल रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा लाजवाब नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, लजीज तंदूरी स्पेशल, चिकन, मटन, दमदार बिरयानी, साथ ही साउथ इंडियन डिशेस, कॉन्टिनेंटल डिशेस, पिज्जा, बर्गर, चाट, गोलगप्पे और कई शानदार वेज आइटम।
1: फैमिली डिनर, बर्थडे पार्टी, दोस्तों की गैदरिंग या वीकेंड आउटिंग, हर मौके के लिए शानदार माहौल।
0: तो देर किस बात की, तो आज ही आइए मोती महल रेस्टोरेंट, सरस्वती टॉकीज मल्टीप्लेक्स कैंपस, यादवपुर रोड, गोपालगंज,
1: जहां हर निवाला कहे वाह।
4: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: क्या बोले थे? बुलाती है मगर जाने का नहीं।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता: कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल।

0: गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
4: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
5: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
6: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
7: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
6: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
8: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
9: अरे तो उसे डांटती क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
6: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
2: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
8: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
10: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
6: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
10: सुनो दिल से।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखिए, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
5: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
4: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
5: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
4: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97746164।
2: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
2: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
3: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
4: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
5: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
4: तो देर मत कीजिए,
5: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।

0: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
1: भरोसे वाले से लेंगे,
0: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
1: और कीमत भी।
0: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
3: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
4: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
5: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
6: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
7: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
6: आज ही संपर्क करें 7388894 या 9198886973।
8: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
9: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
10: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
2: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003। 62042434003।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी। अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करे 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करे www.shalyamhospital.com।
1: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज
1: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97714861 64।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहे नू, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होई नू।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करत नी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
5: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
4: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
5: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
4: या अभी कॉल कीजिए 92899225567 या 97714861.
6: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
7: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो

दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण समाचार के बाद।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व के आदेश को वापस लेने से इनकार और मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले तीन दिन के लू का येलो अलर्ट जारी किया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा, सतत विकास और व्यापार जैसे क्षेत्रों में नॉर्डिक देशों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के अलावा डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री भी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने आज ओस्लो में आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्टर्न म्योल फ्रॉस्डॉटर और फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटरी ओर्पो के साथ द्विपक्षीय बैठक की। और जानकारी के लिए बात करते हैं नॉर्वे में मौजूद हमारी संवाददाता संगीता गोडबोले से। संगीता, नॉर्वे के साथ साझेदारी भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है?
1: कनकलता, नॉर्डिक देश अपनी 90% से अधिक बिजली ग्रीन स्रोतों से उत्पन्न करते हैं। भारत का अपना एक महत्वाकांक्षी ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्य है। इसी विषय में नॉर्डिक तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोमास जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने में हो जाएगा। हरित भागीदारी की दिशा में उठाया गया सबसे ठोस कदम कल था। इससे नॉर्वेजियन कंपनियां हरित हाइड्रोजन, नीली अर्थव्यवस्था, चक्रीय अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में नवाचार और निवेश कर सकेंगी। भारत एक डेडिकेटेड पवेलियन के साथ नॉर शिपिंग 2027 में भी भाग लेगा। कल व्यापार शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस हिस्सेदारी को बढ़ाकर 25% करने का विजन साझा किया है।
0: धन्यवाद संगीता। भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे।
2: इस लेख में दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस बात का जिक्र किया है कि इस समय जब संयुक्त राष्ट्र अपनी 80वीं वर्षगांठ मना रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षवाद का महत्व और भी अधिक स्पष्ट हो गया है। दोनों नेताओं ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभु समानता पर आधारित नियमों से संचालित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ने दशकों तक स्थिरता और विकास सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई है। लेख में यह भी बताया गया है कि एक प्रमुख विकास इंजन और ग्लोबल साउथ की जिम्मेदार आवाज के तौर पर निकट भविष्य के लिए भारत के दो महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। पहला 2047 तक विकसित देश का दर्जा हासिल करना और दूसरा 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का ये दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के व्यक्तिगत निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं। और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारी संवाददाता सुपर्णा भाटिया से, जो इस समय रोम में मौजूद हैं। सुपर्णा, प्रधानमंत्री का आज इटली में क्या क्या कार्यक्रम है?
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली पहुंचने वाले हैं, जो उनके 5 देशों के दौरे का अंतिम चरण है। इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। मुझे यहाँ भारतीय प्रवासी समुदाय से बात करने का भी अवसर मिला, जो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित हैं।
0: जानकारी के लिए धन्यवाद सुपर्णा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग से मुलाकात के लिए चीन की यात्रा पर हैं। क्रेमलिन के अनुसार दोनों नेता आर्थिक सहयोग और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित की गई है। ये वार्ताएं ऐसे समय में हो रही हैं जब वैश्विक भू राजनीतिक तनावों के बीच चीन, अमरीका और रूस दोनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है। यूक्रेन संघर्ष को लेकर पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद चीन रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और रूसी तेल तथा गैस का प्रमुख खरीदार बना हुआ है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। एक रिपोर्ट।
4: न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसी कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और राह चलते लोगों पर कुत्तों के हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा है कि यह समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: भारतीय रेलवे ने जम्मू श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा खंड पर 238 करोड़ रुपए की लागत से महत्वपूर्ण ढलान स्थिरीकरण, सुरंग पुनर्निर्माण और पुल संरक्षण कार्यों को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये कार्य देश के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण भूभागों में सुरक्षित और विश्वसनीय संपर्क सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है। रेलवे ने 54 किलोमीटर लंबे क्यूल झाझा तीसरी लाइन प्रोजेक्ट को 962 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री ने कहा है कि यह प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हावड़ा दिल्ली कॉरिडोर पर क्षमता को बढ़ाएगा और रेल सेवाओं की समय की पाबंदी और ऑपरेशन लचीलेपन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को स्मार्ट पावर का एक सटीक उदाहरण बताया है। वे आज राष्ट्रीय राजधानी में सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज में सुरक्षा से समृद्धि, सतत राष्ट्र विकास के लिए स्मार्ट पावर विषय पर आयोजित एक सेमिनार को संबोधित कर रहे थे।
5: ऑपरेशन सिंदूर डिलीवर्ड मिलिट्री प्रिसीजन इन्फॉर्मेशन कंट्रोल।
6: ऑपरेशन सिंदूर ने सटीकता, सूचना नियंत्रण, कूटनीतिक संकेत और आर्थिक संकल्प को सुसंगत राष्ट्रीय कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत किया। इसने दुश्मन पर गहरा प्रहार किया और आतंकी ढांचे को ध्वस्त कर दिया तथा एक लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक धारणा को भी तोड़ दिया। सेना ने फिर इसके बाद सोच समझकर विवेक सम्मत ढंग से अपनी कार्रवाई रोक दी। 88 घंटे चला ऑपरेशन सिंदूर स्मार्ट पावर का सबसे पूर्ण और सटीक उदाहरण था।
5: स्मार्ट पावर इन इट्स मोस्ट कम्प्लीट एक्सप्रेशन।
0: मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ लाल रोजामा ने कहा कि संशोधन प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है क्योंकि अधिकारी सीधे तौर पर मतदाता सूचियों का काम संभालेंगे। उन्होंने अधिकारियों से पूरी ईमानदारी, सटीकता और सतर्कता के साथ काम करने का आग्रह किया ताकि मिजोरम के वास्तविक नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रूपये प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 91.58 रूपये है। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रूपये और डीजल 94.08 रूपये प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 109.70 रूपये और डीजल की 96.07 रूपये दर्ज की गई, जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104.49 रूपये और डीजल की 96.11 रूपये प्रति लीटर है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और हुर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता भुवन चंद्र खंडूरी का आज एक निजी अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। सेना के पूर्व मेजर जनरल रहे श्री खंडूरी ने 2 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री भी रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को एक अपूर्णीय क्षति बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री खंडूरी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार और मराठवाड़ा में भी आज ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अगले 5 दिन तक लू चलेगी। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिन के लिए भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार दिन के समय दिल्ली में कुछ स्थानों पर भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है। एक रिपोर्ट।
7: विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कल मौसम विभाग के रिज क्षेत्र स्टेशन पर 44.6 डिग्री सेल्सियस, सफदरजंग स्टेशन पर 43.4 डिग्री सेल्सियस, लोदी रोड स्टेशन पर 43.8 डिग्री सेल्सियस और पालम स्टेशन पर 43.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: उत्तर प्रदेश में अगले सप्ताह भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में बांदा 47 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ लगातार दूसरे दिन भी देश का सबसे गर्म स्थान रहा।
8: आज भी राज्य भर में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है। बुंदेलखंड और अन्य इलाके तेज धूप और झुलसा देने वाली हवाओं की चपेट में हैं। धीमी हवा के कारण उमस और बढ़ गई है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। वहीं राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग ने 33 जिलों के लिए लू की चेतावनी जारी की है। राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में अगले सप्ताह तक लू के हालात बने रहेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि धरती मां के लिए पूरी मानवता एक परिवार है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संपूर्ण विश्व एक घर की तरह है, जहां हर संस्कृति का अपना महत्व और सम्मान है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। कल रात चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 136 अंक की वृद्धि के साथ 75,451, जबकि निफ्टी 42 अंक बढ़कर 23,692 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व आदेश को वापस लेने से इनकार। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
10: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
11: अरे तो उसे डांटती क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
12: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
13: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
12: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
10: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
14: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9956 या 9956 57902।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
7: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
6: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
7: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
8: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊं अपनी दोस्त की शादी में?
9: क्यों, क्या हुआ है?
8: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
9: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
8: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
5: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।
10: उत्तर बिहार का गौरव,
11: सारण प्रमंडल की शान,
10: गोपालगंज की धड़कन
11: और अपने भाषा की पहचान,
10: रेडियो रिद्म 90.4 FM।
11: सुनो दिल से।

0: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
1: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
0: तो देर मत कीजिए,
1: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
2: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
3: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
4: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
3: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
4: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें, विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
4: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
5: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
6: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
7: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
8: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
9: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
7: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
6: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
7: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करें 87894-18744।
10: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
11: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
10: सुनो दिल से।

0: यार कुछ ऐसा खाने का मन है जो दिल भी खुश कर दे और स्वाद भी याद रह जाए,
1: तो चलो ना मोती महल रेस्टोरेंट।
0: अब स्वाद का असली ठिकाना मोती महल रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा लाजवाब नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, लजीज तंदूरी स्पेशल, चिकन, मटन, दमदार बिरयानी, साथ ही साउथ इंडियन डिशेस, कॉन्टिनेंटल डिशेस, पिज्जा, बर्गर, चाट, गोलगप्पे और कई शानदार वेज आइटम।
1: फैमिली डिनर, बर्थडे पार्टी,

0: मशीनों से,
1: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
1: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।

0: तब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
1: ई सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ई सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
1: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए या। दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
4: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
4: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97714861 64।
5: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
6: रेडियो रिमझिम,
5: सुनो दिल से।
7: का हुआ पुछू बेबी?
8: बेबी
7: वो का कहले बड़ू बताइबू की बीपी बढ़ाइबू?
8: तो बर्दाश्त कर लेबा ना।

0: बॉडी।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
3: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
2: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
3: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 9452111001।
4: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
5: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आंख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
4: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आंख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
6: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903569015 पे।
7: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो

0: तब भौजी आज सुबेरही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर,

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
5: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
4: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
4: संपर्क 99-393-65-930।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
4: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 86034 48652 पे।
5: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
2: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
3: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
2: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
3: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
4: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
3: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
4: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
3: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
4: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।

0: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
2: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042403 6200042403।
4: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
5: भरोसे वाले चलेंगे,
4: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
5: और कीमत भी।
4: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
6: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
7: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
3: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
8: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
3: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
9: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
3: कॉल करें 8570-32042 पे। सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल कहे सुनो दिल से।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
4: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: सुनो दिल से।

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद के ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू? अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीर फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपरसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903369015 पे।

0: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
2: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003।
4: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर कमला राय कॉलेज रोड गोपालगंज।
5: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
4: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
5: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
5: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
6: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
7: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
6: अरे, अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
7: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
8: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
9: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
10: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
11: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
12: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
10: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
9: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
10: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87894 18744।
13: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4।
14: रेडियो रिमझिम
13: सुनो दिल।

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
3: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
2: तो देर मत कीजिए,
3: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
2: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
3: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
2: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए, स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
3: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी गोपालगंज,
2: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9779146164।
4: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
3: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
4: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
3: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
5: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99 399 66 999।
1: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
0: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 तक।
0: पता जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512 11001।
7: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87894 1844।
2: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
4: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
2: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
4: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
2: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97714-86164।
5: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
2: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
4: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
2: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
4: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
4: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
6: उत्तर बिहार का गौरव,
7: सारण प्रमंडल की शान,
6: गोपालगंज की धड़कन
7: और अपने भाषा की पहचान,
6: रेडियो रिद्म 90.4 FM।
7: सुनो दिल से।

0: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
1: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
2: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
1: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
2: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
2: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0975-675।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज, ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
6: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
5: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
7: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता,
5: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड, थावे रोड, भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
7: जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
5: और 90971602।

0: इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहां सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
1: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
2: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
3: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
3: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
4: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
5: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
6: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
7: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
4: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
6: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
8: Now pick it up,
9: hello.
8: Now pick your phone up,
9: hello.
8: Pick it up,
9: hello.
8: Now pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी रेडियो दोस्त आरजे सोनी और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस के कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप शो से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो,
2: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: थैंक यू।
2: जी, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
1: हम तो आपका बोल रहे हैं, गोपालगंज।
2: जी, कैसे हैं?
1: ठीक हो आप? कैसे हैं?
2: हम भी बढ़िया हैं।
1: क्या हो रहा है? बहुत ही सुना, क्योंकि पहली बार मैं जुड़ी हूँ आपके शो से। और मुझे गाना सुनना है।
2: जी बिल्कुल, सुनाएंगे गाना। बता दीजिए नाम गाने का।
1: जी, मुझे लगजा गले जो सॉन्ग है ओल्ड वाला, वो सुनना है। और मैं ये गाना डेडिकेट करना चाहती हूँ अपने भाई को।
2: जी,
1: उसको ये ओल्ड सॉन्ग बहुत पसंद है, उसका फेवरेट सॉन्ग है ये।
2: अच्छा।
1: और जितने भी हमारे हैं रेडियो रिमझिम, सबको सुनाना चाहती हूँ और आपको भी सुनाना चाहती हूँ।
2: ओके, चलिए तो प्ले करे गाना।
1: ओके, थैंक यू,
2: वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सोना कॉल की।

0: हेलो नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: जी मैं मन्नान बोल रहा हूँ कपूरपुरा से।
1: जी क्या हाल चाल है मन्नान जी?
0: बहुत अच्छा है। एक बार फोन लगाया था, ट्राई किया, नहीं लगा, फिर काम करने लगे दूसरा तीसरा।
1: अच्छा,
0: क्योंकि आज जुमा है ना, तो फिर सोचे है कि लास्ट ट्राई कर ले।
1: तो लग गया है?
0: लग गया है, लेकिन क्या 12:30 नहीं 12:23 नहीं 11:23 पे हम फोन किए तो स्विच ऑफ बता रहा था।
1: जी लेट शुरू हुआ है आधा घंटा।
0: हाँ वही है, तो आधा घंटा दिया था, कवर कीजिएगा।
1: जी जी हाँ,
0: तो हमको गाना सुना दीजिए मैडम। दिल विल प्यार प्यार मैं क्या जानू रे, जानू की जानू भी सिंह इतना कर मैं तुझे अपना जानू रे।
1: जी और गाना सुनवाना भी है।
0: पहले आपको और सबाना को, बाबुल को ना, और सारे रेडियो जो सुनने वाले हैं प्रेमी उन लोगों को भी।
1: चलिए तो प्ले कर रहे हैं गाना।
0: हाँ जी
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो मैं कॉल किया।

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: यार कुछ ऐसा खाने का मन है जो दिल भी खुश कर दे और स्वाद भी याद रह जाए,
7: तो चलो ना मोती महल रेस्टोरेंट।
6: अब स्वाद का असली ठिकाना मोती महल रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा लाजवाब नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, लजीज तंदूरी स्पेशल, चिकन, मटन, दमदार बिरयानी, साथ ही साउथ इंडियन डिशेस, कॉन्टिनेंटल डिशेस, पिज्जा, बर्गर, चाट, गोलगप्पे और कई शानदार वेज आइटम।
7: फैमिली डिनर, बर्थडे पार्टी, दोस्तों की गैदरिंग या वीकेंड आउटिंग, हर मौके के लिए शानदार माहौल।
6: तो देर किस बात की, तो आज ही आइए मोती महल रेस्टोरेंट, सरस्वती टॉकीज मल्टीप्लेक्स कैंपस, यादवपुर रोड, गोपालगंज,
7: जहां हर निवाला कहे वाह।
8: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
9: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
10: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
9: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
11: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में।
12: क्यों, क्या हुआ है?
11: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
12: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
11: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
5: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।
13: Now pick it up, pick it up.
14: Hello.
13: Now pick your phone up.
14: Hello.
13: Pick it up, pick it up.
14: Hello.
13: Now pick your phone up.
14: Hello.
15: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो
16: हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो,
15: भागे भागे फिरते हैं।
17: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
18: हेलो
19: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो केसरी 90.2 FM में।
18: जी मैम।
19: जी नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से
18: है। अशफाक आलम बता रही हूँ।
19: जी कैसे हैं अशफाक जी?
18: ठीक है, आप कैसे हैं?
19: हम भी बढ़िया हैं। क्या हो रहा था?
18: खाना खा रहे हैं तो एक भाई की याद पड़ गया।
19: अच्छा खाना खा रहे थे तो एक भाई की याद आया कि कॉल भी करना है।
18: खाइएगा।
19: नहीं मैं खाना खा के आई हूँ, घर में जो बना था वही और क्या।
18: अच्छा आपका घर कहाँ है मैम?
19: मेरा भी घर गोपालगंज ही है।
18: अच्छा गोपालगंज रहती हूँ।
19: जी जी
18: जानना तो सुना दीजिए।
19: जी बिल्कुल सुनवा देंगे, बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको।
18: मैम आज आपका मन है, हम नहीं बताएंगे।
19: नहीं आप कॉल किए हैं तो आप अपना मन बताइए, क्योंकि अभी मैं अपने मन से गाना चला रही हूँ, आप वो सुन लीजिए मेरे मन का गाना। ठीक है
18: तो कौन नाम है? खेसारी का।
19: खेसारी का गाना सुनना है।
18: हाँ।
19: खेसारी का कौन सा गाना सुनना है?
18: नहीं बता सकते, आपका मन जो सुनवा दीजिए।
19: खेसारी का कोई भी गाना सुनवा दें।
18: जी मैम।
19: जी और गाना डेडिकेट भी करिएगा।
18: जी मैम सब कोई का, पहले आपको सब कोई का।
19: जी जी चलिए ठीक है, तो प्ले कर रहे हैं गाना।
18: जी,
19: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी चॉइस में कॉल।
18: थैंक यू मैम।
19: वेलकम।

0: हेलो नमस्ते
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: के लिए दिल से धन्यवाद है सोनी जी को। और तो सुनाइए कैसे हैं?
1: बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: जी मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मैं रामविलास प्रसाद कुशवाहा बोल रहा हूँ, खरीदपुर बलरामपुर के चंपारण से।
1: जी कैसे हैं?
0: बहुत अच्छा हूँ, अपना सुनाइए, घर परिवार में रेडियो रिमझिम पूरा परिवार कैसे आप लोग?
1: सब कोई बढ़िया है, हम लोग भी बढ़िया है।
0: जी जी अच्छा रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, कामना है।
1: हमारी
0: गाना सुना दीजिए, फिल्म का नाम है तुम दिन और गाने का बोला छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती है।
1: और सुनवाना भी है
0: जी। सबसे पहले सोनी जी आपको सुनाना चाहता हूँ और दोस्त में हुए संजय साजी, दीपक कुमार दास जी, रामचंद्र मुखिया जी, मोहम्मद सलार जी, कंसराज जादू जी, अंचल कुमार जी, पारसनाथ कुशवाहा जी, नगीना प्रसाद कुशवाहा जी, धनराम प्रसाद कुशवाहा जी, राजा बाबू विकास, अभय कुमार, सुजीत कुमार, अजय कुमार, आयुष कुमार, विश्वास कुमार, सोनू कुमार, बबली प्रसाद कुशवाहा जी, रविंद्र प्रसाद कुशवाहा जी और गोपाल नदी का संतरा कुशवाहा जी, काजल जी, गुड़िया जी, नेहा जी, मुस्कान जी, गीता जी, सुनीता जी, सुजीत मोहन जी, नवीन सिंह जी, जितेंद्र जख्मी जी, राम कुमार पांडे जी, सुदीश राम जी और अभी सोनी जी की तरफ उसी कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोता बंधु को सुनाना चाहता हूँ।
1: जी चलिए तो प्ले कर रहे हैं गाना आपके।
0: जी धन्यवाद
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो माय चॉइस में कॉल किया।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
4: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
5: मम्मी पापा मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
6: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
7: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
4: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
0: कॉल करे 87 8 94 18 7 44।
8: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
2: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग,
0: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है मिश्रा टायर्स अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
2: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
0: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें, विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग शिव मंदिर पोखरा के सामने NH 27 बंजारी गोपालगंज।
0: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
9: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
10: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
9: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
11: Pick it up.
12: Hello.
11: Now pick your phone up.
12: Hello.
13: The phone ring, they watch the head, don't get the head.
14: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029294911। जी हाँ 8029294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
15: हेलो मैम, नमस्ते।
16: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिम जिम 90.4 FM में।
15: जी मैम, सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मैर MP से।
16: जी कैसे हैं सुनील जी?
15: बस ठीक है मैम, बस बैठे थे फोन ट्राई करते हुए मैम, तो फोन भी लग गया मैम।
16: जी जी
15: जी जी मैम
16: जी, तो गाना कौन सा सुनना है आपको?
15: जी फिल्म नसीबा से अवगाने के बोल है मैम, जाओ तुम जाए जहाँ, यही सुनना चाहते हैं और सुनवाएंगे कितने रेडियो रिम जिम दोस्त लोग सुनते, सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं।
16: जी तो प्ले करेगा ना?
15: ओके मैम, धन्यवाद
16: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय कॉल के।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
0: कहाँ पर?
1: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, छवही खास, गोपालगंज,
0: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
1: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
0: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता छवही खास, NH 27, गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835569650।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल की सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं? अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
0: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
1: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
0: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27, बंजारी, गोपालगंज।
0: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
4: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
5: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
6: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
7: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042403, 6200042403।
8: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के काहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
9: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आंख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
8: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू, अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करतनी, तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा। आंख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
7: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903569015 पे।
10: Now pick your phone up.
11: Hello?
10: Pick it up, pick it up.
11: Hello?
10: Now pick your phone up.

0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: नमस्ते मैम।
2: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: बोल रहा हूँ कि आज बहुत लेट से चालू हुआ सो।
2: जी, लेट से हुआ, परमिशन जब मिला तब चालू हुआ।
1: अच्छा
2: जी,
1: और सब
2: सब बढ़िया है? आप बताइए, आप कैसे हैं?
1: हमारा भी ठीक है। कल तो चालू नहीं हुआ, कल नहीं बजा था क्या?
2: क्या चीज़? नहीं, कल नहीं चला था। जी,
1: और सब बताइए?
2: सब बढ़िया है। आप बताइए, आप रवि बात कर रहे हैं ना?
1: हाँ
2: जी। तो गाना कौन सा सुनना है आज आपको रवि जी?
1: वो बज जाएगा क्या? आज नहले बनी शैम्पू से आवत रही सही सखी टेम्पू से।
2: जी बिल्कुल, बज जाएगा
1: तो वही बजा दीजिएगा।
2: जी, और डेडिकेट भी करिएगा
1: जीजू का और सुनने वाले को।
2: ओके, चलिए तो प्ले कर रहे हैं गाना।
1: ठीक है,
2: ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

0: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीत 90.4 FM में।
0: जी मैं सुधीर को बोल रहा हूँ, कोरिजुंगा जिला देवघर झारखंड से।
1: जी क्या हाल चाल है सुधीर जी?
0: बिल्कुल ठीक है मैम, आप कैसे हैं?
1: मैं भी बढ़िया हूँ। क्या हो रहा था अभी?
0: एक घंटा से पढ़ाई करते करते अब लगे, आज बहुत मेहनत करना पड़ा मैम।
1: तो बता दीजिए गाना कौन सा सुनना आज आपको?
0: आज गाना सुना दीजिए मैम, बड़े मियां छोटे मियां का।
1: जी कौन सा गाना?
0: उदित नारायण और सुधीर भोसले जो गाए हैं, चुटकी नब्बे मोमेंट है, यही गाना सुनना है मैम।
1: और डेडिकेट भी करिएगा।
0: जी मैम, सबसे पहले मैं आपको आपके रेडियो रिंगी के पूरे टीम को, प्रसाद यादव, शशिधर प्रसाद यादव, रोहित कुमार सिंह, मदन कौल, प्रभु कौल, भोलानाथ कौल, केदारनाथ कौल, किशन कौल, जुगल कौल, कमली कौल, इन सब सर का आपको डेडिकेट करना चाहता हूँ।
1: ओके चलिए, तो प्ले कर रहे हैं गाना आपकी।
0: ओके मैम
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय कॉल के।

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के काहे चलतनी? और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू? अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा? आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपरसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
5: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
4: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
6: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
4: संपर्क 99393965930।
7: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
8: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
9: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहां है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
10: हमारे यहां दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
9: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9478434068 पे। सुनिए सुनिए सुनिए,
11: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
9: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
11: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
9: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
12: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
13: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
12: अरे, अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
13: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
14: Now pick it up, pick it up.
15: Hello.
14: Now pick your phone up.
15: Hello.
14: Pick it up, pick it up.
15: Hello.
14: Now pick your phone up.
15: Hello.
16: Jab phone ring de bajti hai to kehte hain hello.
17: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
16: Bhage bhage firte hain.
18: Break ke baad aap sabhi ka ek bar fir se swagat hai Hello My Choice ke show mein. आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
19: हेलो
15: हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंजर 90.4 FM में।
19: थैंक यू मैम। नमस्ते।
15: नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
19: मैं खुशी बोल रही हूँ गोपालगंज से।
15: जी, कैसे हैं खुशी जी?
19: ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
15: मैं भी बढ़िया हूँ। क्या हो रही थी?
19: कुछ नहीं, आपके पास पता है यार, जब से कॉल की बहुत बिजी जा रहा था कॉल में, बोली की सिर्फ मैं थोड़े हूँ, कितने लोग कॉल कर रहे होंगे।
15: चलिए, तो अभी लग गया ना कॉल?
19: बहुत आनंद से लगा था,
15: मेहनत तो लगती है कॉल करने में। जी, तो गाना कौन सा सुनना है आपको बता दीजिए।
19: मैम, मैं एक अल्बम सॉन्ग सुनना चाहती हूँ, अगम कुमार निगम जी की आवाज में जो है उसका उतना नाम।

0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 104 FM में।
1: जी योगेश जांगड़े बेहतर छत्तीसगढ़ से।
0: जी कैसे हैं योगेश जी? तो क्या हो रहा था
1: घर में?
0: तो गाना कौन सा सुनना है बता दीजिए आज।
1: डॉन से सुनवा देंगे, खाई के पान बनारस वाला।
0: कौन? खाई के पान बनारस वाला।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी। और सुनवाना भी है?
1: हाँ जी, कुछ रेडियो साथ के हैं, श्रीपाल गोयल जी, लोकेन वर्मा जी, दिलीप आहूजा जी, रोशन देवाना जी।
0: जी तो प्ले करे गाना आपकी।
1: जी जी धन्यवाद
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी चॉइस में कॉल किया।
2: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। अरे ऐसा झटका लगे जिया पे, पुनर्जन्म हो जाए।

सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला हाँ हाँ अरे कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला जाने कौन घड़ी में पड़ गया पढ़े लिखों से पाला मीठी छुरी से हुआ हलाल छोरा गंगा किनारे वाला ओ छोरा गंगा किनारे वाला ओ खई के पान बनाओ रस

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87894 18744।
2: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
3: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
2: तो देर मत कीजिए,
3: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
2: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
4: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
4: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
4: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
5: ठक ठक।
6: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
7: अच्छा मिला ही नहीं।
6: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
8: जी हाँ, कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
6: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
8: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
9: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
10: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
4: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
2: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0970-06-575।
11: Now pick it up, pick it up.
12: Hello.
11: Now pick your phone up.
12: Hello.
11: Pick it up, pick it up.
12: Hello.
11: Now pick your phone up.

0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में। क्या हाल चाल
2: है?
1: गाना कौन सा सुनना आज आपको बता दीजिए।
2: ये तुझे हंस हंस के सलाम मुझसे बात करती है ये वाला।
1: और सुनवाना भी है
2: ये आपको जितनी श्रोता सभी को और अपने दोस्तों को। चलो चलिए
1: तो प्ले कर रहे हैं गाना आपकी।

0: हेलो नमस्कार मैम।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: आपको भी बहुत बहुत स्वागत रिमझिम में। और
1: जी नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
0: लाल बहादुर प्रसाद, नादाना पंचायती राज, कल्याणपुर से। गुड मॉर्निंग
1: जी, कैसे हैं लाल बहादुर जी?
0: ठीक है मैम, आप कैसे हैं? आपका मौसम बहुत सुहाना है, कुल झमझम सी हवा चल रही है।
1: जी जी,
0: हवा हूँ बसंती हवा हूँ, बड़ी इधर हूँ मतवाला हूँ, इधर से आकर घूमती हूँ। हवा हूँ बसंती हवा, क्योंकि मैं से किसी की जिधर से आती घूमती हूँ। हवा हूँ बसंती हूँ हवा।
1: तो गाना बता दीजिए, कौन सा सुनना है आपको?
0: गाना सुनना है नील कलम के आवाज में, कमल के।
1: नील कमल के आवाज में कौन सा गाना?
0: बोरा मस्कर करते हम कंगाल होटल के बुकिंग में।
1: कौन सा गाना?
0: तोरे करते हम कंगाल होटल
1: माल के चक्कर में।
0: नील कमल,
1: जी जी नील कमल के गाना सुनना है और सुनवाना भी है
0: आपको। और जितने भी हमारे जुड़े हैं ग्रामीण पंचायती राज सारे को, उनके प्रसाद और सचिन बाबू।
1: ओके, चलिए तो प्ले कर रहे हैं गाना आपकी।
0: जी मैम नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद समय कॉल किया।

0: मोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
3: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
2: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
3: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
2: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
4: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
5: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
4: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
5: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर, ग्राम एक डेरवा, तिलंगही मैदान के पूरब, गोपालगंज।
4: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
5: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
6: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
7: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास जो है ENT स्पेशलिस्ट।
8: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD शादा पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इसमत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर, RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
9: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
10: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
9: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
11: कब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
12: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
11: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
4: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
13: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
14: Pick it up.
15: Hello.
14: Now pick your phone up.
16: बात आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
17: हेलो रेडियो रिमझिम
18: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में।
17: हाँ जी, मैं बहुत दिन से ट्राई कर रहा था, लेकिन
18: जी
17: अब तो काम से फुर्सत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया तो लग गया।
18: चलिए नाम बता दीजिए अपना।
17: हमारा नाम है बद्री नारायण मुनि।
18: जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
17: हम बात कर रहे हैं ग्राम भोलनी से, जमो बाजार, जिला सीवान।
18: अच्छा अच्छा, क्या करते हैं आप?
17: हम तो मिस्त्री का काम करते हैं।
18: तो गाना कौन सा सुनना आज आपको?
17: गाना सुनना है मदर इंडिया का।
18: मदर इंडिया
17: घर आज प्यारी दुल्हनिया चली।
18: जी और सुनाना
17: शकील बदायनी साहब ने संगीत दिया 9-7 साहब।
18: चलिए तो प्ले करें गाना आपकी।
17: हाँ प्ले कीजिए। मैं 1972 से रेडियो सुन रहा हूँ। मैं रेडियो रेडियो का बहुत शौकीन हूँ।
18: जी जी चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो माय चॉइस में कॉल किया।
17: ठीक है जी।

0: हेलो,
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिव्यू 104 FM में।
0: जी धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार, क्या हाल चाल है?
0: बढ़िया बढ़िया एकदम। बोलता नहीं मुंबई से।
1: जी जी, अभी जी का मौसम कैसा बाटे?
0: मौसम ठीक बाना बा, थोड़ा काफी बात।
1: अच्छा,
0: गाना सुनाते हैं?
1: जी बिल्कुल, बता दी।
0: 9 लाख मांगाते ऐसे कुछ गाना पड़े राकेश मिश्रा सिल्की राज की आवाज में।
1: अच्छा, भोजपुरी गाना?
0: हाँ भोजपुरी।
1: अच्छा अच्छा,
0: सिल्की राज राकेश मिश्रा की आवाज है बा। 9 लाख मांगाते
1: और सुने के बाद और डेडिकेट भी रही।
0: हाँ डेडिकेट रही, आपके रही, पूरा लिस्ट सो के रही, सब दोस्त सो के रही।
1: चलिए तब प्ले करता नहीं गाना।
0: बहुत
1: बहुत धन्यवाद। कॉल करें

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
3: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
1: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
0: कॉल करें 70-70-75-63-100 या 70-70-75-42-100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
4: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
5: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
6: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
7: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
8: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
1: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
5: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
1: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
0: कॉल करें 87-894-18-744।
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
3: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
1: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष विशेषज्ञों द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
0: कॉल करें 70-70-75-63-100 या 70-70-75-42-100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
1: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
9: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए, स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
9: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27, बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 92-899-22-567 या 97-714-86-164।
10: प्रसाद क्लिनिक।
11: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
10: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंड स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
11: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
12: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
13: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं hello, hello, hello, hello, hello, hello. भागे भागे फिरते हैं।
14: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
15: हेलो
16: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
15: नमस्ते मैडम।
16: नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना।
15: महंत कुमार
16: जी, कैसे हैं?
15: अच्छा है, आपने सुनाइए।
16: हम भी बढ़िया हैं। तो क्या हो रहा था अभी?
15: अभी मैडम काम हो रहा है।
16: अच्छा,
15: खाना ना हो गया रहा?
16: जी हाँ, बिल्कुल हो गया है।
15: ठीक है मैडम, हमको गाना सुनना है।
16: जी बिल्कुल सुनाएंगे गाना, बता दीजिए नाम गाने का।
15: माँ शेरा वाली का भक्ति गाना।
16: अच्छा, माँ शेरा वाली है।
15: जी जी
16: जी, और डेडिकेट भी करिएगा।
15: हाँ जी जी
16: जी,
15: गोलू कुमार है, गोलू कुमार ईश्वर और मोहित
16: जी। तो प्ले करेगा ना?
15: जी
16: जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय कॉल किए।

0: दोस्तों, आप लोग अभी कार्यक्रम हेलो माय चॉइस को मेरे साथ यानी आरजे सोनी के साथ सुन रहे थे। अब समय हो चुका है इस कार्यक्रम से विदा लेने का, तो मुझे दीजिए अब जाने की इजाजत और ऐसे ही सुनते रहिए रेडियो रिंजन 90.4 FM। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, नमस्कार।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
4: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
3: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
3: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: जानकारी के लिए कॉल करें 99 55 94 94 53
3: और 90 97 61 60 02।

0: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहे नू, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आंख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होई नू।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करत तनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आंख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
3: आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
4: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
5: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
4: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने कॉलेज रोड गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82101 87952। नियम और शर्ते लागू।
6: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
7: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
6: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
7: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
6: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554 97644।
8: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
9: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
8: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
9: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
8: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
9: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
8: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
10: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
8: कहाँ पर?
10: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, छवही खास, गोपालगंज,
8: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
10: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
8: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
10: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता छवही खास, NH 27, गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835569651।
11: एपिसोड 25 25

प्रीति की सुंदर रीति का अनुपम उदाहरण है दूध और जल का मिलन। दूध में मिलकर जल भी दूध के भाव बिकने लगता है, किंतु कपट रूपी खटाई के पड़ते ही पानी दूध से एक बारगी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है, प्रेम रूपी स्वाद जाता रहता है। सती के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव से आतंकित होकर शिव जी से छिपाव किया और मिथ्या वचन कहे कि उन्होंने श्री राम की कोई परीक्षा नहीं ली, किंतु सर्वज्ञ शंकर ने सब कुछ जान लिया और सती के कपटपूर्ण व्यवहार के लिए उनका त्याग करने का निश्चय कर लिया। उधर सती को अपनी करनी याद करके अत्यंत ग्लानी हुई। उन्होंने शिव का रुख पहचान लिया कि स्वामी ने उनका त्याग करने का निश्चय कर लिया है। अपने पाप की प्रतीति होने पर सती से कुछ कहते नहीं बना, किंतु उनका हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आमे के समान जलने लगा। इधर शिव जी ने अपने दृढ़ निश्चय के अनुसार वट वृक्ष के नीचे पद्मासन में बैठकर अखंड समाधि लगा ली।

0: तब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
1: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
1: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया या? दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
2: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
6: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
7: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुत देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
6: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
8: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
9: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
10: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
11: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
12: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
10: आरआर मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
12: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
10: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
12: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
10: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
12: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, आरआर मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
10: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100, या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
13: सुनिए सुनिए सुनिए,
14: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
13: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
14: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
13: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
15: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपने भाषा की पहचान, रेडियो रिद्म 90.4 FM, सुनो दिल से।
16: एपिसोड 26, 26।

सती ने महादेव से छल तो किया, किंतु उनके समाधि में चले जाने के बाद पश्चाताप की आग में स्वयं जलने लगी। शिव की समाधि का एक एक दिन सती के लिए एक एक युग के समान बीतने लगा। मन में ये सोच कि इस दारुण दुख के अथाह और अनंत सागर को कब पार कर सकेंगी। शंकर के विमुख हो जाने के बाद भी विधाता उन्हें क्यों जिला रहा है। विडंबना ये है कि आत्मग्लानि के भेद को किसी पर प्रकट भी नहीं कर सकती। 87,000 वर्ष बीत जाने के बाद शिव की समाधि टूटी। सती ने आकर उनके चरणों में सिर नवाया तो महादेव उन्हें आदर से पास बिठाकर हरि अवतार की कथाएं सुनाने लगे। उन्हीं दिनों सती के पिता दक्ष को ब्रह्मा ने प्रजापतियों का नायक बनाया। ऐसी प्रभुता का पद पाकर अभिमान किसे नहीं होता। दक्ष को भी अभिमान हुआ और उन्होंने एक महायज्ञ करने की ठानी, जिसमें गंधर्व, किन्नर, शेषनाग, सिद्धों सहित सभी देवताओं को निमंत्रित किया।

0: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
2: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042403 6200042403।
4: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
5: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
6: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
5: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
6: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
5: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
6: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
5: संपर्क करें 8470309 या 9765665750।
7: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
8: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
7: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
8: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
7: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
9: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
10: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
9: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
10: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
9: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
10: जानकारी है तो कॉल करें 6205062112 पे।
11: यार, कुछ ऐसा खाने का मन है जो दिल भी खुश कर दे और स्वाद भी याद रह जाए,
12: तो चलो ना मोती महल रेस्टोरेंट।
11: अब स्वाद का असली ठिकाना मोती महल रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा लाजवाब नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, लजीज तंदूरी स्पेशल, चिकन, मटन, दमदार बिरयानी, साथ ही साउथ इंडियन डिशेस, कॉन्टिनेंटल डिशेस, पिज्जा, बर्गर, चाट, गोलगप्पे और कई शानदार वेज आइटम।
12: फैमिली डिनर, बर्थडे पार्टी, दोस्तों की गैदरिंग या वीकेंड आउटिंग, हर मौके के लिए शानदार माहौल।
11: तो देर किस बात की, तो आज ही आइए मोती महल रेस्टोरेंट, सरस्वती टॉकीज मल्टीप्लेक्स कैंपस, यादवपुर रोड, गोपालगंज,
12: जहां हर निवाला कहे वाह।
13: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
14: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
13: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
11: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
13: संपर्क 99393965930।
15: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
16: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में।
17: क्यों, क्या हुआ है?
16: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
17: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
16: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
17: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।
18: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है। कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
19: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
20: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इसमत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
21: ठक ठक।
22: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
23: अच्छा मिला ही नहीं।
22: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
24: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
22: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
24: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
25: तू जो है,
26: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश भर में आज से सहयोग शिविर की शुरुआत। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सारण जिले से राज्यव्यापी अभियान का किया शुभारंभ। राज्य में भूमि संबंधी मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए बिहार भूमि न्यायाधिकरण के सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। राजद के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के मुद्दे पर पार्टी करेगी आंदोलन। और राज्य में औद्योगिक विकास को देखते हुए नबीनगर एनटीपीसी परियोजना का होगा विस्तार। 800 मेगावाट की 3 इकाइयां लगाई जाएंगी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए आज से पंचायत स्तर पर राज्यव्यापी सहयोग शिविर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्वयं सारण जिले के डुमरी बुजुर्ग पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित होकर राज्यव्यापी अभियान का उद्घाटन किया। श्री चौधरी ने कहा कि शिविर में प्राप्त शिकायतों का समाधान अधिकतम 30 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सहयोग शिविर का आयोजन प्रत्येक माह के पहले और तीसरे मंगलवार को किया जाएगा।
2: और ये कार्यक्रम दो बार महीने में पंचायतों के स्तर शिविर लगेगा और दो बार, पहली मंगलवार और तीसरी मंगलवार। आपके सहयोग के लिए सरकार जारी है, चाहे वो अंचल का काम हो, शिक्षा विभाग का काम हो, चाहे वो ब्लॉक का हो या थाना का काम हो, जिसमें भी रुकावट है वो 30 दिन में नहीं करेगा, उसके पदाधिकारी को निलंबित करने का काम हमारी सरकार करेगा।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि सहयोग शिविरों में प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की प्रगति की मुख्यमंत्री सचिवालय स्तर से सीधी निगरानी की जाएगी। उन्होंने बताया कि जनता की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर 1100 और सहयोग पोर्टल भी क्रियाशील कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने पटना के दानापुर अनुमंडल के सरारी पंचायत में सहयोग शिविर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM समेत अन्य वरीय अधिकारी मौजूद थे। बेगूसराय जिले के प्रभारी मंत्री सह सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने बरौनी प्रखंड अंतर्गत भरत उच्च विद्यालय पिपरा देवस में सहयोग शिविर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर तेगड़ा के विधायक रजनीश कुमार, जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री, पुलिस अधीक्षक मनीष समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। इधर दरभंगा जिले में 24 स्थानों पर सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। जिले के प्रभारी मंत्री सह पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेंद्र ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कटिहार में आयोजित सहयोग शिविर के माध्यम से 2975 शिकायतों का निष्पादन किया गया। जिले के प्रभारी मंत्री सह कला संस्कृति मंत्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी ने सदर प्रखंड के भवाड़ा पंचायत में सहयोग शिविर का उद्घाटन किया। वहीं अरवल जिले के करपी प्रखंड के परियारी पंचायत में जिले के प्रभारी मंत्री सह पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने शिविर का उद्घाटन किया। अन्य जिलों में भी विभिन्न पंचायतों में शिविर का आयोजन किया गया। सुपौल जिले के प्रभारी सह योजना एवं विकास मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने सदर प्रखंड अंतर्गत पंचायत सरकार भवन में आयोजित सहयोग शिविर में शामिल होकर आम जनों की समस्याओं और शिकायतों को सुनने के लिए शिविर के निष्पादन के लिए पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। औरंगाबाद जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत बसडीहा स्कूल मैदान में प्रभारी मंत्री रमा निषाद ने सहयोग शिविर का उद्घाटन किया। बिहार भूमि न्यायाधिकरण के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 7 कर दी गई है। इसके साथ ही न्यायाधिकरण में 5 नए सदस्यों की नियुक्ति की गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने आज पत्रकारों से बातचीत में बताया कि आम लोगों को शीघ्र न्याय उपलब्ध कराने और भूमि संबंधी मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए यह निर्णय लिया गया है। राजद के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने राज्य सरकार पर महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर खानापूर्ति करने का आरोप लगाया है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री यादव ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं और सरकार केवल बयानबाजी कर रही है। उन्होंने कहा कि राजद महिलाओं के मुद्दे को लेकर सड़क से सदन तक आंदोलन करेगा।
3: लगातार ये सरकार महिला सशक्तिकरण के बारे में बात करती है, जो सच्चाई है बिहार की, अपराधी जो है हमारी माताओं बहनों पर बेटियों पर कहर बन करके टूटे हैं, इसमें सम्राट चौधरी जी की सरकार पूरी तरीके से फेल होते नजर आ रही है। प्रशासन कहीं नहीं नजर आ रहा है और ये गंभीर समस्या बन गई है बिहार के लिए, और खास तौर पे जो आम बिहारी है वो बहुत चिंता में है।
1: बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने लोहार जाति को फिर से अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल किए जाने के विषय को लेकर बिहार राज्य लोहार समन्वय समिति के प्रतिनिधियों के साथ आज बैठक की। समिति ने विधानसभा अध्यक्ष को इस संबंध में दस्तावेज सौंपते हुए सहयोग का आग्रह किया है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से जुड़े इस मामले में संसद के माध्यम से ही पहल संभव है। श्री कुमार ने कहा कि दस्तावेजों के आधार पर केंद्र और राज्य सरकार से पत्राचार किया जाएगा। औरंगाबाद जिले के नबीनगर में स्थित एनटीपीसी की सुपर थर्मल पावर परियोजना का विस्तार किया जाएगा। कंपनी के परियोजना प्रमुख एलके बेहरा ने प्रेस वार्ता में बताया कि राज्य में औद्योगिक विकास को देखते हुए बिजली की अतिरिक्त आवश्यकता है। इसे पूरा करने के लिए नबीनगर परियोजना के स्टेज 2 के तहत 800 मेगावाट की 3 इकाइयां स्थापित की जा रही हैं।
4: ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का कल्याण में आएगा, बिहार देश का हित में ही आएगा। ये बिजली तो बाहर देश को तो नहीं जा रहा है, हम लोग देश में ही बिजली के लिए, हम लोग का जो तो इकोनॉमी बढ़ाने के लिए, क्योंकि इकोनॉमी बढ़ेगा तो उसी का पाई किसी न किसी का पे बैक होता है। उसी तरह का हम लोग का जो ये पावर प्लांट होने के कारण जो लोग रोजगार मिल रहा है वो सर्कुलर इकोनॉमी में ही कंट्रीब्यूट कर रहा है।
1: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Pटना को फॉलो कर सकते हैं। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने विभिन्न कानूनी मंचों पर विचाराधीन मामलों का समयबद्ध निपटान सुनिश्चित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। श्री मांडविया ने नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि निधि आपके निकट कार्यक्रम के तहत मामलों की पहचान कर उनके निपटारे की प्रक्रिया शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि EPFO व्हाट्सएप अपनाने की योजना बना रहा है ताकि संपर्क सुविधा को बढ़ाया जा सके। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ने ई फार्मेसी और ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ कल देश भर में हड़ताल की घोषणा की है। बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट संघ ने भी हड़ताल का समर्थन किया है। संघ के अध्यक्ष प्रसन्न कुमार सिंह ने कहा कि 20 मई को प्रदेश की दवा दुकानें बंद रहेंगी। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन कंपनियां नकली, नशीली और अवैध दवाओं की बिक्री कर रही हैं, जिससे समाज को बड़ा नुकसान हुआ है। दवा विक्रेताओं ने ई फार्मेसी प्लेटफॉर्म पर अंकुश की मांग को लेकर आंदोलन करने का निर्णय लिया है। भारतीय रेलवे ने 54 किलोमीटर लंबी क्यूल झाझा तीसरी रेल लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि हावड़ा दिल्ली मार्ग पर क्षमता बढ़ाने के लिए 962 करोड़ रुपए की लागत से इस रेल लाइन का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना के पूरा हो जाने से इस अति व्यस्त रेलखंड पर यात्रियों और मालगाड़ियों की आवाजाही अधिक सुगम और समयबद्ध हो सकेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि इससे हावड़ा दिल्ली मार्ग पर परिचालन क्षमता बढ़ेगी और क्षेत्रीय औद्योगिक विकास को मजबूती मिलेगी। रेलवे ने पटना और उड़ीसा के खोरधा रोड जंक्शन के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन की परिचालन अवधि में विस्तार किया है। पटना खोरधा रोड स्पेशल ट्रेन प्रत्येक गुरुवार की सुबह 8:45 पर पटना जंक्शन से खुलेगी और अगले दिन 3:35 पर खोरधा रोड पहुंचेगी। वापसी में यह ट्रेन प्रत्येक शुक्रवार को खोरधा रोड से दोपहर 3:15 पर खुलकर अगले दिन सुबह 10:45 पर पटना पहुंचेगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने DLED संयुक्त परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। समिति के द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 8 जून से 22 जून तक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ये परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी। परीक्षा के लिए सभी प्रमंडलीय मुख्यालयों में केंद्र बनाए जाएंगे। बोर्ड ने कहा है कि अभ्यर्थी 28 मई से प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। समिति की वेबसाइट form.bsab.deled.com से इसे डाउनलोड किया जा सकता है। राज्य के अधिकतर हिस्सों में भीषण गर्मी की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज भभुआ और रोहतास जिले में लू के कारण जनजीवन प्रभावित रहा। पिछले 24 घंटों के दौरान गया जी राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि रोहतास, भभुआ, बक्सर समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों में अगले कुछ दिनों तक गर्मी से राहत के आसार नहीं हैं। वहीं चक्रवातीय परिसंचरण का क्षेत्र बनने के कारण राज्य के उत्तरी भागों में मौसम में परिवर्तन की संभावना है। इस दौरान पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, मधुबनी, सुपौल, अररिया समेत राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य और उत्तर पूर्व भागों में आंधी बारिश हो सकती है।
1: दिनांक 20 मई राज्य के उत्तर पूर्व एवं उत्तर मध्य भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्वी भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर भीषण गर्मी के मद्देनजर कैमूर जिला प्रशासन ने 8वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को 23 मई तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी नितिन कुमार सिंह ने इस संबंध में आज आदेश जारी किया। तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। राजधानी पटना में अब पेट्रोल का मूल्य 110.02 रुपए प्रति लीटर और डीजल का मूल्य 94.97 रुपए प्रति लीटर हो गया है। सारण पुलिस ने नशा मुक्त सारण अभियान के तहत जिले के विभिन्न भागों में छापेमारी कर भारी मात्रा में देशी विदेशी शराब जब्त की। इस संबंध में 14 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। शिवहर जिले में आयोजित भाजपा के दो दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान का आज समापन हो गया। केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे समापन सत्र में शामिल हुए। सुपौल जिले के बलुआ स्थित पुनर्वास स्कूल में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान के तहत मेडिकल जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 6 से 7 वर्ष के बच्चों में संक्रमण की स्थिति के आकलन के लिए TAS1 जांच की गई। सुपौल जिले के बीरपुर में भारत नेपाल सीमा के समीप SSB जवानों ने जांच अभियान के दौरान एक नाबालिग लड़की को मानव तस्करों से मुक्त करा लिया। जांच अभियान के दौरान भारी मात्रा में नेपाली शराब और गांजा के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शेखपुरा जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत मेहूस गांव में संचालित वस्त्र निर्माण केंद्र में कार्यरत मजदूरों को विकसित भारत योजना और PF योजना से जोड़ा जाएगा। जिलाधिकारी शेखर आनंद ने आज इस वस्त्र निर्माण इकाई के निरीक्षण के दौरान यह निर्देश दिए हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश भर में आज से सहयोग शिविर की शुरुआत। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सारण जिले से राज्यव्यापी अभियान का किया शुभारंभ। राज्य में भूमि संबंधी मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए बिहार भूमि न्यायाधिकरण के सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। राजद के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के मुद्दे पर पार्टी करेगी आंदोलन। और राज्य में औद्योगिक विकास को देखते हुए नबीनगर NTPC परियोजना का होगा विस्तार। 800 मेगावाट की 3 इकाइयां लगाई जाएंगी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: रहा है लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
3: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
2: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से दोपहर 2 तक।
3: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
4: सुनिए,
5: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
4: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
5: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
5: कहाँ पर?
4: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, छवही खास, गोपालगंज,
5: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
4: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
5: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता छवही खास, NH 27, गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835556965।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
5: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
4: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
5: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज, ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: प्रसाद क्लिनिक।
3: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चमरों के सफल इलाज के लिए मिले
2: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
3: बाकी दिन जादवपुर बाजार।

0: आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 8604348652 पे।
2: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपने दोस्त की शादी में?
3: क्यों, क्या हुआ है?
2: तुम्हीं ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
3: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
2: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
3: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।
4: रेडियो रिमझिम 90.4 FM सुन रहे हैं आप। समय हो चुका है आज के रोजगार समाचार का, आइए सुनते हैं आज का अंक।
5: समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के साथ हाजिर हूँ मैं विनीता। आइए कुछ जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या फिर स्वायत्त निकायों या सांविधिक संगठनों या फिर सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के पात्र अधिकारियों से सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद प्रतिनियुक्ति के आधार पर मुख्य ड्रिल प्रशिक्षक के एक पद को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। इस पद के लिए वेतन, आवश्यक योग्यताएं, अन्य पात्रता मानदंड और आवेदन प्रपत्र एकेडमी की वेबसाइट पर मिल जाएगी, जो है www.svpupa.gov.in/vacancies। इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज, इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज IDS जयपुर, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली और राजस्थान सरकार द्वारा संयुक्त रूप से निषेबद्ध राजस्थान में अनुसंधान में संलग्न एवं स्वायत्त प्रमुख सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान है। यहाँ पर कुछ पद के लिए आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। लेखा कार्यपालक, ये पद का नाम है, पदों की संख्या होगी एक और आयु सीमा की बात करें तो 18 से 40 वर्ष। पदों की प्रकृति होगी संविदागत आधार पर और श्रेणी है अनारक्षित। इन्हें मिलेंगे 62,000 रूपए और PF। कनिष्ठ कार्यालय सहायक, एक पद यहाँ पर भी रिक्त है, 18 से 40 वर्ष के बीच इनकी आयु होनी चाहिए और ये स्थायी पद होगा, अनारक्षित है। ये ग्रेड पे 2400 के लिए है। 18 से 40 वर्ष में एक और पद रिक्त है, वो है कनिष्ठ कार्यालय सहायक का, संविदागत आधार पर अनारक्षित। इन्हें मिलेंगे 33,000 रूपए प्लस PF। चालक, एक स्थान रिक्त है, 18 से 40 वर्ष, स्थायी होगा ये, अनारक्षित है। इसमें आपका ग्रेड पे होगा 2400। एक स्थान यहाँ रिक्त है, 18 से 40 वर्ष की उम्र, स्थायी अनारक्षित और ये ग्रेड पे 1700 के अंतर्गत आते हैं। आयु में छूट पर राजस्थान राज्य सरकार मानकों के अनुसार विचार किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त संस्थान IDS JGB निर्माण के अनुसार आयु में मानदंड में छूट देने का अधिकार सुरक्षित रखता है। सभी पदों के लिए निर्धारित आवेदन पत्र आपको मिल जाएगा वेबसाइट पर, जो है www.idsg.org/vacancies। इस विज्ञापन के प्रसारण के 15 दिनों के अंदर आप आवेदन कर सकते हैं। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, भारतीय खान ब्यूरो, भारतीय खान ब्यूरो IBM में सामान्य केंद्रीय सेवा, अराजपत्रित राजपत्रित समूह बी के स्तर 7 के अंतर्गत सहायक भंडार अधिकारी के एक पद को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरने के लिए केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार या फिर संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या फिर सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या सांविधिक निकायों मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधीन अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। विभाग में इन पद के लिए आवेदन की अंतिम तारीख होगी इस विज्ञापन के प्रसारण के 60 दिनों के अंदर। आवेदन करने वाले सभी आवेदकों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
6: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
0: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।

0: से कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97714-86164।
2: तब रामू काका, है इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
3: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
2: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
3: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
2: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
3: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से ही लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा।
4: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
2: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।

मेरे भाई मुझसे कुछ कहना चाहता है, कह देना। ये अधूरी बात मुझे समझ नहीं आती, कोई तो बड़ी बात है भाई, अपने छोटे भाई से क्यों छुपाता है।

0: निगम। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी। दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: श्री मोदी ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब क्रिएट किए हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्नत भागीदारी के जरिए प्रत्येक नॉर्डिक देश की विशेषज्ञताओं का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं, स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं।
1: वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत हैं कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
0: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत के राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सुश्री राव ने बताया कि यह यात्रा समुद्री सुरक्षा, मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं, व्यापार साझेदारियों और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ठोस परिणाम देने का लक्ष्य रखती है और इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण समझौतों की घोषणा होने की उम्मीद है। इटली में भारतीय समुदाय के बारे में बात करते हुए भारत की राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि भारतीय प्रवासी समुदाय ने डेयरी और कृषि सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय की गतिशीलता और कल्याण से जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान चर्चा हो सकती है। सुपर्णा भाटिया, रोम से।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आंग्यू बेक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों की तलाश करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। श्री प्रधान ने कहा कि दोबारा परीक्षा सख्त सुरक्षा नियमों के अंतर्गत सुरक्षित, बिना किसी रूकावट के और पूरी तरह से पुख्ता तरीके से आयोजित की जानी चाहिए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाश अभियान चलाकर कथित नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ा दी है। उम्मीदवार 23 मई तक आवेदन जमा करा सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों के औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित एक वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है।
2: 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। बस्तर के 7 जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने, भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और विकसित भारत की दिशा में देश की प्रगति के लिए उद्योग और सरकार के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने ये बात कही।
3: That we will convert the current situation.
4: हम दुनिया की भू राजनीतिक परिस्थितियों और उनसे जुड़े जोखिमों को तेज सुधारों के अवसर में बदलेंगे। खुद को अधिक मजबूत और लचीला बनाने की तैयारी करेंगे, अपनी सप्लाई चेन को और सशक्त करेंगे और दुनिया जो भी अवसर दे रही है तथा भारत जो अवसर दुनिया को प्रदान कर रहा है उसके पूरे लाभ उठाएंगे। उदाहरण के तौर पर वे 38 देश जो एक के बाद एक मुक्त व्यापार समझौते के ढांचे में शामिल हो रहे हैं।
1: वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का लक्ष्य 2030-31 तक 350 अरब डॉलर का कपड़ा बाजार बनाना है। इसमें 100 अरब डॉलर का निर्यात शामिल होगा। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि टिकाऊ और प्राकृतिक फाइबर ही कपड़ा क्षेत्र के भविष्य को आगे बढ़ाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उर्वरक प्राप्त करना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। ओडिशा के भुवनेश्वर में श्री चौहान ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार किसानों के लिए पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबी से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दे दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी का दुष्कर्म मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। इससे पहले इस मामले में सियालदह सत्र अदालत ने संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने आज फालता विधानसभा क्षेत्र में होने वाले आगामी पुनर्मतदान से अपना नाम वापस लेने की घोषणा की है। भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार के विशेष पैकेज की उन्होंने सराहना की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। रूस ने बताया है कि श्री पुतिन 12 और 13 सितंबर को सम्मेलन में शामिल होंगे। एक साल के अंदर श्री पुतिन की यह दूसरी भारत यात्रा होगी। इससे पहले वो दिसंबर 2025 में भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली आए थे। देश के पूर्वोत्तर

0: 6.18 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 18 पैसे कमजोर होकर 96.53 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
1: मौसम विभाग ने गुरुवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भीषण लू की आशंका है। अगले 2 से 3 दिन के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश या मराठवाड़ा और ओडिशा में लू चलने की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि 21 मई तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, बिहार, गंगा के मैदानी, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में गरज के साथ तेज हवाओं का अनुमान है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एकदिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बना लिए हैं। राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबी से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी। दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एकदिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
3: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
4: अरे तो उसे डांटती क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
5: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
7: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
8: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
7: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
8: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
7: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
8: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
7: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
8: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
9: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
10: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
7: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
8: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
7: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
8: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष विशेषज्ञों द्वारा।
7: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
8: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और

0: 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
7: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
6: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
7: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
3: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपने दोस्त की शादी में?
4: क्यों, क्या हुआ है?
3: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
4: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
3: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
5: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।
8: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल, पहले मुख्य हालचाल। टेंडर में धमकी और रंगदारी करने वालों पर अब होगी सख्त कार्रवाई। साइबर ठगी के एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नोट डबल करने का मामला हाई प्रोफाइल लोगों तक पहुंचा। विधायक अमरेंद्र पांडे को नहीं मिली कोर्ट से राहत। और गोमती नगर एक्सप्रेस में मिली सिरकटी लाश को लेकर गोपालगंज में भी कई स्टेशनों पर हुआ जांच पड़ताल। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज में टेंडर प्रक्रिया के दौरान हो रही धांधली और रंगदारी इत्यादि की सूचना पर अब पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने सख्त रुख अपनाया है। आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि विभिन्न स्रोतों से पुलिस को सूचना मिली थी, जिसमें बताया गया कि कुछ उपद्रवी एवं असामाजिक तत्व सरकारी निविदा यानी टेंडर प्रक्रिया में शामिल लाइसेंस धारी संवेदकों ठेकेदारों को डरा धमका कर अथवा दबाव बनाकर निविदा प्रक्रिया से अलग कराने का प्रयास करते हैं तथा अपने चिन्हित व्यक्तियों को ही अनुचित लाभ पहुंचाने हेतु टेंडर दिलाने का प्रयास करते हैं। इस संबंध में सभी लाइसेंसधारी संवेदकों एवं संबंधित व्यक्तियों को पुलिस ने सूचित किया है कि बिहार सरकार द्वारा विभिन्न सरकारी कार्यों हेतु जारी निविदाओं में सभी योग्य एवं लाइसेंसधारी संवेदक निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुसार स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से अपनी बोली लगा सकते हैं। पुलिस ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा डराने, धमकाने, दबाव बनाने, रंगदारी मांगने अथवा पैसे का प्रलोभन देने जैसी गतिविधियां पूर्णतः अवैध है। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी तथा प्राप्त शिकायतों के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कठोर विधि सम्मत कार्रवाई होगी। पुलिस ने सभी संबंधित व्यक्तियों से अपील किया है कि वे बिना किसी भय या दबाव के निष्पक्ष रूप से निविदा प्रक्रिया में भाग लें एवं किसी भी अवैध गतिविधि की सूचना पुलिस को दें। पुलिस ने कहा कि निविदा प्रक्रिया को भयमुक्त, पारदर्शी एवं निष्पक्ष बनाए रखने के लिए जिला पुलिस पूर्णतः प्रतिबद्ध है। यदि किसी संवेदक लाइसेंसधारी अथवा संबंधित व्यक्ति को किसी प्रकार की धमकी, दबाव या अवैध हस्तक्षेप से संबंधित सूचना मिलती है तो पुलिस को जानकारी दें, पुलिस ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करेगी। इधर कटिया थाना की पुलिस ने साइबर ठगी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार कटिया में सीएसपी संचालक शिवम कुमार जायसवाल, पिता छोटू जायसवाल, ग्राम और थाना कटिया जिला गोपालगंज को कुछ युवकों के द्वारा बहन की शादी होने की बात कहकर फोन पे के माध्यम से 40,000 रूपए भेजे जाने की जानकारी दी गई तथा उक्त राशि नगद रूप में प्राप्त कर ली गई। इसके उपरांत संबंधित राशि के संबंध में उनके खाते को होल्ड किए जाने की सूचना मिली। सूचना का सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु थानाध्यक्ष ने ग्राहक सेवा केंद्र में लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच की। घटना से संबंधित अभियुक्तों की तस्वीर एवं गतिविधि सीएसपी में लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड पाई गई। सीसीटीवी फुटेज को जांच पड़ताल करते हुए पुलिस ने प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर घटना में संलिप्त अभियुक्त विशाल कुमार, पिता रामजी राम साकिन दुबे बेलवा, वार्ड संख्या 10 थाना कटिया जिला गोपालगंज को विधिवत गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पुलिस ने इस कांड के अन्य संलिप्त व्यक्तियों की भी पहचान एवं गिरफ्तारी के लिए मानवीय और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर छापेमारी कर रही है। पुलिस ने आम नागरिकों और सीएसपी संचालकों से अपील किया है कि वे किसी भी अपरिचित व्यक्ति द्वारा किए जा रहे संदिग्ध वित्तीय लेन देन के प्रति सतर्क रहें तथा बिना सत्यापन के बड़ी राशि का भुगतान न करें। किसी भी प्रकार की साइबर ठगी अथवा संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल साइबर हेल्पलाइन 1930 पर या निकटतम थाना को अवश्य दें। जिले में नोटों को डबल करने वाले एक ऐसे हाई प्रोफाइल रैकेट का पर्दाफाश हुआ है जिसने पुलिस और आम जनता दोनों को चौंका दिया है। दरअसल बैकुंठपुर में 8 लोगों को केमिकल से नोट बनाकर डबल करने के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया और पूछताछ के बाद इस काले धंधे के पीछे कई छोटे मोटे जालसाज के साथ ही समाज के तथा कथित सफेद पोष चेहरे भी सामने आए हैं, जिसमें राजद और जदयू के नेता, एक जिला पार्षद और एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर का भी नाम शामिल है। पुलिस की विशेष टीम अब जाल बिछाकर इस संगठित अपराध का भंडाफोड़ कर रही है। इसके नेटवर्क पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से लेकर पड़ोसी देश नेपाल तक फैले हुए हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार यह बड़ी कार्रवाई 14 मई की रात को बैकुंठपुर के सिंहासनी गांव में की गई। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गांव में नोटों को रासायनिक प्रक्रिया से डबल करने के नाम पर बड़ी डील हो रही है। पुलिस ने जब जाल बिछाकर वहां कार्रवाई की तो वहां से 95,27,000 रुपए नकद बरामद किए गए। इस दौरान पुलिस ने काली स्कॉर्पियो और एक और कार को भी जब्त किया है। बताया जा रहा है कि कुछ लोग गाड़ी से पैसे डबल कराने के लिए आए थे, लेकिन रकम सौंपने से पहले ही पुलिस की रेड पड़ गई। इस रैकेट की कार्य प्रणाली बेहतर शातिराना थी। गंभारी पंचायत के बलहा स्कूल के हेडमास्टर कामेश्वर राय और उनके दोस्त प्रदीप पुरी को फंसाने के लिए गिरोह के मुख्य सरगना कमाल खान, दिलशेर खान और जोहेब अंसारी ने जाल बुना था। उन्होंने मोतिहारी के छतौनी चौक स्थित जायसवाल होटल में पहले इन लोगों को 5,000 के बदले 10,000 रुपए डबल करके दिए। जब इन लोगों ने वह पैसा बैंक में जमा किया और बैंक में जाली नोट नहीं पकड़ा गया तो इन्हें पूरा भरोसा हो गया कि यह गिरोह सच में नोट डबल कर सकता है। इसके बाद कईयों ने लाखों रुपए दांव पर लगा दिए। सोनवलिया के रहने वाले अमित कुमार ने पुलिस के सामने इस गिरोह के कई चौंकाने वाले राज खोले हैं। अमित ने स्वीकार किया कि लगभग 1 साल पहले साफियाबाद के मोहम्मद कमाल खान, झाड़फूंक करने वाले दिलशेर और कतालपुर के राजद नेता मोहम्मद जोहेब अली ने उनसे नोट डबल करने के नाम पर 10 लाख ठग लिए थे। जब उन्होंने पैसे मांगने शुरू किए तो आरोपियों ने 3 लाख लौटाए और कहा कि बाकी पैसे कमाने हैं तो हमारे साथ गैंग में शामिल हो जाओ। अपना पुराना डूबा हुआ पैसा निकालने के चक्कर में वह भी इनके साथ मिलकर काम करने लगा। अमित ने बताया कि नोट डबल करने का केमिकल और सारा सामान साफियाबाद में मोहम्मद मुन्ना खान के घर पर ही छिपा कर रखा जाता था। इस गिरोह में जिला पार्षद मोहम्मद अशफाक अंसारी उर्फ सुड्डू खान, जो कतालपुर के हैं, इनका भी नाम आ रहा है। राजद नेता मोहम्मद जोहेल अली, जदयू नेता मुन्ना खान और तंत्र मंत्र तथा झाड़ फूक की आड़ में ठगी करने वाले साफियाबाद के दिलशेर खान, कमाल खान, इन सब का नाम इस रैकेट में सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि इसकी आंच बैकुंठपुर क्षेत्र के एक पूर्व विधायक के गिरेवान तक भी पहुंच रही है। फिलहाल पुलिस की SIT इन फरार सफेद पोशों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। पुलिस हालांकि और भी बारीकी से अनुसंधान कर रही है और इसमें बताया जा रहा है कि और भी कई सफेद पोशों के नाम सामने आ सकते हैं। कुचायकोट के विधायक अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे की गिरफ्तारी पर तो फिलहाल रोक बरकरार है, परंतु आज भी गोपालगंज के न्यायालय में उनके मामलों की सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने फिर से 27 मई को डेट दे दिया। आज भी अदालत इस मामले में कोई ठोस निर्णय पर नहीं पहुंची। बताया जा रहा है कि भू माफियाओं को संरक्षण देने के केस में सतीश पांडे सीए राहुल तिवारी को भी अग्रिम जमानत नहीं मिली है और इन लोगों पर गिरफ्तारी की तलवार फिलहाल लटकी हुई है और अदालत इस मामले में फिर से 27 मई को अगली तारीख मुकर्रर कर दिया है। इधर छपरा से चलकर गोमती नगर को जाने वाली छपरा गोमती नगर एक्सप्रेस ट्रेन जो गोपालगंज थाने के रास्ते जाती है, इस ट्रेन में रविवार की सुबह गोमती नगर में एक बक्से में युवती की सर कटी हुई लाश मिली है, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और गोपालगंज थाने रेल खंड पर भी रेलवे पुलिस लगातार जांच कर रही है। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे और अन्य साक्ष्यों के माध्यम से अनुसंधान किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह गाड़ी रविवार की सुबह गोमती नगर पहुंची। वहां जब कोच में सफाई का काम चल रहा था तो स्टाफ को एक संदिग्ध बैग और एक बड़ा बॉक्स दिखाई दिया। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने जब बॉक्स को तोड़ा, उसमें ताले लगे हुए थे, तो उसके अंदर से एक 30-35 साल के आसपास की महिला की सर कटी हुई लाश उसमें रखी हुई थी और एक बैग था जिसमें एक पॉलीथीन में पैक कर उसके हाथ और पैर को अलग रखे गए थे। सर का कोई पता नहीं था, जिसके बाद पूरे गोमती नगर स्टेशन पर हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद सुरक्षित रखा है और गोपालगंज थामे रेलखंड पर भी आज इसको लेकर जांच पड़ताल की गई। पुलिस पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आखिर ट्रेन में यह बक्सा कहां से लोड किया गया है और यह लाश किसकी है, इसको लेकर पुलिस फिलहाल अनुसंधान कर रही है। खबर मिलने तक इसका कोई पता नहीं चल सका था। गोपालगंज का मॉडल सदर अस्पताल मरीजों को जहां इलाज की सुविधा दे रहा है, तो वहीं कई बार मरीजों की समस्याएं भी बन जा रहा है। दरअसल इस भीषण गर्मी के बीच यहां फुली ऑटोमेटिक एसी सिस्टम लगा हुआ है और कई बार एसी सिस्टम खराब हो जा रहा है। सैनिटाइजेशन सिस्टम भी बंद हो जा रहा है, जिससे इमरजेंसी वार्ड में भर्ती मरीजों को परेशानी बढ़ जा रही है। दरअसल एसी वार्ड होने के वजह से यहां चारों तरफ खिड़कियां पैक रहती हैं और ऐसे में जब एसी बंद हो जाता है तो मरीजों को त्राहिमाम होना पड़ता है। भवन निर्माण के दौरान आउटर चेंबर न बनाए जाने के कारण ऑटोमेटिक कूलिंग और सैनिटाइजेशन प्लांट स्थापित नहीं हो सका है और वर्तमान में काम चलाऊ व्यवस्था से ही यहां सेवा दी जा रही है। 37 करोड़ की लागत से बना यह मॉडल सदर अस्पताल अपनी तकनीकी खामियों और अव्यवस्थाओं के वजह से कई बार मरीजों को परेशान कर रहा है। कई बार यहां लिफ्ट की खराबी के वजह से भी गंभीर रोगों से ग्रसित मरीजों को सीढ़ी के माध्यम से चढ़ने की आफत भी झेलनी पड़ती है। फिलहाल यह मॉडल सदर अस्पताल हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। एमआईएम के नेता अनस सलाम ने आज प्रेस को एक विज्ञप्ति जारी कर सरकार से मांग किया कि राष्ट्रीय पशु के रूप में गाय को मान्यता दिया जाए, सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे, साथ ही देश में सारे बूचड़खाने बंद किए जाए, गाय से जुड़ी कोई भी चीज का व्यापार न हो, गाय से जुड़ी चीजों का आयात निर्यात इत्यादि भी पूरी तरह से बैन किया जाए। इधर पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने अपने कार्यालय में जनता की समस्याओं को सुनने के बाद उसे निष्पादित करने के लिए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर लगातार पुलिस इलाके में पेट्रोलिंग कर रही है। जगह जगह पुलिस बल रात में तैनात रहते हैं ताकि लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके और पुलिस कर्मियों की जांच के लिए सुपर पेट्रोलिंग की जाती है, जिसमें पुलिस के वरिष्ठ पदाधिकारी रात्रि में ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों की जांच करते हैं। कल रात भी बहुत सारे पदाधिकारियों ने अलग अलग क्षेत्रों में जाकर सुपर पेट्रोलिंग के तहत जांच पड़ताल किया। आज जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार माझा प्रखंड एवं सदर प्रखंड गोपालगंज के सभी पंचायतों में पंचायत सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में आम नागरिकों की समस्याओं एवं आवेदन परिवाद पत्रों एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन हेतु विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ साथ पुलिस पदाधिकारियों और पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गई। उक्त कार्यक्रम के सफल एवं शांतिपूर्ण संचालन के लिए संबंधित पंचायतों में सुरक्षा और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल भी तैनात किए गए थे। भोरे थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में फरार चल रहे दो प्राथमिकी अभियुक्त कमलेश दीक्षित और आशुतोष दीक्षित को गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों भोरे के दीक्षितौली गांव के रहने वाले हैं। इन्हें आज पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आज प्रदेश के पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता गोपालगंज आए थे। इस दौरान थावे माँ भवानी के दरबार में उन्होंने पूजा आराधना की। मंदिर के प्रधान पुजारी संजय पांडे ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मंत्री जी को माँ दुर्गा का विशेष दर्शन कराया और विधि विधान से पूजा भी कराई। मंत्री जी ने प्रदेश के सुख समृद्धि के लिए माँ भवानी से कामना की। इधर गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के बहुरा टोला में छपरा रेल खंड के पास एक बुजुर्ग की ट्रेन के चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग रेल की पटरी पार कर रहे थे, तभी अचानक ट्रेन आ गई, जिससे ट्रेन के चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू किया है। विजयपुर थाना क्षेत्र के अहियापुर गांव में ईट भट्ठे के पास झाड़ियों में एक युवक का शव पुलिस ने बरामद किया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। खबर मिलने तक मृतक युवक की पहचान नहीं हो सकी थी। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। हत्या कर शव को फेंके जाने की आशंका पुलिस ने जताई है। और आज के मौसम का तापमान, गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। टेंडर में धमकी और रंगदारी करने वालों पर अब होगी सख्त कार्रवाई। साइबर ठगी के एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नोट डबल करने का मामला हाई प्रोफाइल लोगों तक पहुंचा। विधायक अमरेंद्र पांडे को नहीं मिली कोर्ट से राहत। और गोमती नगर एक्सप्रेस में मिली सिरकटी लाश को लेकर गोपालगंज में भी कई स्टेशनों पर हुआ जांच पड़ताल। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
10: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
11: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
12: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
11: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
13: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
14: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
15: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
16: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9439456 या 9797-06-575।
17: सुनिए सुनिए सुनिए,
18: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
17: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
18: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
17: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
19: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
20: कहाँ पर?
19: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, चवही खास, गोपालगंज,
20: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
19: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
20: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता छवही खास, NH 27, गोपालगंज, कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835569 65।
21: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9852384088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
22: Excuse me boss, you have a text message.

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू SMS फरमाइश के साथ रेडियो रेमझिम 90.4 FM पे। समय 9:24 हो रहे हमारे स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं, तो बिल्कुल हर रोज की तरह सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96 और आप लोग से हर रोज हम आग्रह करते हैं कि पुराने गाने के फरमाइश करें। कल कई श्रोतागढ़ नए गाने के फरमाइश किए हुए थे, तो थोड़ा सा समझें आप सभी और पुराने गाने के साथ इस कार्यक्रम में एंजॉय करें। यहाँ पे कुछ मैसेज पहुँचे हुए, तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं। तब तक अपना भी कार्यक्रम शुरू करें। यदि मैसेज नहीं किए हैं तो मैसेज टाइप करने का और सेंड करें हमारे नंबर 72 77 16 65 96 पे। पहला मैसेज हमारे पास पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि हाय सर, समीर आलम जंगलिया से सॉन्ग सुनना है दिल तेरे नाम से। तो बिल्कुल आपके गाने के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरू करेंगे और इन्होंने डेडिकेट करते हैं इरफान भाई, कमरान भाई, गुलाम हुसैन, अहमद अली, साहिल भाई, शफिया वसीम, सगुफा करीम, रुबीना नाज, शफाक, साजा, हीना हाजरा, अनामका गुड़िया, शबीता ब्यूटी, शबनम जरीन, शबनम सिद्दीकी, नीतू रोशनी, शबीना सब्बा, आशा निशा, तब्बू और सजदा संतरा और आपको। तो चलिए हम भी हैं आप लोग के साथ और आप ही के गाने के साथ इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे। तेरे नाम से दिल धड़कता है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि सोनू भाई नमस्कार और सभी दोस्तों को नमस्कार, गाना सुनना है। बिल्कुल आपको भी सुनाएंगे गाने। फिलहाल स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में दिलीप राम जी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि नज़र मिले तो उसे इजहार कहते हैं, नज़र मिले तो उसे इजहार कहते हैं, रात को नींद ना आए तो उसे प्यार कहते हैं, और जो इन चक्रों में ना पड़े उसी को समझदार कहते हैं। बिल्कुल कमाल की लाइन है। और आगे लिखते हैं कि गुड इवनिंग सोनू सर, मैं अनिल छोटपुर से और गाना सुना दीजिए, तालों में नैनी ताल बाकी सब तलैया। बिल्कुल आपकी भी फरमाइश हम पूरा करेंगे। फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और मैसेज करते हैं, लिखते हैं हेलो रेडियो रिमझिम, नमस्कार सोनू भाई और सभी दोस्तों को नमस्कार बोलिएगा। मैं राजेश प्रसाद सूरत गुजरात से आपको सुन रहा हूँ और आज मैं भी एक गाना सुनना चाहता हूँ। बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। और काफ़ी प्यारे गाने के फरमाइश किए हुए हैं लाडला मूवी से, आपकी फरमाइश हम पूरा करेंगे, आप निश्चिंत रहे। और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे गाने के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं और सुनते हैं पहले गाने के फरमाइश समीर आलम जी की और इंजॉय करते हैं हम सभी।

0: 94.4 FM सुन रहे हैं आप सब लोग। कार्यक्रम चल रहा है इसमें फरमाइश का, और यहाँ पे आगे मैसेज पहुंचा हुआ है। और तो हम आपके मैसेज को शामिल करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक का वारी बनता है, तो लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद पुनः आप सभी की फरमाइश हम प्ले करेंगे।
1: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
2: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
1: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल की सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
5: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
6: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
5: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
6: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
5: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
6: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
5: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
0: छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म, और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। रेडियो एमसीएम 94.4 FM सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है इसमें फरमाइश का, और काफी प्यारे गाने सुन रहे थे हम सभी। और यहाँ पे आगे कई सारे मैसेज हमारे पास श्रोतागण की पहुंची है, और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि थैंक यू सो मच सर, आपको धन्यवाद है रेडियो एमसीएम सुनने के लिए। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, सोनू भाई नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। बिल्कुल आपकी उम्मीद के अनुसार हैं और आप सभी के बीच उपस्थित हैं। रोहित जी देहरादून से जुड़े हैं, और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हाय हेलो सर जी, प्रणाम सलाम, मेरे तरफ से ऑल लिसनर को प्यार भरा नमस्कार एंड सलाम बोलिएगा। मैं आपके संगीत शो में एंट्री कर चुकी हूँ, नीसा भारती विलेज उजवलिया उचका गांव प्रखंड से, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुँचा, हाय सुनो भैया, मेरा नाम है कव्या पटेल और मुझे गाना सुनना है, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। कौन से गाने सुनने ये बताती हैं, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। और गाने का नाम देती है, नाम तो बता कर ना मुझसे, बिल्कुल कोशिश रहेगा आपकी फरमाइश हम पूरी कर दें। और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं, और गाने का फरमाइश करते हैं दिलीप राम जी, और गाने का बोल देते हैं, तुझसे बिछड़ के जिंदा है प्यार बहुत शर्मिंदा है। और सुनाना चाहते हैं आपको सबिता जी, बबीता जी, सरफुद्दीन भाई, पंकज भाई, राघव भैया जी, कुगुड़िया जी, सफाक जी, काजल जी, संतरा जी, सलिया जी, सचिदा जी, आशा जी, शबीना जी, साजिदा जी, रानी जी, रोशनी जी, पायल जी, गुलफाम जी, नेहा जी, हीना खान जी, शाहजहाँ जी, ब्यूटी परवीन जी, गाटा शर्मा जी, सगीर अंसारी जी, मुकेश भाई जी, तूफानी जी, आज़ाद अंसारी जी, रोजादीन भाई, अफसर भाई, जावेद आलम जी, उपेंद्र भाई जी, अख्तरी जी, अहमद भाई, वीरेंद्र भैया जी को, और सभी दोस्तों सखियों को दिलीप राम दिल्ली से। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं, और सुनते हैं आपके पसंद के गाने हम सभी रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

रेडियो रेमछी 90.4 FM सुनते हैं आप सब अनुराधा पौडवाल जी की आवाज़ में ये गाने एंजॉय कर रहे हैं हम सभी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है कई श्रोतागण की, और आगे मैसेज में कहा जा रहा है कि मोहब्बत नहीं होती तो गज़ल कौन कहता, मोहब्बत नहीं होती तो गज़ल कौन लिखता, और किचन में परे फूल को कमल कौन कहता। मोहब्बत कुदरत का देन है सबसे, वरना पत्थर की दीवार को ताजमहल कौन कहता। और इस लाइन को पहुंचाने वाले अपना नाम नहीं दिए हुए और शिव सागर जी, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि उस बेवफा को अपना समझा जिसे हमने इतना प्यार किया, उसने किया हमसे सिर्फ धोखा, हमने भी एतवार किया। सनवाई नमस्कार गाना सुनाने के लिए शुक्रिया, और चलिए आपको धन्यवाद है रेडियो रमझम सुनने के लिए और आगे भी सुनते रहिएगा दिलीप राम जी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि मेरी भी हाजिरी लगा दीजिए और सॉन्ग के साथ मोबी है साजन चले ससुराल से, तो बिल्कुल आपकी भी फरमाइश हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। और इस मैसेज को पहुंचाने वाली निशा, और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है तो बिल्कुल आपकी भी फरमाइश एक करके हम तो फरमाइश पूरी कर ही रहे हैं और आपकी भी फरमाइश हम पूरी करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अगली गाने की फरमाइश हम एक श्रोतागण की पूरी करने ही वाले हैं, लेकिन उनकी फरमाइश को रुकते हैं और रजेश जी इस गाने की फरमाइश करते हैं, लेकिन सेम गाने दो मूवी से मिल रहे हैं, तो आप कौन से मूवी से गाने सुनना चाहते हैं ये बता देते हैं, तो आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे रजेश जी। और आगे हम बढ़ते हैं और अगली गाने की फरमाइश प्ले करेंगे, और इस गाने की फरमाइश करते हैं रोहित जी देहरादून से, और गाने का बोल देते हैं बड़ा मज़ा आयल। ये भी गाने की फरमाइश करते हैं भोजपुरी में, तो आपकी भी फरमाइश हम रुकते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं और अगली गाने की फरमाइश हम पूरी करते हैं यहाँ पे कब्या पटेल जी की, और गाने का नाम दिया गया है तो आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे, गाने का नाम देते हैं नाम तो बता करके जा। तो चलिए सुनते हैं आपके पसंद के गाने हम सभी रेडियो रेमझिम 90.4 FM पे।

94.4 FM सुन रहे हैं आप सब और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का, और यहाँ पे गाने की फरमाइश थोड़े उल्टे पुल्टे नाम दिया गया था और बुल्लिया मुख्य गाने का नाम है। और आगे मैसेज और अगले गाने की फरमाइश हम पूरी करेंगे यहाँ पे रजेश जी की, और उनके तरफ से गाने की फरमाइश किया गया है बेटा फिल्म से, माँ मेरी माँ। और गुजरात से इस मैसेज को करते हैं रजेश जी, तो आपकी फरमाइश अभी प्ले होगी। और यहाँ पे और कई सारे श्रोतागण की मैसेज पहुँची है और आगे लिखा गया है कि हाय सोनू बाबू कैसे हैं भाई, लेट तो हैं तो कोई बात नहीं, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। वीरेंद्र गुप्ता भैया के खरिया रक्सौल नेपाल बॉर्डर से, और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि नहीं भैया जी गाना हिंदी है, यूँ ही जूही चावला ऋषि कपूर का है। ओ, तो लेकिन आपके नाम के अनुसार तो भोजपुरी ही गाने लग रहे हैं, इसलिए हमने पूछा। फिर भी देखते हैं, आपकी फरमाइश हम पूरा करने की कोशिश करेंगे रोहित जी। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, सुनो भैया मेरा सॉन्ग बच जाएगा कि नहीं, बिल्कुल कोशिश। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हाय सुनो भाई मेरा नाम है ईशा पटेल और मुझे गाना सुनना है, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, और गाने के फरमाइश है तो पूरा करने की कोशिश है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं रजेश जी की, और सुनते हैं इनके पसंद के गाने।

0: सुनिए सुनिए सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
0: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
2: तो रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
3: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
2: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।

0: आता है चिरायघर पेट्रोल पंप के सामने संतोष फर्नीचर के नीचे कॉलेज रोड गोपालगंज।
1: रेडियो रिमझिम 94 एफएम सुन रहे हैं आप सब और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हर फूल गुलाब नहीं होता, हर नशा शराब नहीं होता, हर माँ का बेटा खराब नहीं होता। मस्त सुपर सॉन्ग मैसेज करती है निशा भारती। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद दिल से आपको गाना बजाने के लिए, आपको धन्यवाद है रेडियो एमसीएम सुनने के लिए और इतने प्यारे गाने की फरमाइश करने के लिए। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है नाइशंग माँ, ओ मेरी माँ, जिसकी माँ नहीं है वही जानता है कि माँ का मतलब क्या होता है। जय माता दी। मैसेज करते हैं शिव सागर जी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, बहुत ही दर्द भरा सॉन्ग, इस सॉन्ग को सुनकर भूले माँ के दर्द को याद दिलाकर आंखें नम कर दिए। मैसेज करते हैं वीरेंद्र गुप्ता भैया और कहते हैं कि शुक्रिया। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हाय सनु भैया, मेरा नाम उमेश पटेल और मुझे गाना सुनना है। और हमें लग रहा है कि आप सभी परिवार एक जगह बैठे हुए हैं और एक एक करके मैसेज कर रहे हैं, आप लोग तो थोड़ा सा सब्र करें, एक ही आदमी कोई गाने का फरमाइश करे एक दिन, क्योंकि आप एक जगह बैठकर 10 लोग हैं तो 10 गाने नहीं सुना सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कम समय का कार्यक्रम बना हुआ है, तो थोड़े इधर उधर भी लोग बैठे हुए हैं तो उनको भी तो सुनना है और हमको सुनाना है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और मैसेज में रोहित जी इमेज भेजते हैं, तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं। रोहित जी, शैया के साथ मड़ैया में बड़ा मज़ा आए लड़ैया में, हिंदी मूवी से दिए हुए, तो सुनते हैं आपके पसंद के गाने हम प्ले करते हैं रेडियो एमजीएम 94 एफएम पे।
2: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए

कमाल के सॉन्ग रेडियो 94.4 FM पे संडे थे हम सभी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि थैंक यू सो मच सुनो भैया जी गाना बजाने के लिए। देखा आपने हिंदी गाने, बिल्कुल हिंदी गाने। और चलिए आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि माय फेवरेट सॉन्ग सुपर डांस सॉन्ग लाजवाब। और मैसेज करती है निशा भारती, और इनकी तरफ से भी गाने के फरमाइश पहुंचा हुआ है। और गाने का बोल दिया गया है बाय बाय मिस यू गुड नाइट, डेडिकेट करती हैं, लिखी है आपको एंड सोनी मैम, श्रुति मैम, दिव्या मैम, निशा सिंह एंड निशा पांडे, सुधा सिस्टर, बतरदे वाली, रोशनी सिस्टर, शिल्पी सिस्टर और शाहिद अंसारी, शमनम सिद्दीकी और मेरी पड़ोसन सुधा सिस्टर, राधा सिस्टर और 90.4 FM सुनने वाले तमाम लिसनर को, और अभी फ़िलहाल सुन रहे हैं उन सभी को। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपको पसंद के गाने। फिलहाल और भी मैसेज हमारे पास पहुंचे हुए हैं और लिखा गया है कि अरे मैसेज करते हैं वीरेंद्र गुप्ता भैया के करियर अक्सल नेपाल बॉर्डर से, कहते हैं कि काश सुनो भाई इनका मड़िया में लड़िया करते करते चोरी चूरी कलैया में टूट गई तो ऐलान करने की क्या मतलब है। कह रहे हैं, बता रहे हैं कोई दान करना चाहे तो कर दे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि भाई साहब हम भी लाइन में लगे हैं, तो बिल्कुल एक एक करके सबकी फरमाइश हम पूरी कर ही रहे हैं, आप तो सुन ही रहे हैं, और आपकी भी फरमाइश है तो आपकी भी फरमाइश हम पूरी करेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ते हुए अगली गाने के फरमाइश प्ले करते हैं निशा भारती की, और सुनते हैं इनके पसंद के गाने।

94.4 FM पे इस प्यारे से संगीत शो में और प्यारे से गाने को सुन रहे थे। निशा भारती इस गाने की फरमाइश की थी, लेकिन अभी एक और गाने हम सभी सुनेंगे तो फिर आगे बोलेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि सॉन्ग सुनाने के लिए थैंक्स दिल से, सो मच, आपको धन्यवाद है रेडियो रेमछेम सुनने के लिए। आगे मैसेज, हाय नमस्ते, आई एम बीटू शर्मा, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और इन्होंने गाने की भी फरमाइश किए हुए हैं, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश तो आज पूरी नहीं हो पा रही है, कल कोशिश रहेगा। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया विचार हैं आपके, पर ये सब बातें आपस में होनी चाहिए। मैसेज करते हैं वीरेंद्र गुप्ता भैया के करियर उत्सव नेपाल बॉर्डर से, और इनके तरफ से भी गाने की फरमाइश पहुंचा हुआ है और गाने का बोल दिया गया है फिल्म ब्लैक मेल, किशोर जी का और स्वर है, सॉन्ग है पल पल दिल के पास, डेडिकेट पहले मैडम को और आपको, शफाक रोशनी हाजरा हिना गुड़िया साबा आशा खुशी को और सलोनी निशा सविता शबीना और शाहजहाँ को। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हुए इस कार्यक्रम को हम समाप्त करते हैं, क्योंकि समय जो है कार्यक्रम की समाप्ति का होने वाला हो गया है। तो अंतिम गाने यही रहेगा फिलहाल, जो भी श्रोतागण छूट जा रहे हैं नाराज नहीं होना है, समय की समाप्ति हो जाती है तो हम कुछ कर नहीं पाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, सुनते रहें आप सब रेडियो एमछेम 94.4 FM, जो हमेशा से कहता है सुना दिल से, गुड नाइट, नमस्कार।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: शहर का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिद्म 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब क्रिएट किए हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं और स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात राजधानी रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा का आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों पर चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाशी अभियान चलाया। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेबीज से संक्रमित और जानलेवा कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से

0: रोकने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण अब 99.6% तक पहुंच गया है। देश में 69,873 किलोमीटर से अधिक रेलमार्ग का विद्युतीकरण किया जा चुका है। मणिपुर के महान नाटा संकीर्तन गुरु युमनाम जात्रा सिंह को 25 मई को राष्ट्रपति भवन में मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नागरिक अलंकरण समारोह के दौरान यह पुरस्कार प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भी भीषण लू की चेतावनी है। अगले 2 से 3 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार और ओडिशा में लू चलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। ENDA and the Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the third India-Nordic summit in Norwegian capital Oslo today. Prime Minister Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in past decade.
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: Prime Minister Modi affirmed that the relations between India and the Nordic countries are set to usher in a new golden era with the recently concluded trade agreements including Trade and Economic Partnership and India-EU Free Trade Deal. On terrorism, Mr. Modi said the two sides have a clear and united stand, no compromise, no double standards. Speaking on the occasion, the Prime Ministers of Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark reiterated their commitment to shared values of democracy, a rules-based global order and urgent reforms in multilateral institutions in today's changing world. Acknowledging India's global stature, they stressed the need for enhanced cooperation with New Delhi as countries sharing similar values, particularly to address the challenges of conflict and global disruptions. Prime Minister Modi has since left for Italy on the fifth and final leg of his five-nation tour after concluding his visits to Norway, Sweden, the Netherlands and UAE. Mr. Modi is set to arrive in Italy's capital Rome later tonight. Union Education Minister Dharmendra Pradhan today chaired a high-level meeting in New Delhi to assess preparations for the forthcoming NEET UG re-examinations for admission to undergraduate medical education to be held on 21st of next month. Mr. Pradhan directed that all gaps identified in the earlier examination process must be comprehensively addressed and eliminated. The minister emphasized that re-examination must be conducted in a secure, seamless and foolproof manner under stringent security protocols. During the meeting, directions were issued to hold coordination meetings with district magistrates and superintendents of police across state to ensure robust monitoring and effective implementation of examination arrangements. The Supreme Court today for the first time allowed euthanasia for rabid, incurably ill or demonstrably dangerous stray dogs, citing the need to protect human life and public safety. The Apex Court issued a series of directions aimed at addressing the growing stray dog population across the country. The order came in a Suo Motu case initiated on 28th of July last year, following media reports highlighting incidents of stray dog bites and rabies cases, especially among children in the national capital. Meanwhile, the top court dismissed pleas seeking a recall of its earlier order on the relocation and sterilization of stray canines. The Kremlin today confirmed that Russian President Vladimir Putin will attend the BRICS summit scheduled to be held in September this year in New Delhi under India's chairmanship. The Russian embassy in South Africa, in a social media post, cited an aide to President Putin, Yuri Ushakov, as saying that the Russian president will attend the summit on 12th and 13th of September. Defense Minister Rajnath Singh reached Seoul today on a three-day official visit to South Korea after concluding his Vietnam tour. In South Korea, Defense Minister Singh will hold bilateral talks with his counterpart Ang Yu-bak. The IMD has warned of severe heatwave conditions in North India over the next few days. The weather agency forecasts heavy rainfall in southern region. The IMD has issued a red alert for warm night conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha till Thursday. The weather agency has forecast heat wave to severe heat wave conditions over Delhi, Punjab, Haryana and Chandigarh for tomorrow. And with that, we end this news bulletin.
3: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर. आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण. रात्रि न्यूज के बाद रेडियो रिमझिम परिवार को दीजिए इजाजत केवल रेडियो से. आप हमें ऐप पर पूरी रात सुन सकते हैं. सो अगर आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो अभी गूगल के प्ले स्टोर में जाएं, रेडियो रिमझिम लिख के सर्च करें और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें. उसके बाद पूरी रात आप रेडियो रिमझिम का आनंद ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ऐप पर.

0: भैया, बड़ा मजा।
1: उत्तर बिहार का गौरव,
2: सारण प्रमंडल की शान,
1: गोपालगंज की धड़कन
2: और अपने भाषा की पहचान।
1: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
2: सुनो दिल से।

0: मजे।
1: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से।

बुआ के नानी के हसुली ले बाजू ले, बबुआ के नानी के हसुली ले बाजू ले, कंगना ले, गर्दन ले, पहुँची।

0: काके दूध काके बाबू रे खूब मोटाके, गैया के दूध काके बाबू रे खूब मोटाके, बाबू रे खूब मोटाके पुआ ऐसन गाल फुलाके,
1: हड़िया ऐसन पेट बढ़ा के खुरपी ऐसन दांत दिखा के,
0: हम ससुर आरे जाके अखियन से भाव बता के लोग टका टक ताके, मोर ससुर आके कमर लचका के ना चब ताता थैया, कमर लचका के ना चब ताता थैया,
1: नेहरिया के सर...

0: ढोलक के जोर से भैया, ढोलक के जोर से भैया, ढोलक के जोर से भैया, ढोलक के जोर से भैया,
1: दूना दिन दिन दूना दिन दूना दिन दिन दूना दिन,
0: भैया रे ताला टूटे
1: कमर को खूब न चाके,
0: छमा छम छमा छम
1: छमा छम छम छमा छम
0: छमा छम छमा छम
1: छमा छम छमा छम
0: छमा

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: हेलो नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी रेडियो दोस्त आरजे सोनी और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस के कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूं। यदि आप शो से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: गुड मॉर्निंग मैम।
2: जी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: थैंक यू मैम, कैसी हैं?
2: बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: मैं भी ठीक हूँ।
2: तो क्या हो रहा था अभी?
1: बस काम हो रहा है। गाना सुनना था।
2: जी बिल्कुल, बता दीजिए गाने का नाम।
1: अदनान सामी का गाना है, तेरा चेहरा जब नजर आए।
2: और सुनवाना भी है?
1: हाँ, वाइफ को डेडिकेट है ये गीत।
2: अच्छा अच्छा,
1: और बाकी सारे लिसनर्स को।
2: ओके चलिए, तो प्ले करे गाना।
1: नाम नहीं पूछिएगा।
2: अनिल बात कर रहे हैं छोटपुर से।
1: हाँ अनिल बोल रहे हैं
2: जी।
1: ठीक है, तो प्ले कर दीजिएगा।
2: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सोने कॉल किया।

0: हेलो,
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 94.4 FM में।
0: हाँ मैडम, ठीक है, गाना सुनना है।
1: जी गाना सुनाएंगे, आप अपना नाम बता दीजिए और कहाँ से।
0: मेरा नाम है मनोज कुमार।
1: जी कैसे हैं मनोज जी?
0: ठीक है
1: जी। और कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
0: मुंगेर से बात कर रहे हैं, हवेली खड़गपुर।
1: अच्छा,
0: राम गोबड्डा।
1: तो कौन सा गाना सुनना है आज आपको?
0: गाना सुना दीजिए आप शारदा सिन्हा का, कोई विवाह गीत, अभी विवाह का टाइम चल रहा है ना, शारदा सिन्हा का विवाह।
1: जी जी, और सुनवाना भी है?
0: सुनवाना है सरिता देवी, बरखा कुमारी और आपको।
1: जी चलिए, तो प्ले कर रहे हैं गाना। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सो मैं

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up.

0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम।

0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: मैं अहमद अली सारे आवाज नंबर 1 है।
0: जी का हाल चाल बा अहमद जी?
1: ठीक बा जी, अपन बताए बारिश में कैसा लागता?
0: अरे का बताए कैसा लागता, जैसे अंदर पाँव धनी तले बारिश तेज हो गई, खुला लाटन 10 मिनट खातिर वही बीच में आईनी है।
1: भाग मनाई की पहुँच गए नहीं है, आइयो ना कोई दिन
0: न। हमको तो ऐसा ही लग रहा है की हम आज नहीं जा पाए, क्या की निकले के टाइम में ही बारिश आ गया।
1: हमारा नंबर तो 2 बार लागल है लेकिन उठानी है ना।
0: अरे जैसे आके चालू कर ले रही अभी बीच में आये रही, में चार्जो ना रहे, लाइट ना रहे तो चार्जो ना भई रहे।
1: हम कहीं हमारा पर अपना जुलूम का है हो तब पूछे मम्मी से।
0: ना जुलूम नहीं था, होते ना चार्ज ना रहे और बात करती तो तुरंत मोबाइल बैठ जाये।
1: कई अफसरी के मोबाइल से फिर लगानी है, हम अपना मोबाइल से लगावत लगावत है
0: ना
1: लागल है। 126 बार डायल कर बनी।
0: अच्छा अच्छा चले लागल। आज गाना कौन सा बता दी?
1: आज गाना तो सुनवा दी नजायज फिल्म से बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में। नारा के बाद सबसे पहले कमरान रशीद के, राघव जी के, दिलीप भाई के और जे भी रेडियो रिमझिम जहाँ से भी सुना था सब करा के। आज कहिया बाजी गनवा? गनवा कब बाजी? आज की का?
0: आज बाजी, आज शाम के 5 से 7 के बीच में आई।
1: ठीक बा
0: जी,
1: चलिए शुक्रिया
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जुम्मा मुबारक सब करा के।

0: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: वालेकुम सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4।
6: हम किस्मत बोल रहे हैं शिमला से।
5: जी क्या हाल चल रहा दादा जी?
6: मैं ठीक बाबू। ठीक बनी सर, लगे ठीक बनू।
5: जी जी बिल्कुल बढ़िया बनी।
6: अच्छा बारिश हो रहा बा?
5: जी काफी तेज बारिश हो रहा बा। तो खाना पीना हो गया बा?
6: हाँ खाना पीना हो गया, जिम्मा हो रहा वाले देखो बारिश हो रहा।
5: तो बता दी कौन गाना सुने के बा?
6: और कौन सुनी ले?
5: अच्छा हाँ कव्वाली तो सुने नहीं, तो बता दे कव्वाली के नाम।
6: अपना मन से बोलिए बजा दिए पूरा।
5: अच्छा ठीक बा,
6: ठीक बा।
5: जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सर मैं कॉल करने।
7: न सुकून मिलता है बुझाने में, चैन मिलता है तो सा

0: हाँ जी, मैं लाल बाबू सिंह नवादा शहर भोजपुर से बात कर रहा हूँ
1: जी। क्या हाल चाल है लाल बाबू जी?
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे।
1: जी बिल्कुल बढ़िया है
0: जी। हम गाना सुनना चाहते हैं, राना जी माफ करना
1: जी, और सुनवाना भी है
0: जी। सभी रेडियो रिंजिन के श्रोतागण को सुनाना चाहता हूँ
1: जी जी। और क्या करते हैं आप, सो में पहली बार कॉल किए हैं
0: जी? मैं एक्सेलेटर मशीन चलाता हूँ, पोकलेन, किसी भाषा में बोले तो पोकलेन चलाता हूँ। हैदराबाद में आंध्र प्रदेश में हूँ।
1: अच्छा अच्छा
0: जी, यहीं से रेगुलर को सुनते रहता हूँ।
1: मतलब हेलो माय चॉइस में कॉल आपका पहली बार है
0: जी? कॉल पहले भी किए हैं लेकिन एक दो साल पहले किए हैं।
1: अच्छा,
0: अभी तक नहीं किया था कुछ दिन।
1: चलिए तो प्ले करें गाना आपकी
0: जी। जी जी ओके, धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सुने कॉल किया।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं hello,
1: hello, hello, hello, hello, hello.
3: भागे भागे फिरते हैं।
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: सुनी जी नमस्कार।
6: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
5: तो बहुत बहुत स्वागत है।
6: लाल बहादुर बात कर रहे हैं।
5: हाँ जी,
6: कैसे हैं?
5: ठीक है मैम भाई, इधर तो बारिश हो रहा है।
6: अरे पूछिए मत, कितना बारिश हो रहा है इधर।
5: आपका तरफ हो रहा है उधर?
6: बहुत तेज
5: तो मौसम को तो रोके कुछ इधर उधर हो रहा है, चारों तरफ हो रहा है कि नहीं? 18 जून का ऐसे तो मानसून आता है नियंत्रण से।
6: जी जी,
5: और पहले ही बारिश दशक दे चुके हैं, वर्षा हो रही है, इसके ख्याल में आप लोग क्या विचार है, क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? बारिश वाला गाने को सुना दीजिए।
6: बारिश वाला?
5: हेलो
6: जी जी,
5: बरसात के मौसम में चलेंगे सुनाई के आलम में। हेलो, हमारे जितने भी स्वच्छता अभियान से जुड़े हैं ग्रामीण से और शहरी निगम निकाई से सहायता और हमारे भारत वर्ष में आया था और आपको
6: जी
5: तो
6: प्ले कर रहे हैं गाना।
5: जी
6: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगजिम में। जी बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: मैं भी ठीक हूँ।
0: तो क्या हो रहा था?
1: पूरा अरे बारिश में बैठे हैं।
0: तो गाना कौन सा सुनना आज आपको?
1: गाना है सवेरे संयोजन बजरिया, भक्ति गाना है।
0: जी और सुनवाना भी है?
1: भैया है, रूबी है, सुनना है और रजेश संजय है।
0: चलिए तो प्ले करे गाना आपकी।
1: ठीक है, सोनी बोल रहे हैं क्या?
0: जी जी
1: नमस्ते।
0: नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय कॉल किया।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
1: Pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.

0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: हेलो
2: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो टिंजन में।
1: सुनी जी, पहचाना क्या?
2: जी, गोपाल रॉय।
1: फोन से तो आपसे बहुत दिन हो गया, बात नहीं हो रहा है।
2: जी जी, कॉल पे बात नहीं हो रही है। शो में आते हैं आप?
1: हाँ, बोलिए।
2: बोल रहे शो में आते हैं, लाइव शो में।
1: वही तो, वो प्रोग्राम तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। घर में सभी सुनते हैं। अच्छा, आप कैसे हैं? बोलिए।
2: बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसे
1: हैं? अच्छे। तो अभी तो मैं दुकान पे हूँ, दुकान पे गाना सुन रहे हैं और फोन में, इसलिए फोन कर। आपका फोन ये लाइन कभी कभी बंद रहता है क्या? बोलिए तो।
2: ये 3 दिन सप्ताह में खुलता है 11 बजे से, बाकी दिन बंद रहता है
1: ना। अगला एक हफ्ते के आगे ना, वही हफ्ते में एक दिन बंद ही था।
2: जैसे सोमवार को खुलता है 11 बजे से और 12:30 बजे तक चालू रहता है, फिर बंद हो जाता है ये फोन।
1: अच्छा अच्छा अच्छा
2: जी। और फिर उसके बाद खुलेगा बुधवार को।
1: अच्छा अच्छा अच्छा।
2: फिर उस दिन 1.5 घंटा चालू रहेगा 11 से 12:30, फिर बंद रहेगा और फिर शुक्रवार को खुलेगा 11 से 12:30।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा।
2: टाइमिंग रिकॉर्डिंग का, वो अपना टाइम में ही खुलेगा, बाकी टाइम बंद रहता है।
1: अच्छा अच्छा। आपका प्रोग्राम तो पॉपुलर हो रहा है, बहुत अच्छे लगते, सभी बोलते हैं बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है आपका।
2: और भी कोई सुनता है क्या वहाँ?
1: हाँ, मेरा घर पे सुनते हैं, मेरा दुकान पे आसपास में कोई हुआ है ना, वो भी लोग सुनते हैं।
2: अच्छा।
1: तो बोल रहे की आज कल तो किशोर कुमार का गाना बजा दीजिएगा।
2: जी बता दीजिए, किशोर कुमार का कौन सा गाना सुनिएगा?
1: राजपूत मूवी का है ना, मेरे संगे संगे आए तेरी, वो गाना है।
2: जी जी,
1: बजा दीजिएगा
2: और डेडिकेट भी करिएगा।
1: हाँ, आपको, आपको रिलीजिंग परिवार के सभी लिसनर्स को डेडिकेट करते हूँ, सभी सुन रहे
2: गाना आपके।
1: अच्छा अच्छा, ये गाना कब सुनेंगे?
2: आज शाम को आज या कल में 5 से 7 बजे के बीच में कभी भी आ जाएगी, क्योंकि आज रिकॉर्डिंग हो रही है, आधा आज चलेगा और आधा कल चलेगा।
1: ओ अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ,
2: तो अगर आज आपका गाना 5 से 7 के बीच में शाम को नहीं बजा तो इसका मतलब है कल पक्का है कि बजेगा।
1: ओ अच्छा अच्छा, ठीक है। गाना तो रेडियो में गाना सुनने में मजा ही अलग होता है ना।
2: और इसका रिपीट चलता है 9 से 11 के बीच में।
1: क्या बोले?
2: जैसे शाम को 5 से 7 के बीच में अगर आप नहीं सुन पाते हैं,
1: अच्छा,
2: तो नेक्स्ट डे आप 9 से 11 बजे के बीच में सुबह सुन सकते हैं।
1: ओ अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा,
2: रिपीट चलता है।
1: अच्छा अच्छा, ठीक है सुनी जी, ठीक है। आपका पढ़ाई चल रहा है क्या?
2: जी जी, अभी तो चल रही है।
1: अच्छा अच्छा, ठीक है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो,
4: हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
3: भागे भागे फिरते हैं।
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो
7: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीत का। बहुत बहुत प्यार है हमें।
6: तो मैडम जी
7: नमस्ते, तो कैसी है नेहा जी, बताइए।
6: अच्छा है, आप बताइए कैसे है। नाश्ता हो गया?
7: जी हाँ हो गया है। आपका हुआ?
6: हाँ हाँ हो गया।
7: तो अभी क्या हो रहा था?
6: अभी तो आपके पास फोन लगाए है तो कुछ बिजी बता रहा था, अभी लग गया।
7: तो आज गाना कौन सा सुनना है आपको?
6: गाना सुनना है लैला ने कहा मरी मेरा गाना। जी
7: और सुनवाना भी है?
6: जी आपको आज इतना रेडियो रंजीत में आ रहे हैं और दोस्त सब सुनता है को सभी के साथ।
7: ओके चलिए, तो प्ले करें गाना आपके।
6: जी मैडम जी नमस्ते।
7: नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सोने कॉल की।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up.

0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: प्रणाम मैडम।
2: प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
1: जी मैडम।
2: जी, नाम बता दी आपका?
1: सुनने के बाद महेश शर्मा।
2: जी जी, तो कौन गाना सुने के बाद बता दी?
1: गाना सुने के बाद दुपट्टा मौसी के मौसी वाला गाना ना निकलवा।
2: कौन गाना?
1: दुपट्टा मौसी के निकलवा गाना ना।
2: दुपट्टा मौसी के हमके ना पता बा, गाना बढ़िया बा, सुन ले बने।
1: सुन ले बने ललका दुपट्टा मौसी के।
2: अच्छा, और सुनवाए के भी बा?
1: जी जी, गाना सुनने।
2: चलिए ठीक बा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं कॉल करूँगी।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 94.4 FM में।
1: नमस्ते मैडम
0: जी, कैसे हैं?
1: ठीक है, अपना सुनाइए।
0: जी मैं भी बढ़िया हूँ, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
1: संजय शाह, फुली डुमर बिहार से बोल रहे हैं, बांका जिला।
0: जी क्या हाल चाल है?
1: ठीक है।
0: तो क्या हो रहा है?
1: गाना सुनना है।
0: जी बिल्कुल,
1: साड़ी का मोती है घड़ी के।
0: जी बिल्कुल सुनाएंगे गाना, नाम बता दीजिए गाने का।
1: संजय साड़ी का मोती है घड़ी के, भोजपुरी सॉन्ग है।
0: जी जी, और सुनवाना भी है?
1: हाँ आपको सुनवाना है और जाके जो है जितना सरोता गण है सबको सुनाना है।
0: चलिए तो प्ले करे गाना आपकी।
1: प्ले कीजिए। ठीक
0: ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय कॉल किया।

0: तो दोस्तों, आप लोग अभी कार्यक्रम हेलो माय चॉइस को मेरे साथ यानी आरजे सोनी के साथ सुन रहे थे। अब समय हो चुका है इस कार्यक्रम से विदा लेने का, तो मुझे दीजिए अब जाने की इजाजत और ऐसे ही सुनते रहिए रेडियो रिंजन 90.4 FM। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। नमस्कार।
1: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से।

ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: बाय।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बस बस बहुत हो गया, माफ कर दिया तुम लोगों को।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से।
1: जय हो पावन।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

हमारे सौभाग्य उदय हुई है जो आप कृपा करके दर्शन दिए। सौभाग्य जब दीन दयालु प्रभु द्रवित होते हैं तो अपने लाडलों का संग प्रदान करते हैं। प्रभु की सबसे बड़ी विशिष्ट कृपा यही होती है, भगवत प्रेमी महात्माओं का दर्शन।

0: भाषण ये हमारे ऊपर विशिष्ट कृपा है। जैसे हम जैसे अधम कहीं जा नहीं सकते, रोग ग्रसित शरीर है, तो ये गुरुजन ये महापुरुष जन, जैसे माँ अपने बच्चे के पास दौड़ के आती है, ऐसे आप सब गुरुजन आकर के दुलार करते हैं, कृपा करते हैं। ये प्रियाजू की कृपा से है, यही हमारे आराध्य देव की हम पर यही कृपा है कि आप सब जन कृपा करके द्रवित होकर दर्शन, भगवान का दर्शन दुर्लभ नहीं है। जैसे कहा जाता है भगवत साक्षात्कार अत्यंत दुर्लभ है, भगवत प्रेमी महात्मा का साक्षात्कार दुर्लभ, महत्संगस्त सुदुर्लभ हो। अगर सेवन करते बन जाए तो अमोघस्य, भगवान के समीप रहते हुए भी उद्धव जी को श्री कृष्ण का प्रेम स्वरूप का परिचय नहीं मिला। ब्रह्म स्वरूप, परमात्मा स्वरूप, अनंत ऐश्वर्य संपन्न प्रभु का नित्य निरंतर उनको सानिध्य है, पर इनका एक प्रेम स्वरूप भी है ये परिचय नहीं हो उद्धव को, संपूर्ण ज्ञान होते हुए भी। इसलिए भगवान ने ब्रज गोपियों की चरण धूलि में भेजा, और जब ऐसे महाप्रेमी जनों का दर्शन संभाषण चरण रज का स्पर्श, फिर तो निहाल हो गए। फिर ये नहीं कहा कि मुझे मथुरा में श्री कृष्ण के पास रहना है, मुझे यहीं ब्रज में घास बना दो, लता बना दो, औषधि बना दो, द्रुम बना, क्योंकि प्रेमियों का सानिध्य। इससे पता चला श्री कृष्ण के समीप रहने पर भी श्री कृष्ण से वो प्रेम नहीं होता जो उनके प्रेमियों के संग से उनसे प्रेम होता है। उद्धव जी से ये परिचय मिला कि भगवत प्रेमियों के संग के बिना हमारे प्रभु के प्रेम स्वरूप का परिचय प्राप्त नहीं हो सकता। हाँ, तो ये तो अत्यंत कृपा श्री प्रियालाल जी की होती है, जब नाम जापक श्री चरणारविंद का अनुरागी हृदय ऐसा कोई दर्शन करने को मिले, ऐसे कोई दर्शन देने पधारे, ये तो अत्यंत कृपा होती है, अत्यंत कृपा।
1: उद्धव फंगसे जी महाराष्ट्र से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी अगर सृष्टि में ईश्वर ही सभी रूपों में खेल रहे हैं तो फिर संसार और परमार्थ में भिन्नता क्या है?
0: तो भिन्नता रही नहीं जाती, आप अंतिम श्रेणी पर पहुंचो तो भिन्नता कहाँ है? भिन्नता तो प्रारंभ और बीच में है, अंत में तो भिन्नता है ही नहीं। अभी तो बच्चे हो ना, इसलिए तुम केवल बातें सुन रहे हो, विचले थोड़ी हो। भिन्नता जो दिखाई दे रही वो हमारी दृष्टि दोष है, त्रिगुणात्मिका माया के प्रभाव को ही हम देख रहे हैं, गुणातीत दृष्टि तो हुई नहीं ना। तो प्रभु है गुणातीत, और वो गुणातीत सब में, सब रूपों में, सब खेलों में, स्वयं में, अपने आप से अपने आप में खेल रहे। अब हमारी गुणमय दृष्टि है तो कहीं सात्विक वृत्ति का दर्शन करते हैं, कहीं राजसिक का, कहीं तामसिक का, तो बड़ी भिन्नता दिखाई दे रही। ये भिन्नता तीन गुणों के दर्शन के कारण है, और गुणातीत प्रभु तो सब जगह विराजमान है, उनके देखने के लिए दृष्टि गुणातीत दृष्टि चाहिए। गुणातीत है नाम, गुणातीत है रूप, गुणातीत है लीला, गुणातीत है धाम। आप नाम जप करो, धाम का आश्रय लो, लीलाओं का गायन श्रवण करो, आपकी दृष्टि बदल जाएगी तो आप भी देख पाओगे। अभी दृष्टि भिन्न का दर्शन कर रही है, क्यों? अभी आप भिन्न में हो, आप अपने को प्रभु का मानो, आप प्रभु का मान रहे हो, देह भाव से हो, विषयों के गुलाम हो, संसार के शरीरों के संबंधी स्नेही हो, तो प्रभु से भिन्न भाव लेकर विचरोगे तो भिन्न ही दिखाई देगा, और प्रभु से अभिन्न भाव ले तो अभिन्न दर्शन होने लगेगा। प्रभु और प्रभु के जनों में अभिन्नता है, ये तब समझ में आएगी जब आप अभिन्न हो जाओगे। अच्छा, सृष्टि में तो कुम्हार और मिट्टी और चाक, इसका भेद है। यहां तो वही कुमार बला हुआ, वही चाक बला हुआ, वही बनने वाला है, वही बनाने वाला है। या रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोय, जो जाने रघुपति कृपा सपने मोह न हो। अगर ये रहस्य जान गए तो अभी तो आनंदित हो जाओगे। इस रहस्य को जानने वाला सम आत्मा सुदुर्लभा, बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वम इति, सम आत्मा सुदुर्लभा। छोटी मोटी स्थिति थोड़ी है, हर उपनिषद ग्रंथ सब इसी बात का संबोधन कर रहे हैं। ईशावास्मिदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत, एक कण भी ईश्वर से बिलक कोई जगत नहीं है। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, सर्वम खलमिदम ब्रह्म सीय राम में सब जग जानी, चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। कितना हर सूत्र हर शास्त्र प्रभु, और हमको भिन्न दिखाई दे रहा है, तो हम भिन्न चश्मा लगाए इसलिए दिखाई दे रहा है। हिन्न चश्मा हटे। देखो नरहरदास स्वामी जी ने एक पद में कहा,

परे, जड़ चैतन्य कछु नहीं दीखत, जित दीखत तित श्याम खड़े, ब्यूहल विकल संभा

0: श्याम उखड़े। अगर हमारी दृष्टि भिन्न है तो हमें भिन्न दिखाई दे। जड़ चेतन जग जीव जत, मान के नहीं कह रहे हैं, जान के कह रहे हैं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदो सबके पद कमल सदा जोरी जुगपान। सी राम मैं सब जग जानी, मानी नहीं जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। ये भिन्नता हमारी गुणमयी बुद्धि की है, गुणमयी दृष्टि की है, यही तो संत और गुरुजनों के प्रताप से हट जाती है। त्रिगुण विषया वेदा निस्त्रिगुण भवा अर्जुन, वो दृष्टि कोई सूझ वाली आंख ने पहचान की कि कण कण में झाकी भगवान की। बस हो गया, ये प्रश्न का समाधान हुआ कि सब मेरे प्रभु, फिर वो प्रेम राज्य में प्रवेश पाता है। यहां से शांत रस है, यहां तक शांत रस है, मेरा प्रभु सर्वत्र विराजमान है। अब समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो गया, अब दास्य भाव से, सख्य भाव से, वात्सल्य भाव से, गोपी भाव से, सहचर्य जैसे चाहो आराध्य देव के साथ खेलो, दुलार करो, उसके सिवा कुछ है नहीं। तो अभी खूब नाम जप करो, तब प्रेम का अंकुरण उत्पन्न हो, तब तो समझ में आए। अभी तो काम ही, क्रोध ही, लोभ मोह मद मत्सर, ये अपना डंका बजा रहे हैं अंतःकरण में, तो कैसे हम जाने कि हमारे हृदय में राम राज्य भी है। अभी तो काम का राज्य है, जब कामनाओं का शमन हो भगवत कृपा से और नाम विराजमान हो, तब अनुभव होगा कि बाहर और भीतर वही, दूसरा कोई भेद नहीं। महापुरुषों ने साधन बताए, अगर ये साधन हो जाए तो अभी तुम्हें साक्षात्कार हो जाए कि प्रभु है। शांति रव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर्मान शून्यता, आशाबंधा समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, आसक्तिस्तद गुणाख्याने प्रीतिस्तद वसति स्थले। इतने लक्षण अपने हृदय में लाओ। शांति, कोई गाली दे हम पलट के गाली नहीं दिया, उसे कहते शांति। लेकिन शांति, कोई गाली दे और हम उसका अपने आराध्य देव से मंगल मनावे, कोई हमें मारे और हम मंगल मनाए कि प्रभु इसको कभी कोई दंड न मिले, ये स्वस्थ रहे, ये सुखी रहे, आपका ये कृपा पात्र बने, इसे कहते शांति। ये शांति से भी बढ़कर है। अव्यर्थ कालत्वम, एक भी सेकंड भगवान से विमुख नहीं होना चाहिए। त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए अपने आराध्य देव का विस्मरण नहीं करता, वही भागवत है, वही महाभागवत है। वो हम घंटों विस्मरण करते, कैसे जान पाएंगे इस रहस्य को। अव्यर्थ कालत्वम, एक क्षण भी समय हमारा प्रभु से व्यर्थ ना जाए, प्रभु से बिलग न जाए। मान शून्यता, तनिक भी मान की आकांक्षा हृदय में ना रह जाए। अमानिना मान देन सब ही मान प्रद, आप अमानी, मान न रह जाए। विरक्तिर, समस्त भोगों से जो सुख बुद्धि का भाव है ये हट जाए। पहला होता है त्याग, हमारी भोग इच्छा है पर हमारा सिद्धांत मना करता है इसलिए हम भोग नहीं भोगते, पर अंदर राग है भोग की इच्छा, इसे कहते त्याग। फिर कहते वैराग्य, भोग सामग्री है पर भोगने की इच्छा नहीं है। तीसरा कहते उपरति, त्याग वैराग्य उपरति, भोग सामग्री है ऐसा बोध ही नहीं रह गया, ये स्थिति। अब हमारी लोगों की स्थिति तो भोगों में ही है, तो भिन्नता ही तो नजर आएगी, भोक्ता और कर्ता भाव ही तो भिन्नता का दर्शन करा रहा है। विरक्तिर, हृदय वैराग्य, जगते भयो फिरे वैरागी, तब प्रियालाल का अनुरागी, वृंदावन रस में अनुरागी। आशा बंधा, ये दृढ़ आशा हो जाए कि मुझे भगवत साक्षात्कार होगा ही, अब कोई नहीं रोक सकता, मैं अविनाशी प्रभु का अविनाशी बच्चा हूं, आज शरीर भले छूट जाए पर मैं आप विश्राम वहीं पाऊंगा, बिन देखे रघुनाथ पद जी की जननी न जाए। हृदय व्याकुलता से युक्त आशा बंधा, निश्चित प्रभु मिले, निश्चित मिलेंगे, क्योंकि वो आपके हैं और वो आपके हैं इसमें थोड़ा अंतराय नजर आता है, वो ही है, वो तो दर्पण रखा है तो दो नजर आ रहे हैं, बिंब और स्वरूप, प्रतिबिंब और स्वरूप, दर्पण हटा दो तो बचा कौन। बस अंतःकरण धर्म में ममत्व करने के कारण आप प्रभु को नहीं पहचान रहे, अंतःकरण धर्म भागवतिक स्वरूप में लीन हो वही वो है, दूसरा कुछ है, आप है ही नहीं। जो प्रभु को खोजने गया और जब प्रभु मिले तो वो खुद खो गया, यही खास बात रही। जब कोई प्रभु को खोजने गया तो खोजने से जब प्रभु मिले तो खोजने वाला खो गया, ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं, काल अपनी उस दिना रही, एक रहे हो, न केवल आराध्य देव ही आराध्य देव रह गए। समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, उत्साह पूर्वक मानो हम अपने प्रभु को विनय पूर्वक पुकार है, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सियाराम सियाराम। मानो अपने प्रभु, नाम जप का मतलब क्या होता है, हम प्रभु को प्रति श्वास पुकार रहे हैं, आर्त भाव से पुकार रहे हैं, मालिक को अपने हम याद कर रहे हैं, उनकी स्मृति में हृदय को, मानो जिसे कोई पीड़ा हो रही है, ऐसे कब मिलेंगे कब मिलेंगे। आशा बंधा समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, नाम में रुचि हो जाए। और आसक्ति तद गुणाख्याने, जैसे दो कामी पुरुष हो तो बिना चर्चा किए कामनी की नहीं रह सकते, ऐसे बोधयंता परस्परम कथयंति चे माम नित्यम तुष्यंति चे रमंति चे, अपने आराध्य देव की चर्चा करने का दशा होना चाहिए, कोई छेड़ भर दे वो ऊब के भाग जाए, प्रबंध ना हो। हाँ, भिक्षा मांग ले, जैसे अपने लोग भिक्षा मांग ले जा रहे, और अगर छेड़ दिए तो दो बज गए तीन बज गए धूप में खड़े, बस प्रियालाल की बात। आसक्ति तद गुणाख्याने, अपने प्रभु की चर्चा करने में आसक्ति होनी चाहिए, सुनने वाला बचे, कि अगर बाबा को छेड़ा तो मुश्किल है निकल पाना हो तो घेर। सुनो और सुनो, मतलब हमारे अंदर ऐसी प्रभु की चर्चा करने की आग होनी चाहिए कि कोई मिले, अगर कोई ना मिले तो अपने आराध्य देव को ही सुनाते, ठाकुर जी को बैठ के सुनाते, सुनो उन्हीं की चर्चा। आसक्ति तद गुणा खाने और प्रीति तद वसति स्थले, अपने आराध्य देव का जो प्राकट्य स्थल है, लीला स्थली, वो प्राणों से भी अधिक प्यारी होनी चाहिए। हमारे प्राण आराध्य देव की लीला स्थली में समर्पित हो जाए, जहां वो खेले हैं जाओ, वही हमारे प्राण समाप्त हो, हमारी देह धूल दूसरी उसी में हो, जहां हमारे प्रीतम हमारे आराध्य देव क्रीड़ा किए हैं। आसक्ति वहां की आसक्ति, भले आप नहीं रह पा रहे हो, पर आपका आंतरिक भाव जैसी भट्ट धूल धूसर तन, ये आशा उद्धार, मेरा शरीर इसी वृंदावन की रज में धूल बन करके मिल जाए, क्योंकि मेरे आराध्य देव की क्रीड़ा स्थली। ऐसे ही अपने कभी भी अपने आराध्य देव की क्रीड़ा स्थली से बढ़कर कोई क्रीड़ा स्थली है ऐसा नहीं मानना चाहिए। अपने आराध्य देव की क्रीड़ा स्थली अपने लिए सर्वोपरि है, ऐसा भाव रखना चाहिए। हमारे ही आराध्य देव की विविध लीला था, पर मेरे लिए मेरे आराध्य देव की क्रीड़ा स्थली, ये हमारी आसक्ति का विषय है, ये ज्ञान विज्ञान का विषय नहीं होता। उसमें आसक्ति ऐसी प्रीति हो कि लाख महिमा अन्यत्र की है, बने तो रघुवरते बने, बिगड़े तो भरपूर तुलसी औरंते बने, ताबन बेपे। हाँ, ये बात है। अब देख लो तुम्हें क्या दिखाई देता है, ये आचरण धारण करो फिर हमें बताओ। तो हमारी दृष्टि कोई प्रमाण वाली दृष्टि थोड़ी है, कि हमें जो दिखाई दे रहा है वही सत्य है। जब आंख में माड़ा पर जाता है ना, वो क्या कहते हैं उसको, मोतियाबिंद, तो दो चंद्रमा दिखाई देने लगते हैं, धुंधला दिखाई दे, एक आदमी दो दिखाई देने लगते हैं। तो दृष्टि दोष है, अंजन लगाओ, गुरु चरण रज का अंजन लगाओ, दृष्टि दोष भंग होगा, आपको खुले नेत्र में दिखाई देगा, प्रभु के सिवा कोई नहीं, सारा नाटक चल रहा है माया का, और नाटक के अंदर जो नाट्य करने वाला है वो साक्षात प्रभु ही है, सब प्रभु ही है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, तो ये बात है भैया, भजन करो तो अच्छा, ये बातों से तो समझ में आता नहीं, तो भजन से ही मार्ग समझ, खूब नाम जप करो, अपने आप ज्ञान विज्ञान का उदय, बिना पढ़े लिखे, भगवान नाम में इतनी सामर्थ है कि बिना पढ़े लिखे तुम ऐसे देहाती भाषा में बोलोगे, और कोई संस्कृत का ज्ञानी हो तो उसे देख ले, वेदों में लिखा होगा, वही ऋचाओं के रूप में सूत्रों के रूप में मिलेगा। अनपढ़ मान लो, ऐसे भी महात्मा हुए कि न व्याकरण पढ़े न ककारा पढ़े, राम राम राम राम राम, अब उनकी बाणी बोली वही ले लो, और आप शास्त्रों में जा करके छाट लो जाके, तो सब ब्रह्म सूत्रों में मिलेगी, क्योंकि वो जहां से ब्रह्म सूत्र प्रकट हुए वहां पहुंच गए। नाम का चिंतन, रूप का चिंतन संपूर्ण ज्ञान का उदय कर देता है। इसलिए भैया खूब नाम जप करो और प्रभु के चरणों के सहारे रहो, तो आपको खेलो समझा देंगे। अगर वो ना समझावे तो बड़े बड़े ज्ञानियों की भी समझ में धोखा पैदा कर दे, ऐसी उनकी माया है। ज्ञानी नाम चेतांसी देवी भगवती हिसाब बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रचति, और वो कृपा कर दे तो सहज में ऐसे ही बस पर्दा हटा, झाकी ही झाकी है। देखो गोपीजन कह रही, जित देखूं तित श्याम, जिधर देखती हूं मुझे श्याम सुंदर ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि वही है, दूसरा नहीं है। होली का अवसर, गुलाल लाओ, हमारी श्री जी का गुलाल संतों को लगाओ, थोड़ा खड़े होने का अब क्या है, उठले बैठले हमारी एकदम किडनी फेल है, डायलिसिस होता है। ये हमारा दुर्भाग्य कि आप संतों का हम स्वागत नहीं कर पाते जैसे करना चाहिए, पर क्या करें। जय हो मेरी लाडली। ये हमारी श्री जी का प्रसादी गुलाल है आज। जी की तीन चुनरिया लाओ और संत भगवान तीनों। जब पहली जांच हुई थी दिल्ली में किडनी की तो आप साथ गए थे। हम तो भिक्षा से जीवित थे, भिक्षा अन्न से जीते थे। इन्होंने चित्तरंजन,
1: आपकी कृपा हुई,
0: चित्तरंजन जी को साथ लेकर आप ही तो दिल्ली गए थे। ये तो हमारी लाडली जी की प्रसादी चुनरी महाराज जी की बड़ी कृपा, बड़ी कृपा।

नित्य निकुंज बिहारिणे नमः। श्री बिहारी बिहारिणी जो जयति, श्री स्वामी हरिदासो विजयते तराम। ब्रजमंडल की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो हमारी श्यामा जो श्री राधा रानी है। जो ब्रजमंडल 84 कोस में फैला हुआ है, जिसमें कि श्री राधा रानी का हृदय स्वरूप हमारा श्रीधाम वृंदावन है, तो आइए मेरे साथ मिलकर युगल छवि का ध्यान करते हुए और श्री राधा नाम का आश्रय लेकर ब्रजमंडल के प्रमुख स्थानों का नाम लेते हुए श्रीधाम वृंदावन से अपनी यात्रा को प्रारंभ करिए। और मेरा विश्वास है कि इस मानसिक ब्रज यात्रा से आपको वास्तविक ब्रज की यात्रा करने का ही फल मिलेगा।